नमस्कार। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। आज दिन गुरुवार है, सख्त संबत 1948, जस्ट महीने की 14वीं तिथि, तदनुसार अंग्रेजी सन 2026 की 4 जून है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय प्रातः की 5:58:49 हुए हैं। आप सभी श्रोताओं को हार्दिक अभिनंदन करते हुए हम आज के पहली सभा आरंभ करते हैं।

0: ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। श्रोता आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेस के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, दवा उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेस 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के मुद्दों पर मजबूत सहयोग है। ये यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगी। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भारत की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। आज शाम वे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगी। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा तथा हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श होगा। इसके बाद गृहमंत्री त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पश्चिम बंगाल में विभिन्न रेल परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए शनिवार को कोलकाता पहुंचेंगे। पूर्वी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवाजी माझी ने आकाशवाणी को बताया कि रेल मंत्री मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ नबन्ना सभागार में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए एक लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
1: नई दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में कल एक गेस्ट हाउस में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। उसने बताया कि इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में ले लिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि घटना के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाली प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। भारत ने सैफ फुटबॉल महिला चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 5 बार के विजेता भारत का फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से मुकाबला होगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए गए हिंदी में समाचार। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। श्रोताओ, आइए अब हम आपको जानकारी दे दें आज के इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम के बारे में। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 6:10 पर आप सुन पाएंगे हिंदी भक्ति गीत कार्यक्रम के तहत। 6:30 पर आप सुन पाएंगे वुमेन सेंट्रिक फिल्म संग यानी कि महिलाओं पर आधारित हिंदी फिल्मी गीत। सुबह 7 बजे रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।

सुबह 7:05 पर आप सुन पाएंगे आज का दिन, 7:30 पर आप सुन पाएंगे विज्ञान संबंधित जानकारी, साथ ही हम आपको सुनवाएंगे कुछ हिंदी फिल्मी गीत। सुबह 8 बजे रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात।

8:15 पर हम पेश करेंगे देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम। 8:30 पर आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के शिलांग केंद्र से नॉर्थ ईस्ट न्यूज। सुरों की रंगली फिल्मी गीतों के ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 8:40 पर। सुबह 9 बजे रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से पुआर आंचलिक बातरी।

स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम आरंभ होंगे सुबह 9:15 से। इसमें आप सबसे पहले सुन पाएंगे खेलमा कार्यक्रम। इसमें श्रोता आज सुनेंगे कुछ खेलमा भक्ति गीत। पेश करेंगे जैते लियन जैते और साथियों ने, कालिस्टा एंड रांखल और साथियों की आवाज़ों में। रांखल कार्यक्रम के अंतर्गत 9:25 पर आप सुन पाएंगे रांखल आधुनिक गीत। जयंतिया भक्ति गीत आप सुन पाएंगे 9:35 पर। इसमें श्रोता सुनेंगे इबिमन रिम्बाई और साथियों की आवाज़ों में जयंतिया भक्ति गीत। बेते कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे 9:45 पर। इसमें आज आप सुन सकते हैं कुछ बेते भक्ति गीत। पेश करेंगे जारलेनी वेते और साथियों ने।

विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से सुबह 10 बजे, दोपहर 12 बजे रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। विविध भारती के कार्यक्रम पुनः रिले किए जाएंगे 12:05 पर आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से, दोपहर 1 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे हिंदी में समाचार। 1:05 पर पुनः रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम। मिड डे न्यूज़ ये आप सुन पाएंगे दोपहर 2 बजे, जिसे रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। दोपहर 2:15 पर रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से दोपहर समाचार। विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे 2:30 पर आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से, हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से शाम 4 बजे, और 4:05 पर आप पुनः सुन पाएंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले विविध भारती के कार्यक्रम। तो श्रोताओं, ये थे आज के इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम संबंधी जानकारी। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। श्रोताओं, लीजिए आप प्रस्तुत है भक्ति गीतों के कार्यक्रम। तो आइए सुनते हैं इसमें कुछ हिंदी भक्ति गीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुने कुछ हिंदी भक्ति गीत कार्यक्रम के तहत फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। श्रोताओं, लीजिए आप सुन रहे हैं महिला पर आधारित हिंदी फिल्मी गीत, यानी कि वुमेन सेंट्रिक फिल्म सॉन्ग। इसमें आइए पहला गीत सुनते हैं मेरा पति सिर्फ मेरा है फिल्म से। आवाज़ है शैलेंद्र सिंह और सपना मुखर्जी की।

श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं अगला गीत गुलाम फिल्म से। आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की।

फिल्म का नाम है जीना मरना तेरा संग। आइए आप सुनते हैं इस फिल्म के गीत। आवाज़ें है मोहम्मद अजीज और रविंदर रावल के।

ये गीत अभी आपने सुने जीना मरना तेरे संग फिल्म से। आवाज़ें थे मोहम्मद अजीज और अनुराधा पुरवाल की। आइए आप सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत रॉकस्टार फिल्म से। गायक कलाकार है मोहित चौहान।

ये गीत अभी आपने सुने फिल्म रॉकस्टार से। गायक कलाकार थे मोहित चौहान। श्रोताओं आइए आप सुनते हैं अगला गीत रॉकन फिल्म से। गायक कलाकार है डोमिनिक क्रिज़ो।

इसी गीत के साथ ही हमारे आज के वोमेन सेंट्रिक फिल्म सॉन्ग यानी कि महिला पर आधारित फिल्मी गीतों के कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। सुबह के

सात बजने वाले हैं, अब से थोड़ी ही देर बाद आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे हिंदी में समाचार। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, दवा उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची थी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और ग्लोबल साउथ के मुद्दों पर मजबूत सहयोग है। ये यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगी। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री येवेट कूपर भारत की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। उनका आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलने का कार्यक्रम है। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा तथा हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए गए नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उत्तर पूर्वी परिषद सदस्य और केंद्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इसके बाद गृहमंत्री त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पश्चिम बंगाल में विभिन्न रेल परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए शनिवार को कोलकाता पहुंचेंगे। पूर्वी रेलवे के अधिकारी शिवाजी माजी ने आकाशवाणी को बताया कि रेल मंत्री मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ नबन्ना में सभागार में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमान ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहन से बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: नई दिल्ली के मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में ले लिया है। इस बीच दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही अवैध संपत्तियों, अनाधिकृत गेस्ट हाउसों और अग्नि सुरक्षा नियमों तथा भवन उपनियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ पूरे शहर में विशेष अभियान चलाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाले प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए गए हिंदी में समाचार। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। श्रोताओ, लीजिए आप प्रस्तुत है आज का दिन। इसमें सबसे पहले सुनते हैं पोएम ऑफ द डे।
3: সুপ্রভাত, আমার নাম শ্রী ঋদ্ধিমান দেবরায়। আমি নর্মস্কো হাই সেকেন্ডারি হাফলং স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র। আমি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি কবিতা আবৃত্তি করতে যাচ্ছি। কবিতাটির নাম হলো প্রশ্ন। মাগো আমায় ছুটি দিতে বলো, সকাল থেকে পড়েছি যে মেলা, এখন আমি তোমার ঘরে বসে করব শুধু পোড়া পোড়া খেলা। তুমি বলছো দুপুর, এখন সবে না হয় যে নসত হলো তাই, একদিন কি দুপুর বেলা হলে বিকেল হলো মনে করতে নাই। আমি তবে ভাবতে পারি মনে সূর্যি ডুবে গেছে মাঠে শেষে, বাগদি বুড়ি চুবড়ি ভরে নিয়ে শাক তুলেছে পুকুর ধারে এসে, আধার হলো মাদার গাছের তলা, কালি হয় এলো দিঘির জল, হাটের থেকে সবাই এলো ফিরে, মাঠের থেকে এলো চাষির দল, মনে করোনা উঠলো সাজের তারা, মনে করোনা সন্ধে হলো যেন, রাতের বেলা দুপুর যদি হয় দুপুর বেলা রাত হবে না কেন। নমস্কার।

श्रोताओं, आज 4 जून है। ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 4 जून वर्ष का 155वां लीप वर्ष में 156वां दिन है। साल में अभी और 200 दिन शेष है। तो श्रोताओं, आइए अब हम जानते हैं 4 जून की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं।

सन् 2001 नेपालके नवयुक्त नरेश दिपेन्द्रका अस्पतालमे निधन। ज्ञानेन्द्रकी ताजपोशीके विरोधमे हिंसा भड़की। हत्याकाण्डकी न्यायिक जाँचके लिए एक आयोग गठित। सन् 2003 डोमिनिक गणराज्यकी 18 वर्षीय सुन्दरी एमिलिया वेगा मिस युनिभर्स 2003 बनी। 2005 आज ही के दिन लालकृष्ण आडवाणी ने कराची में मोहम्मद जिन्ना को धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति बताया। 2006 यूगोस्लेविया के पूर्व गणराज्य मोंटेनेग्रो ने स्वतंत्रता की घोषणा की। सन 2007 चीन के उप प्रधानमंत्री हांग चू का निधन। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा को वर्ष 2006 का जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार प्रदान किया गया।

सन 2008 हरियाणा सरकार ने पारिवारिक पेंशन का लाभ 25 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को भी देने की घोषणा की। न्यूयॉर्क की सीनेटर हिलरी क्लिंटन को पछाड़ते हुए बराक ओबामा ने अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवारी हासिल की। सन 2011 नए सर्वेक्षण में खुलासा हुआ कि भारतीय लोग आर्थिक वृद्धि पर पर्यावरण रक्षा को मामूली रूप से प्राथमिकता देते हैं। अमेरिका की प्रमुख सर्वेक्षण एजेंसी गैलप ने अपने ताज़ा सर्वेक्षण में कहा कि ज़्यादातर आबादी अर्थव्यवस्था से ज़्यादा पर्यावरण पर ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय अर्थशास्त्री डॉक्टर अमर्त्य सेन ने पश्चिमी देशों को भारत और चीन से सीख लेने की सलाह दी है। डॉक्टर सेन का कहना है कि पश्चिमी देशों को नए विचारों की जरूरत है।

सन 1896 हेनरी फोर्ड ने अमेरिका के डेट्रॉइट शहर में अपना पहला मॉडल परीक्षण के लिए उतारा। 1919 अमेरिकी नौसेना ने कोस्टा रिका पर हमला किया। 1928 आज ही के दिन चीन के राष्ट्रपति हांग जलिन की जापानी एजेंट ने हत्या की। 1929 जॉर्ज ईस्टमैन ने पहली रंगीन फिल्म का नमूना पेश किया। 1936 हिंदी सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री नूतन का जन्म। उन्हें बंदिनी, सुजाता, अनारी सहित अनेक फिल्मों में उनके सदाबहार अदाकारी के लिए जाना जाता है। 1940 द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी की सेना ने फ्रांस के राजधानी पेरिस में प्रवेश किया। 1944 अमेरिकी सेना ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रोम में प्रवेश किया।

1958 तीन सदस्यीय पर्वतारोही दल ने गढ़वाल पर्वत श्रृंखला में स्थित 7,011 मीटर ऊंचे त्रिशूल पर्वत शिखर को फतह किया। 1959 सी राजा गोपालाचारी ने स्वतंत्र पार्टी बनाने की घोषणा की। 1964 मालदीप ने संविधान का निर्माण किया। 1970 ब्रिटेन से अलग होकर टोंगा एक स्वतंत्रता देश बना। 1975 अमेरिकी अभिनेत्री एंजेलिना जेली का जन्म हुआ। 1982 इजराइल ने दक्षिण लेबानन पर हमला किया। 1989 चीन की राजधानी बीजिंग में धैन आनमन चौक पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे नागरिकों पर सैन्य कार्रवाई हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली गैर साम्यवादी सरकार यूरोपीय देश में अम्बालिया में बनी। 1997 दूरसंचार उपग्रह 2D अंतरिक्ष की कक्षा में पहुंचा। 2001 नेपाल नरेश दीपेंद्र का अस्पताल में निधन। वीर विक्रम शाह ने नेपाल के सम्राट का पद संभाला। 2003 डोमिनिक

गणराज्यकी 18 वर्षीय सुन्दरी एमिलिया वेगा मिस यूनिवर्स बनी। 2006 यूगोस्लाविया के पूर्व गणराज्य मोंटेनेग्रो ने स्वतंत्रता की घोषणा की और 2015 घाना में एक पेट्रोल पंप पर लगी आग में 200 से अधिक लोगों की मौत हुई।

सताओ, आप कुछ बातें करते हैं। 4 जून को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के 1988 प्रवीण भगत भारत के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है। 1948 अनिल शास्त्री भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। 1946 एस पी बाला सुब्रमण्यम भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध पार्श्व गायकों में से एक है। और 1936 नूतन हिंदी सिनेमा की सबसे प्रसिद्ध अभिनेत्री। चार जून को हुए निधन। 2018 साहित्यकार अभिमन्यु अनंत मॉरिशस में हिंदी कथा साहित्य के सम्राट थे। 2016 आज ही के दिन सुलभा देशपांडे हिंदी और मराठी फिल्मों की भारतीय अभिनेत्री थी। और 1962 अचंत लक्ष्मीपति आयुर्वेदिक औषधियों के प्रचार प्रसार के लिए प्रसिद्ध थे। तो श्रोताओं, ये थे 4 जून यानी कि आज ही के दिन घटने वाले कुछ प्रसिद्ध घटनाओं की जानकारी तथा आज ही के दिन जन्म और निधन हुए कुछ व्यक्तियों के नाम। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। श्रोताओ, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए अब हम आपको सुनवाते हैं आलाप फिल्म का ये गीत, के जे यशुदास के गाए हुए।

अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं हाँ मैंने भी प्यार किया फिल्म से। इस गीत के गायक कलाकार है उदित नारायण।

ये गीत अभी आपने सुने हाँ मैंने भी प्यार किया है फिल्म से। आवाज़ें थे उदित नारायण और साथियों की।

आपके गीत। दोस्तों, FM 100.2 MHz पर आकाशवाणी हाफलॉन्ग आपके लिए पेश करता है आपका प्यारा प्रोग्राम आपके गीत, हर मंगलवार रात के 9 बजे यानी कि एवरी ट्यूसडे एट 9 PM। इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवाते हैं आप ही के रिक्वेस्ट सॉन्ग। दोस्तों, आप अपनी पसंद का कोई भी हिंदी फिल्म सॉन्ग सुनना चाहें तो हमें SMS या फिर WhatsApp के जरिए अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। SMS या फिर WhatsApp करने के लिए उठाइए अपना मोबाइल फोन, टाइप कीजिए गाने के बोल, फिल्म का नाम, साथ ही अपना और अपने दोस्तों का नाम और मैसेज को भेज दें इस नंबर पर 9435700596। अपना पता जरूर लिखें, हमें आपके रिक्वेस्ट का रहेगा बेसब्री से इंतजार।

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। श्रोताओं, लीजिए आप प्रस्तुत है विज्ञान।

संबंधित कार्यक्रम। श्रोताओं, आज विज्ञान का योग है, तो आइए आज हम बातें करते हैं विज्ञान की महत्व के बारे में, यानी कि सिग्निफिकेंस ऑफ साइंस। इसमें आज हम बातें करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ जेमिनी एआई के महत्व के बारे में। श्रोताओं, जेमिनी एआई गूगल द्वारा विकसित की गई सबसे एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई टेक्नोलॉजी है। यह एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी कि एलएलएम है, जो टेक्स्ट, कोड, इमेज, ऑडियो और वीडियो को एक साथ समझ सकता है। यह इंसानों की तरह सोचकर, बातचीत करके और क्रिएटिव कंटेंट बनाकर आपके काम को आसान बनाता है। इसके कुछ प्रमुख फायदे हैं जो कुछ इस प्रकार की है। मल्टी मॉडल क्षमता यानी कि मल्टी मॉडलिटी। जेमिनी सिर्फ टेक्स्ट तक सीमित नहीं है, यह तस्वीरों, वीडियो और ऑडियो को देखकर उनका विश्लेषण कर सकता है। उदाहरण के लिए, यह किसी गणित के सवाल का फोटो देखकर उसे हल कर सकता है। फास्ट कोडिंग और एनालिसिस, ये सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए बहुत मददगार है। ये पाइथन, जावा और सी प्लस प्लस जैसी प्रोग्रामिंग भाषाओं में कोड लिख सकता है, गलतियाँ यानी कि बग्स ढूंढ सकता है और कोडिंग समझा भी सकता है। तेजी से जानकारी और रिसर्च, ये जटिल विषयों को आसानी से समझा सकता है। बड़े आर्टिकल्स का सारांश यानी समारी तैयार कर सकता है और आपके सवालों के सटीक जवाब दे सकते हैं। क्रिएटिविटी और कंटेंट राइटिंग, अगर आपको ब्लॉग पोस्ट, ईमेल, कविता या स्क्रिप्ट लिखनी है तो जेमिनी कुछ भी सेकंड में शानदार कंटेंट तैयार कर सकता है। गूगल इकोसिस्टम में इंटीग्रेशन, ये गूगल वर्कशॉप, DOCS, जीमेल, ड्राइव के साथ बेहतरीन तरीके से काम करता है, जिससे आपके रोज़मर्रा के काम जैसे ईमेल ड्राफ्ट करना या डॉक्यूमेंट बनाना बहुत आसान हो जाता है। आप गूगल जेमिनी की वेबसाइट या ऐप पर जाकर इसके फीचर्स का उपयोग कर सकते हैं।

श्रोताओ, अब बातें करते हैं जेमिनी के मोबाइल एप्लीकेशन से क्या क्या किया जा सकता है। जेमिनी के साथ चैट करके अपने आइडिया बेहतर बनाए जा सकते हैं। जेमिनी का मोबाइल एप्लीकेशन आपके डिवाइस पर गूगल के बेहतरीन एआई मॉडल का एक्सेस देता है। इनकी मदद से ऐसे कोई काम आसानी से किया जा सकता है। कुछ लिखने, अलग अलग तरह के आइडिया दिखने, सीखने वगैरह में मदद पाना, जीमेल या गूगल ड्राइव में मौजूद कंटेंट में कोई जानकारी तुरंत खोजना या उनकी खास जानकारी पाना, तुरंत इमेज जनरेट करना, नए नए तरीकों से मदद पाने के लिए टेक्स्ट, आवाज़, फोटो और अपने कैमरे का इस्तेमाल करना, एंड्रॉयड पर ओके गूगल बोलकर डिवाइस की स्क्रीन पर मौजूद कंटेंट के बारे में जेमिनी से जानकारी पाना, गूगल मैप्स और गूगल फ्लाइट की मदद से प्लान बनाना। जेमिनी से एक के बाद एक लगातार बातें करके किसी भी विषय के बारे में नए नए तरीकों से अपनी समझ बढ़ाना और सीखने का नया अनुभव पाना, अपने आसपास की चीज़ों के बारे में सवाल पूछना, जेमिनी एप्लीकेशन में कैमरा पर टैप करें और फोटो खींचकर उसके बारे में सवाल पूछें, लिखने, व्याकरण की गलतियों ठीक करने और अनुवाद करने में मदद पाना, अलग अलग गतिविधियों के लिए प्रेरणा पाना और मैप की मदद से अपने प्लान विजुअलाइज करना, किसी विषय के बारे में कम शब्दों में जानना या खास जानकारी पाना, ये भी अपनी पसंद के कमेंट में जैसे सूची टेबल या चार्ट में पाए जाते हैं, ये पता लगाना कि कौन सा गाना चल रहा है, टाइप करके बोलकर किसी इमेज का इस्तेमाल करके या कोई फोटो खींचकर चैट शुरू की जा सकती है। परंतु ध्यान दे, गूगल असिस्टेंट में पहले से मिलने वाली ओके गूगल और कुछ सुविधाएं सभी भाषाओं और देश में उपलब्ध नहीं हैं। ये सुविधाएं निगरानी में रखे गए खातों के लिए भी उपलब्ध नहीं है। इस बारे में ज़्यादा जानने की जेमिनी का मोबाइल एप्लीकेशन किन भाषाओं में उपलब्ध है। अगर ऑफिस या स्कूल वाले खाते से जेमिनी ऐप्स को एक्सेस किया जा रहा है तो इसमें जेमिनी के मोबाइल एप्लीकेशन की कुछ सुविधाएं उपलब्ध नहीं होगी। इसमें गूगल असिस्टेंट के जरिए मिलने वाली सुविधाएं जैसे कि बोलकर फ़ोन का तेज़ी से इस्तेमाल करने की सुविधाएं, इस बारे में जाने कि ऑफिस या स्कूल वाले खाते का इस्तेमाल करने वाले लोग जेमिनी के मोबाइल एप्लीकेशन को किस तरह एक्सेस कर सकते हैं।

जेमिनी का मोबाइल एप्लीकेशन इस्तेमाल करने से पहले ये बात ध्यान में रखें, चिकित्सीय, कानूनी, वित्तीय या अन्य पेशेवर सलाह के लिए जेमिनी के जवाबों पर भरोसा ना करें। जेमिनी से मिले जवाब गूगल की राय से अलग हो सकते हैं। कोड के इस्तेमाल की जिम्मेदारी आपकी ही होगी। हो सकता है कि इस पर कोई ओपन सर्च लाइसेंस लागू हो। कोडर उदाहरणों के बारे में ज़्यादा जाने। जेमिनी किसी विषय या व्यक्ति के बारे में गलत या आपत्तिजनक जानकारी दे सकता है, इसलिए इसके जवाबों को दोबारा जांच करें। आपके सुझाव, शिकायत या राय से जेमिनी ऐप्स को ज़्यादा मददगार और सुरक्षित बनाने में मदद मिलती है। टाइप करके, बोलकर या फोटो का इस्तेमाल करके जेमिनी के साथ चैट की जा सकती है। इसकी मदद से कोई काम आसानी से की जा सकते हैं। जैसे एंड्रॉयड में मोबाइल असिस्टेंट के तौर पर जेमिनी का इस्तेमाल करके ये काम किया जा सकता है। स्क्रीन पर दिख रहे किसी कंटेंट के बारे में सवाल पूछना, जैसे किसी वेब पेज की खास जानकारी पाना या तस्वीर में किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा जानना, इसके लिए जेमिनी को क्रोम जैसी किसी भी एप्लीकेशन पर चालू करें। इसके बाद स्क्रीन के बारे में सवाल पूछे या पेज पर मौजूद कंटेंट के बारे में पूछे पर टैप करें और अपने सवाल पूछे। तेज़ी से कोई काम करने के लिए अपनी आवाज़ का इस्तेमाल करना, जैसे मैसेज भेजना या लाइट चालू करना।

गूगल होम की जेमिनी ऐप से कंटेंट करके बोलकर या टाइप करके निर्देश देकर कोई रूटीन शुरू करना आसान है। स्टार्टर और कार्रवाइयों का काम नहीं करती है। जेमिनी की मदद से कोई रूटीन शुरू करने पर कुछ स्टार्टर और कार्रवाइयाँ काम नहीं करती। अगर कोई कार्रवाइयाँ नहीं की जा सकती तो जेमिनी आपको इसकी जानकारी देता है। इसमें कोई चरण वाली ऐसी कार्रवाइयाँ शामिल है जिनके लिए बातचीत की ज़रूरत होती है। जैसे जब जेमिनी पूछता है आपको अलार्म किस समय के लिए सेट करना है। सिर्फ आवाज़ और टेक्स्ट में जवाब देने की सुविधा, मौसम के बारे में पूछने जैसे कार्रवाइयों के लिए जेमिनी अब सिर्फ आवाज़ और टेक्स्ट में जवाब देता है। अब ये मैप या मौसम की जानकारी देने वाले ग्राफ जैसे विजुअल जानकारी नया कार्ड नहीं दिखाता है। कुछ सलाह इस प्रकार की है, जेमिनी अब भी सीखने के दौर में है, इसलिए हो सकता है कि ये कभी भी आपकी मदद ना कर पाए। अगर कोई ऐसा काम है जिसमें जेमिनी के बजाय गूगल असिस्टेंट आपकी मदद कर सकती है तो अपने एंड्रॉयड फ़ोन या टैबलेट पर गूगल असिस्टेंट पर स्विच करें। कुछ सुविधाओं के इस्तेमाल पर उम्र से जुड़ी शर्तें लागू होती है, साथ ही वे निगरानी में रखे गए खातों के लिए उपलब्ध नहीं है। निगरानी में रखे गए खातों में जेमिनी का इस्तेमाल करने के बारे में ज़्यादा जाने। ये सुविधाएँ इन भाषाओं में उपलब्ध नहीं है, जैसे कि बल्गेरियन, क्रोएशियन, एस्टोनियन, फिनिश, ग्रीक, हिंदू, हंगेरियन, तालवियन, रोमानियन, सर्वियन, स्लोवाक और यूक्रेन। निगरानी में रखे गए खातों से जेमिनी का इस्तेमाल करने पर ओके गूगल और वॉइस मैच की सुविधा नहीं मिलेगी। अगर जेमिनी को मुख्य मोबाइल असिस्टेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है तो गूगल असिस्टेंट की कुछ सेवाएं और सुविधाएं काम नहीं करती, जैसे कि मीडिया से जुड़ी सेवाएं, फिलहाल पॉडकास्ट, खबरें, रेडियो स्टेशन और तीसरे पक्ष की कुछ संगीत सुविधाएं जेमिनी पर उपलब्ध नहीं है। अनुवादक मोड, इस मोड का इस्तेमाल करने के लिए आपको गूगल असिस्टेंट पर स्विच करना होगा। ध्यान दें, जेमिनी पर अब भी काम जारी है। अगर आपके काम की कोई सुविधा जेमिनी के मोबाइल एप्लीकेशन पर काम नहीं करती है तो ऐसे में गूगल असिस्टेंट पर फिर से स्विच किया जा सकता है। तो श्रोताओ, ये थे विज्ञान संबंधित कार्यक्रमों पर आज के कुछ जेमिनी एआई की महत्व के बारे में जानकारी, यानी कि सिग्निफिकेंस ऑफ जेमिनी एआई। तो श्रोताओ, विज्ञान संबंधित ये कार्यक्रम को जारी रखते हुए आइए अब हम आपको सुनवाते हैं कुछ फिल्मी गीत।

श्रोताओं, यह गीत अभी आपने सुने धर्मवीर फिल्म से। आवाजें थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। आइए अब सुनते हैं अगला गीत, जाने कहां से आई है। इस फिल्म के गीत गायक कलाकार है राशिद अली।

0: श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं अगला गीत सत्ते पे सत्ता फिल्म से। आवाजें है आर डी बर्मन, किशोर कुमार, आशा भोसले, भूपिंदर और साथियों की।
1: Mm-mm.

0: फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज से अहमदाबाद में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, औषधि उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। डेल्सी रोड्रिगेज 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। हमारी संवाददाता की ये रिपोर्ट।
5: राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है। वह इससे पहले 2015 में विदेश मंत्री और 2019, 2023, 2024 तथा 2025 में उपराष्ट्रपति के रूप में भारत का दौरा कर चुकी हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल भारत के ऊर्जा, औषधि और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी कई प्रतिष्ठानों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं को समझना तथा सहयोग की नई संभावनाओं की तलाश करना है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर आधारित सौहार्दपूर्ण संबंध है। मंत्रालय के अनुसार इस यात्रा से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध और अधिक मजबूत होंगे तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को नई गति मिलेगी। अनुपम मिश्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से इशिका शाह।
4: ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री येवेट कूपर 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी ये यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
6: बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उत्तर पूर्वी परिषद सदस्य और केंद्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। अनुमेदिता और ऋषो की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
7: इस सम्मेलन के दौरान काशी के विश्व प्रसिद्ध GI टैग प्राप्त और ODOP यानी एक जिला एक उत्पाद की एक विशेष प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। प्रदर्शनी में 6 कारीगर, वाराणसी की समृद्ध शिल्प परंपराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 6 अनूठे उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। ये उत्पाद काशी की सदियों पुरानी कला, शिल्प कौशल और सांस्कृतिक विरासत के जीवंत प्रतीक हैं। प्रदर्शनी के माध्यम से विदेशी प्रतिनिधियों को न केवल इन उत्पादों की विशिष्टता से परिचित कराया जाएगा, बल्कि स्थानीय कलाकारों और कारीगरों को भी वैश्विक बाजार में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
4: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम कारोबार करने में सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
8: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें। इसके अलावा 2017 में GST लागू किया गया, जिसे अलग अलग कर व्यवस्थाओं की जगह एक सरल कर प्रणाली लागू हुई, जिससे कारोबार करना आसान हो गया। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
9: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष के ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। स्टेबिलिटी के लिए अप्रत्यक्ष कर के रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है। लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
8: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। जेम से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जेम की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुँच प्रदान करता है।
10: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जेम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। MSME स्टार्टअप, महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
8: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी, जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। भारत में कारोबार के लिए बेहतर माहौल, मजबूत डिजिटल व्यवस्था और पारदर्शी शासन से व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिल रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसका मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिताओं में योग को शामिल करना है।
11: इस 5 दिवसीय वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका सहित 60 देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी 12 विभिन्न स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। इस चैंपियनशिप के दौरान खिलाड़ी कला संख्यात्मक और लयबद्ध योग डिविजनों के साथ साथ सात आधिकारिक योग श्रेणियों में हिस्सा लेंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
4: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। ये घटना ब्रह्मपुरा थाना

0: क्षेत्र में कल रात हुई। घटना की जांच जारी है। इधर नई दिल्ली के मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में लिया है। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत और अमरीका लंबे समय से प्रस्तावित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से बेहद करीब हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ये समझौता अगले कुछ सप्ताह में पूरा हो सकता है। रूबियो ने कहा कि हाल ही में भारत यात्रा के दौरान क्वाड देशों के प्रतिनिधियों के साथ इस संबंध में चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि क्वाड देश अब केवल बातचीत तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग सहित कई ठोस परियोजनाओं पर मिलकर काम कर रहे हैं।
1: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं, वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
0: भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। गोवा के मडगांव में कल भारतीय महिला फुटबॉल टीम 6 साल बाद सैफ महिला चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची। 5 बार के विजेता भारत का फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से सामना होगा। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, कर्नाटक, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तराखंड में भी बारिश की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी की आशंका है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित मुख्य समाचार पत्रों ने आज मालवीय नगर के होटल में लगी भीषण आग की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, दिल्ली में भयावह अग्निकांड। दैनिक जागरण के शब्द हैं, अवैध होटल में 21 की मौत, 11 विदेशियों सहित 21 जिंदा जले। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, घटना के बाद अग्नि सुरक्षा संबंधी व्यापक अभियान चलाने पर सख्ती। शीर्षक से हिन्दुस्तान ने लिखा है, नियम तोड़ने वाले प्रतिष्ठान सील होंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए अनुग्रह राशि देने की खबर भी अधिकतम समाचार पत्रों में है। अमर उजाला ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के 2 गुटों में बंटने की खबर को शीर्षक दिया है। तृणमूल में टूट, 58 बागी विधायकों ने ऋत व्रत को चुना नेता, मिली मान्यता। इसी खबर पर राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, टूट गई टीएमसी, 58 विधायकों ने स्पीकर को सौंपा समर्थन पत्र। अमेरिका द्वारा भारत सहित 50 से अधिक देशों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने के प्रस्ताव पर नवभारत टाइम्स ने बॉक्स में लिखा है, अमेरिका ट्रेड डील पर बातचीत के बीच 12.5% की एक्स्ट्रा ड्यूटी का पेच अमर उजाला ने छापा है। ट्रंप प्रशासन का आरोप, इन देशों ने बंधुआ मजदूरी रोकने के लिए नहीं उठाए कदम, इसलिए लगाया जा रहा है शुल्क। भारत ने जताई कड़ी आपत्ति। वैश्विक तापमान में हो रही वृद्धि पर अमर उजाला ने संपादकीय लेख में संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के हवाले से चिंता व्यक्त करते हुए टिप्पणी की है, जून से अगस्त 2026 के बीच अल नीनो सक्रिय होने की 80% और नवंबर तक बने रहने की आशंका है। मेघालय के चेरापूंजी में सेवन सिस्टर्स और किनरेम वाटरफॉल में लगातार हो रही बारिश की मनमोहक तस्वीर दैनिक भास्कर में है। पौष्टिक आहार के फायदों की याद दिलाते हुए लोकसत्ते ने टिप्पणी की है, याददाश्त बढ़ाने में सहायक पौष्टिक आहार।
0: धन्यवाद सरफिरोजी। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज शिलोंग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। अमरीका के विदेश मंत्री मार्क

0: रूबियो ने कहा, अमेरिका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर। भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: अभी आपने सुने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए गए समाचार प्रभात। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। सताओ लीजिए, आप प्रस्तुत है देशभक्ति गीतों के कार्यक्रम के तहत। कुछ सुनिए हिंदी देशभक्ति गीत।

0: खैर, ये बताओ तुम्हें ये क्लब कैसे लगा?
1: अच्छा है, मगर चाचा जी आपने तो कहा था कि ये क्लब अपने देश वालों का है, अपनापन तो यहाँ दिखाई नहीं दिया।
2: माय फुट, इंडियंस को अपनापन वहीं दिखाई देता है जहाँ मुरझाए हुए चेहरे और खाली पेट हो।
1: जी
2: और नहीं तो क्या, यहाँ देखो हर आदमी खुशहाल नजर आता है, न रोटी की फिक्र, न कपड़े का गम और न घूंघट का झगड़ा। और एक तुम्हारा देश है मिस्टर, चार रोटी में से एक रोटी कर्जे की खाता है तुम्हारा देश।
1: वो देश आपका

है कोई ऐसी बात तुम्हारे देश की जिस पर के सर ऊंचा कर सको? नहीं माय डियर बॉय, तुम्हारे देश ने कुछ नहीं दिया। इंडियाज कंट्रीब्यूशन इज जीरो जीरो एंड जीरो।

इसी गीत के साथ ही आज का देशभक्ति गीतों के कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। सताओ, अब से थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के शिलांग केंद्र से रिले किए जाएंगे नॉर्थ ईस्ट न्यूज़।

0: 20 हफलोंग पेश करता है बहुत ही खास फोन इन प्रोग्राम हेलो हफलोंग,
1: हर शनिवार और रविवार को रात के 9 बजे यानी कि एवरी सैटरडे एंड संडे एट 9 PM।
0: इस प्रोग्राम में हम आपसे बातें करते हैं और आपको आपका फेवरेट हिंदी फिल्म सॉन्ग भी सुनवाते हैं, और एक खास बात, आप अपना पसंदीदा गाना किसी को डेडिकेट भी कर सकते हैं। दोस्तों, कॉल करने के लिए नोट कीजिए हमारा नंबर है 9435700596। कॉल करने का समय है हर बुधवार को दिन के 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच यानी कि एवरी वेडनेसडे बिटवीन 1 to 2 PM ओनली। आपके कॉल्स का हमें रहता है बेसब्री से इंतजार। दोस्तों, कॉल जरूर कीजिए और सुनते रहिए आपका फेवरेट प्रोग्राम हेलो हाफलॉन्ग।

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। श्रोताओं लीजिए आप प्रस्तुत है आप सबका सदाबहार कार्यक्रम सुरों की रंगली। हमारे आज के इस कार्यक्रम की कलाकार है सुमन कल्याणपुर।

इसी गीत के साथ ही हमारे आज के सिरों की रंगली कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। अब से थोड़ी ही देर में यानी कि सुबह 9 बजे रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से पुअर आंचलिक बातरी।

फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। श्रोताओ, लीजिए आप प्रस्तुत है स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम। इसमें सबसे पहले आइए सुनते हैं खेलमा कार्यक्रम। खेलमा कार्यक्रम में श्रोताओं के लिए आज हम लाए हैं कुछ भक्ति गीत। आवाजें हैं जैते लेन जैते और साथियों की।

रामखल कार्यक्रम के तहत श्रोता अब तक सुन रहे थे रामखल आधुनिक गीत। आवाजें थे कालिस्टा एन रामखल और साथियों की, और इन्हीं गीतों के साथ ही आज का रामखल कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है। श्रोताओं, लीजिए आप प्रस्तुत है जयंतिया कार्यक्रम। इसमें आइए अब सुनते हैं कुछ जयंतिया भक्ति गीत। आवाजें है एवीवन रिम्बाई और साथियों की।

जयंतिया कार्यक्रम के तहत श्रोता अब तक सुन रहे थे कुछ जयंतिया भक्ति गीत। आवाज़ें थे एबिमन रिम्बाई और साथियों की, और इन्हीं गीतों के साथ ही आज का जयंतिया कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। श्रोताओं, लीजिए आप प्रस्तुत है बेते कार्यक्रम। इसमें आइए आप सुनते हैं कुछ बेते भक्ति गीत। आवाज़ें हैं जार्लिनी बेते और साथियों की।

0: बेते कार्यक्रम के तहत अभी आपने सुने बेते भक्ति गीत ज़ारलेन बेते और साथियों के आवाज़ों में। और इसी के साथ ही हमारे आज के बेते कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का हाफ लंग केंद्र है। अब से थोड़ी देर में आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले किए जाएंगे विविध भारती के कार्यक्रम।
1: बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर गायत्री आहूजा को, जो अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांग जन संस्थान की विभागाध्यक्ष है, यानी कि अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज। ये संस्था देश भर के दिव्यांग जनों के लिए बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रही है। ऐसे छात्र जो श्रवण बाधित हैं और बोलने में समर्थ नहीं है, उन बच्चों को शिक्षा देना, उन्हें सिखाना कितना मुश्किल होता है, कितना चुनौतीपूर्ण होता है, ये सब कुछ बताएंगे डॉक्टर गायत्री आहूजा। विविध भारती के स्टूडियो में डॉक्टर गायत्री, हम आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और विविध भारती से जुड़ना मुझे लगता है काफ़ी सम्मान की बात होती है, सो थैंक यू सो मच। और ये इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने के लिए आपने मुझे बुलाया है, सो थैंक यू सो मच।
0: और ये एक ऐसी संस्था है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी भी नहीं होती है, तो इस संस्था के बारे में आप जानकारी दीजिए सबसे पहले, और उसके बाद बताइए कि श्रवण बाधित बच्चों की शिक्षा बाकी बच्चों से किस तरह से अलग होती है। तो मेरे ख्याल से एक साथ दो सवाल हो गए।
1: कोई नहीं। अलिया वर्जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज़ का हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, और जहाँ पे मैं वहाँ पे काम करती हूँ, ये हेडक्वार्टर्स है। और हेडक्वार्टर्स से जुड़े हुए रीजनल सेंटर्स भी हैं, जैसे सिकंदराबाद है, कोलकाता है, नोएडा है। हमारे अंतर्गत कॉम्पोजिट रीजनल सेंटर्स भी हैं, जैसे कि अहमदाबाद, गोवा एंड छतरपुर, नागपुर एज वेल। हम सारी संस्था जो हैं स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज़ पे काम करती हैं। पीडियाट्रिक से लेके जेरियाट्रिक पॉपुलेशन तक हम डील करते हैं। मतलब आप अगर हमारी संस्था में आएंगे तो आप बिल्कुल छोटे से छोटा बच्चा देखेंगे, एज वेल एज 80 ईयर अबाव लोग भी देखेंगे। तो उन सब की हम श्रवण की जांच, स्पीच की जांच, जो हेडक्वार्टर्स है मुंबई, सिकंदराबाद, नोएडा एंड कोलकाता में, स्पीच एंड हियरिंग से जुड़ी हुई करते हैं। पर जो सीआरसीज हैं, जैसे अहमदाबाद हो गया या नागपुर हुआ या छतरपुर हुआ, वहाँ पे हम सारे डिसेबिलिटीज के साथ डील करते हैं। तो ये बेसिक हमारा काम है, जहाँ पे हम आइडेंटिफिकेशन भी करते हैं, इंटरवेंशन भी करते हैं। सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी करते हैं। अच्छा। हमारे अंतर्गत डिप्लोमा के कोर्सेज, बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी प्रोग्राम्स, साइन लैंग्वेज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चलते हैं। पेरेंट्स के लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाते हैं, जिससे वो खुद एम्पावर हो सके। एंड पेरेंट्स के लिए जो प्रोग्राम्स हम करते हैं वो मोस्टली फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। बहुत बार हम इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज के लिए भी कार्यक्रम करते हैं कि बैंकिंग किस तरीके से करना चाहिए या इंग्लिश स्पीकिंग किस तरीके से करना चाहिए। वॉट एवर स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज हम चलाते हैं, वो भी हम बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट चलाते हैं। तो रेंज बहुत सारी है कि जहाँ पे हम बच्चे से लेके सीनियर सिटीजन तक के लिए हम काम करते हैं।
0: जी,
1: ये हो गया पहला सवाल।
0: हाँ, राइट। और फिर कितना अंतर है एक सामान्य बच्चे को पढ़ाना, शिक्षा देना, और श्रवण बाधित जो बोलने में समर्थ नहीं है उनको सिखाना, कितना कठिन होता है, कितना चुनौतीपूर्ण होता है?
1: ओके, अब जो बच्चा एडुकेशन के लिए स्कूलिंग सिस्टम में जाता है, एक सामान्य बच्चा, ठीक है, सामान्य बच्चे के जो गोल्स होते हैं एडुकेशन के, वो सेम गोल्स हियरिंग इम्पेयर्ड या श्रवण बाधित बच्चों के भी होते हैं। ओके, जनरल गोल्स सेम रहते हैं। बट आप ऐसा सोचिए कि एक बच्चा है जिसको सुनाई नहीं देता है, ठीक है, अब उसको सुनाई नहीं देता है हियरिंग लॉस की वजह से, उसके तीन चीजें बेसिकली इम्पैक्ट होती हैं, स्पीच वाचा में प्रॉब्लम, लैंग्वेज में इश्यूज एंड कम्युनिकेशन में इश्यूज। ओके, तो एक चीज तीन चीज से जुड़ी हुई है। अब ऐसे बच्चों को जब हम एडुकेट करते हैं तो अगेन इसके अंदर दो पहलू आ जाते हैं। एक ग्रुप जहाँ पे हम हियरिंग एड या कॉकलियर इम्प्लांट लिसनिंग डिवाइसेस से हम सिखाते हैं, जहाँ पे हम पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चा सुने और बात करे। फिर एक ग्रुप है जहाँ पे हम साइन लैंग्वेज के माध्यम से हम पढ़ाते हैं। तो जनरल गोल्स तो आपके हो गए कि नॉलेज का डेवलपमेंट करना है, स्किल्स को डेवलप करना है, ओवरऑल डेवलपमेंट करना है। ओवरऑल डेवलपमेंट बेसिकली मतलब आपका बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये सारे डेवलपमेंट तो हो गए जनरल गोल। पर जब मैं स्पेसिफिक गोल की बात करती हूँ, तो स्पेसिफिक गोल में आ गया मेरा इस बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट करना, स्पीच डेवलपमेंट करना, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट करना,

0: अब कम्युनिकेशन भी कितनी चीज़ों से जुड़ी हुई है. फॉर एग्जाम्पल, अब हम साथ में बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं, पर मेरी उंगलियां भी चल रही है, मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस भी हो रहे हैं, मेरे आँख वाँख भी, यू नो, इट्स गोइंग अप एंड डाउन, एंड बहुत सारा बॉडी लैंग्वेज है एंड स्माइल है, और जो मैं महसूस कर रही हूँ वो मैं बता सकती हूँ. ठीक है, नाउ यू इमेजिन अ चाइल्ड जिसको, जो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके पास भाषा नहीं है. तो कम्युनिकेशन इज सच अ वेरी बिग इम्पॉर्टेंट रोल. कम्युनिकेशन करने के लिए भाषा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. भाषा नहीं है तो वो समाज में किस तरीके से उठेगा बैठेगा, वो समाज में इंटरैक्ट कैसे करेगा और पार्टिसिपेट कैसे करेगा, वो जो महसूस करता है या करती है वो किस तरीके से व्यक्त करेगा. तो जो एडुकेशन है, जो हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए जो एडुकेशन है, वो ये सारी पहलुओं को देखकर हम उसका एडुकेशन का विकास करते हैं. अगेन, अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर एडुकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट इज पेरेंट्स का एम्पावरमेंट करना. तो पेरेंट्स के लिए हम बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराते हैं कि बच्चे को हियरिंग एड किस तरीके से लगाना है, या कॉकलियर इम्प्लांट है तो किस तरीके से लगाना है. अगर हियरिंग एड या कॉकलियर इम्प्लांट में कुछ भी रिपेयर्स हुए तो उसको सिंपल रिपेयर्स किस तरीके से करने हैं, और अगर बच्चा हियरिंग एड और कॉकलियर इम्प्लांट नहीं लगाता है, सांकेतिक भाषा से बात करता है, इशारों में बात करता है, इशारे इज़ अ वेरी सिंपल टर्म, हम उसको सांकेतिक भाषा बोलते हैं, और सांकेतिक भाषा में अगर बात करता है या करती है तो पेरेंट्स को भी आनी चाहिए सांकेतिक भाषा, तब तो कम्युनिकेशन साइकिल कंप्लीट होगी. तो बहुत सारे एडिशनल गोल्स आ जाते हैं जब हम एडुकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों की बात करते हैं. तो
1: यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, फिर और बातें करते हैं. कौन सा गाना सुनवाएं?
0: मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, ये गाना बहुत पसंद है,
1: ये धरती ये नदियां और
0: विविध भारती और अलियावर जंग.
1: क्या बात है, सुनते हैं.
2: बड़े अच्छे लगते हैं
3: क्या?

0: इस गाने के पहले आप जिक्र कर रही थी कि किस तरह से आप शिक्षा देती हैं और पेरेंट्स को भी बुलाते हैं, तो वो बड़ा मुश्किल काम होता होगा पेरेंट्स को सिखाना। कौन सी प्रणाली होती है, कैसे आप सिखाती हैं, कैसे ट्रीट करती हैं उनको?
1: पेरेंट्स के लिए, नाउ यू इमेजिन अ फीमेल हु इज़ प्रेग्नेंट, एंड हर फीमेल को लगता है या हर माँ बाप को लगता है या हर फैमिली को लगता है कि जो बच्चा होगा वो काफ़ी हेल्दी होगा। ओके, इट्स नॉर्मल। बच्चा चाइल्ड इज़ बॉर्न एंड यू कम टू नो कि नहीं बच्चे को हियरिंग लॉस है, तो सबसे पहले जो चीज़ है वो है एक्सेप्टेंस, कि उसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है कि ओके आई हैव अ चाइल्ड, आई हैव अ हेल्दी चाइल्ड, बट द चाइल्ड इज़ हैविंग दिस एज अ कंसर्न। ओके, दूसरी चीज़ ये है कि या तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं या तो बिल्कुल भी प्रोटेक्टिव नहीं होते हैं। बैलेंस्ड अप्रोच कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिसिंग हो जाता है, तो वो भी उनको बताना होता है कि किस तरीके से एक बैलेंस्ड अप्रोच रखना है, ना कि यू नो ओवर हो या अंडर हो। यू हैव टू कंसिडर योर चाइल्ड, एक्सेप्ट द चाइल्ड, उसको उतनी ही रेस्पेक्ट दें जितनी बाकी बच्चों को दी जाती है। उसे ऐसा नहीं लगे कि हाँ मैं कुछ अलग हूँ इसलिए मम्मी पापा मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं, तो उसे भी अपनापन लगना चाहिए और मैं इस ही घर का एक हिस्सा हूँ ये उसे समझना बहुत ज़रूरी है। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पेरेंट्स को एडुकेशन के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर इन्वॉल्व हुए तो यस द चाइल्ड कैन प्रोसीड या प्रोग्रेस आराम से। इसलिए हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं कोर्सेज करने के लिए, चाहे डिप्लोमा हो या बैचलर्स हो, जिनके खुद के बच्चों को या तो हियरिंग लॉस हो या कोई कंसर्न हो, वो खुद भी आते हैं। क्योंकि जब तक पेरेंट्स को नहीं पता चलेगा कि इन बच्चों में क्या कंसर्न्स हैं, तो वो बच्चों की डेवलपमेंट में कैसे भागीदारी ले सकते हैं। स्कूल्स के साथ जुड़े रहें लगातार, या फॉलो अप ऑडियोलॉजिस्ट या स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के साथ करते रहें। टीचर्स के साथ जुड़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अगर आपका बच्चा सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करता है तो आप खुद भी सीखें सांकेतिक भाषा, विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। बहुत बार ये देखा गया है कि क्या होता है कि पता तो चल जाता है कि बच्चे को हियरिंग लॉस है, ओके, बट माँ या फादर बाकी फैमिली मेंबर्स को बताते ही नहीं है कि बच्चे को कुछ इशू है,
0: रिश्तेदारों को
1: और बाकी लोगों को बताते ही नहीं है, डर के मारे शर्म के मारे कुछ बताते ही नहीं है। अब इससे क्या होता है, पहचान तो हो गई कि मेरे बच्चे को कुछ ना कुछ तो इश्यूज है, कंसर्न्स है, मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, बट इंटरवेंशन बहुत टाइम के बाद होता है, 4-5 साल के बाद हो जाता है। तो ये जो गैप है आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन का, ये बढ़ते जाता है, ये कहीं ना कहीं कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो उनका माइंडसेट कैसा है पेरेंट्स का, दैट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। पॉजिटिव माइंड सेट रखेंगे तो येस द चाइल्ड कैन प्रोग्रेस। ऐसा नहीं है कि चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट आगे प्रोग्रेस नहीं करते हैं। मेरा खुद का एक स्टूडेंट है जो PhD कर रहा है, सुनील सहस्रबुद्धे, वो खुद PhD कर रहा है। शिवाजी पांडा सर हैं, काफ़ी बड़े रोल मॉडल हैं, उनकी तो PhD हो भी चुकी है, उन्होंने खुद का अपना एक स्कूल सेटअप बनाया है उड़ीसा में। सो देर आर मैनी हु आर हैविंग हियरिंग लॉस और एक बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंच गए हैं। हम हियरिंग लॉस के क्षेत्र में डॉक्टर मदन वशिष्ठ का नाम लेते हैं हमेशा, वो खुद भी हियरिंग इम्पेयरमेंट है उनको है, एंड गैलोडेट यूनिवर्सिटी में डीन रह चुके हैं। सो इट इज़ पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, बट टाइमली और अप्रोप्रिएट सपोर्ट सिस्टम लेके अगर हम काम करें तो थिंग्स आर पॉसिबल।
0: तो किन किन क्षेत्रों में ये बच्चे आगे बढ़ जाते हैं, ज्यादातर कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर इनके लिए मुश्किल पैदा हो सकती है?
1: देखिए, अभी जैसे मैंने कहा कि हियरिंग लॉस की वजह से लैंग्वेज, स्पीच और कम्युनिकेशन अफेक्टेड है, ओके, सो अगर ये तीन चीज आपने सही, टाइमली, अप्रोप्रिएटली डेवलप कर दी तो बच्चे को कोई कंसर्न्स, इश्यूज नहीं आएंगे। हमारे पास ऐसे भी चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयर्ड हैं जो BSLP जिन्होंने कर चुके हैं, ओके, ऑडियोलॉजी का कोर्स कर चुके हैं, ऑडियोलॉजिस्ट हैं अभी, ओके। एडुकेशन के क्षेत्र में तो बहुत अच्छा करते हैं, बहुत जगह पे यू विल फाइंड जो डेफ टीचर्स बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं बच्चों के साथ। टीचर के क्षेत्र में मैंने बहुत सारे देखे हैं, प्लस यू विल फाइंड मेनी पीपल इन IIMs, IITs ऑल्सो यू विल फाइंड। तो अगेन एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू आइडेंटिफिकेशन, इंटरवेंशन का गैप कम करना है, एंड पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर हम काम करें तो यस थिंग्स आर पॉसिबल। प्लस टीम अप्रोच में काम करना बहुत ज़रूरी है। टीम अप्रोच का मतलब पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, जो भी उनके थेरेपिस्ट होंगे या साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर हो गए, इन सबको साथ में लेकर अगर वो आगे बढ़ेंगे तो यस थिंग्स आर पॉसिबल।
0: बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर गायत्री, हमें बताइए कि कैसे पहचाने कि किसी बच्चे को हियरिंग लॉस है, मतलब वो सुनने में असमर्थ है, प्रारंभिक अवस्था में कैसे पहचान होती है?
1: ओके, फॉर सिंपल एग्जांपल, अगर मैं फैमिली सेटअप पे बात करूँ तो आप जोर से आवाज़ बुला रहे हैं बच्चे का, राहुल राहुल राहुल, बच्चा प्रतिसाद नहीं करता है। आपने चिल्ला के बात किया तभी भी प्रतिसाद नहीं कर रहा है, देर इज़ नो चेंजेस इन एक्सप्रेशन। हमें जब आवाज़ आती है तो हम उस तरफ देखते हैं, ओके, जहाँ से आवाज़ आती है हम उस तरफ देखते हैं, तो बच्चा वहाँ पे रिस्पॉन्ड नहीं करता है। अगर बहुत ज़ोर से कोई आवाज़ आती है तो हम नॉर्मली दचकते हैं, वी स्टार्टल, ओके। अगर बच्चा स्टार्टल नहीं करता है या दचकता नहीं है, तो दीज आर सर्टन साइंस जहाँ पे बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। अगेन घर की घंटी बजी है एंड द चाइल्ड इज नॉट अंडरस्टैंडिंग कि देयर इज अ डोर बेल। तो एनवायरमेंटल साउंड्स को अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है या फाइन साउंड्स जैसे स्पीच साउंड्स को वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है, तो येस द चाइल्ड कैन हैव इश्यूज। बहुत बार क्या होता है कि हियरिंग लॉस उतनी मात्रा पे नहीं है, माइल्ड मॉडरेट या मॉडरेटली सीवियर है, तो उन बच्चों को पहचाना थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे है, पर उसके लिए जांच करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी ऐसे बहुत सारे बच्चे आपको रेगुलर स्कूल्स में मिल जाएंगे, जनरल स्कूल्स में मिल जाएंगे, ठीक है, जहाँ पे बच्चे को लॉस तो है बट आप अगर थोड़ा ज़ोर से बोलते हो तो बच्चा रिस्पॉन्ड कर लेता है। बट वेन यू से टर्न पेज नंबर दिस, तो पेज नंबर ये टर्न करना है, ये पूरा वाक्य समझना उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अगेन ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहुत ऊंचा बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं कंसर्न्स हैं। तो ये सब एक बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज है जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए, और अगर ऐसा कोई बिहेवियरल रिस्पॉन्स आप देखते हो तो तुरंत ENT ऑडियोलॉजिस्ट को मिलने, ताकि हमें पता चले कि हियरिंग लॉस है तो कितना हियरिंग लॉस है, और अगर हियरिंग लॉस है क्या वो दवाई से या सर्जरी से ठीक हो सकता है, तो फाइन, नहीं ठीक हो सकता है तो व्हाट आर द डिफरेंट अल्टरनेटिव्स, चाहे वो हियरिंग एड लगा दें या कॉकलियर इम्प्लांट लगें या हमको साइन लैंग्वेज का है सपोर्ट चाहिए, क्या करना है, तो हम प्लान ऑफ एक्शन बना सकते हैं। तो दिस इज द बेसिक।
0: और शुरुआत में कोई चीज पता चल जाती है तो उसका इलाज भी संभव है।
1: एग्जैक्टली,
0: छोटी मोटी तकलीफें, छोटी मोटी समस्या है तो उसका इलाज भी संभव है। यहाँ पर एक गाना सुन लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना?
1: पल पल दिल के पास
0: तुम रहती हो।
1: हाँ जी, किशोर कुमार जी
0: जी, सुनते हैं ये गाना।

0: डॉक्टर गायत्री, हमारे श्रोताओं को बताइए कि सुनना और बोलना एक साथ जुड़ा हुआ है, तो क्या जिनको सुनने में समस्या होती है निश्चित रूप से उनको बोलने में भी समस्या होती है? ऐसा भी होता है कि बोलना बहुत स्मूथ होता है और सुनने में प्रॉब्लम होती है, ये इसके बारे में हमारे श्रोताओं को ज़रा विस्तार से बताइए।
1: स्पीच इम्पेयरमेंट और हियरिंग इम्पेयरमेंट दो अलग अलग डिसेबिलिटी है, ठीक है। अब पहले हम चलते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट के क्षेत्र में। मुझे सुनाई नहीं देता है, अगेन आई रिपीट, इसलिए मुझे भाषा वाचा और संप्रेक्षण में तकलीफ होगी, ठीक है। पर ये डिपेंड करता है कि मुझे कितना हियरिंग लॉस है, ओके। उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि मेरा वाचा, भाषा और संप्रेक्षण कितना अफेक्टेड रहेगा। तो हियरिंग इम्पेयरमेंट की वजह से मुझे बात करने में प्रॉब्लम आएगी और भाषा वाचा और संप्रेक्षण में प्रॉब्लम आएगी। स्पीच इम्पेयरमेंट बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है जिस बच्चे को स्पीच इम्पेयरमेंट हो उसको हियरिंग इम्पेयरमेंट हो, बिल्कुल नहीं। स्पीच इम्पेयरमेंट टोटली डिफरेंट थिंग है। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, आप जब बात करते हैं तो बात करने के लिए जो जो ऑर्गन्स या इन्वॉल्व हैं, ओके, जो भी आर्टिकुलेटर्स इन्वॉल्व हैं या जो वोकल फोल्ड्स हैं या जो भी इन्वॉल्व हैं, ओके, वो एक टोटली डिफरेंट क्षेत्र है, ओके। तो हियरिंग इम्पेयरमेंट की वजह से मुझे बात करने में तकलीफ हो सकती है, पर मैं बात नहीं कर सकती हूँ, या मुझे स्टटरिंग है या स्टैमरिंग है या मुझे कोई भी स्पीच रिलेटेड कंसर्न्स है, बट दैट डजंट मीन कि मुझे हियरिंग लॉस भी है। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं,
0: जी
1: पर बहुत बार लोग उसको मिक्स कर लेते हैं। तो पहले जब हमारे पास पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट था, तब वी हैड डेफ की डेफिनेशन थी हमारे पास, एंड डेफ एक प्रॉपर एक डिसेबिलिटी था। RPWD एक्ट जब आया 2016, तो दो अलग डिसेबिलिटी बना दी, स्पीच इम्पेयरमेंट अलग, हियरिंग इम्पेयरमेंट अलग। एंड दोनों की टेक्निक्स, मेथड्स, सिखाने के तरीके एंड थेरेपी सेशंस काफ़ी अलग हैं। तो ये दोनों

0: कुछ बच्चे हैं जिनको स्पीच इश्यूज़ हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक प्रशस्त ऐप बनाया है. ओके, तो वो ऐप से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये बच्चे को रेड फ्लैग है कि ग्रीन फ्लैग है. ओके, तो वो स्क्रीनिंग करने में काफ़ी यू नो आसानी होती है कि हाँ वो बच्चा कौन से ग्रुप में फिट होता है, ताकि आपका इंटरवेंशन प्रोग्राम या थेरेपी प्रोग्राम उस तरीके से बढ़ते जाएगा.
1: तो जो बच्चे सामान्य स्कूल में सामान्य विद्यालय में पढ़ते हैं, तो टीचर्स का, शिक्षक का किस तरह का सहयोग होना चाहिए, क्या भूमिका होती है फिर?
0: जो जनरल टीचर्स हैं, जो रेगुलर टीचर्स हैं, उनके क्लास में यू विल फाइंड कि बहुत सारे अलग अलग यू नो डिसेबिलिटी के बच्चे होते हैं उनके क्लास में भी. तो उनके लिए कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. जैसे कि अगर आपको मालूम है कि आपके क्लास में ऐसा बच्चा है जिनको सुनने में तकलीफ़ है, तो उस बच्चे का आप सिटिंग अरेंजमेंट सही करें, मतलब उसको ठीक सामने बैठाएं, ताकि उसका हियरिंग एड जो एम्पलीफाई करता है साउंड, या वो कॉकलियर इम्प्लांट यूज़ करता होगा, या जो आपको स्पीच रीड करता होगा, आपकी तरफ देख के यू नो वो समझता होगा, तो उसमें काफ़ी मदद हो जाती है. तो सिटिंग अरेंजमेंट अच्छे से रखें. क्लासरूम नॉइस को जितना कम कर सकते हो उतना अच्छा है, ताकि आप जो बात कर रहे हैं या जो उसका पीयर ग्रुप है, जो उसके फ्रेंड सर्कल हैं, जो वो बात कर रहे हैं, उनको वो ध्यान लेके समझ सके और सुन सके. दूसरी, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जैसे मैं तो कहूँगी कि अगर आप पेरेंट्स को बुलाएं क्लास में और उनको बोलें आप बैठो और ऑब्जर्व करो कि किस तरीके से पढ़ाया जाता है, तो दैट विल ऑल्सो बी हेल्पफुल. तो पेरेंट एम्पावरमेंट अगेन मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पेरेंट का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. जब उनको लगे कि यस इसमें मुझे पढ़ाने में ये तकलीफ़ हो रही है, तो मैं इसको किस तरीके से पढ़ाऊँ, तो सपोर्ट लेना स्पेशल एडुकेटर्स विल रियली हेल्प. बिकॉज स्पेशल एडुकेटर्स जिस तरीके से पढ़ाते हैं, उनका मेथड्स और टेक्निक्स काफ़ी अलग होता है, तो वो बहुत हेल्प कर सकते हैं जनरल एडुकेटर्स को कि हम किस तरीके से आगे पढ़ा सकते हैं. चौथी चीज़ इज़ जो वो हियरिंग एड पहनते हैं, जो वो यहाँ तो कॉकलियर इम्प्लांट लगाते होंगे, आपने बहुत बार देखा होगा कान के पीछे एक मशीन होती है, ठीक है, और कान के पीछे और कान के ऊपर तक एक मशीन लगती होगी, तो हियरिंग एड हो या कॉकलियर इम्प्लांट बहुत कॉमन हो गई है, तो वो चल रही है कि नहीं चल रही है उसको भी जांचना बहुत जरूरी है. क्योंकि हो सकता है बच्चे ने लगा तो दी है मशीन, पर बैटरी खत्म हो गई है, आवाज जा भी नहीं रही है. तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं कि आवाज जा तो रही है, बच्चा सुन तो रहा है, अगर मशीन खराब हो गई है तो अगर आप ठीक नहीं भी कर सकते हो, तो पेरेंट्स को बोल दो कि हाँ बाबा ये मशीन चल नहीं रही है तो आप ठीक करो, या माइनर रिपेयर्स करने आपको आने चाहिए. अगेन जैसे मैंने लास्ट कहा कि टीम अप्रोच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि इफ देर इज एनी कंसर्न आप उसको ऑडियोलॉजिस्ट के पास भेजें, ENT के पास भेजें, और स्पेशल एडुकेटर्स की सपोर्ट आप लें, तब जाके सक्सेसफुल होगी चीजें, अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट.
1: तो क्या ऐसे बच्चों को कुछ मनोवैज्ञानिक ट्रीटमेंट की भी जरूरत होती है? क्योंकि एक सामान्य स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं और सारे बच्चे, उसको तो पता है कि वो सुनने में असमर्थ है, हियरिंग एड लगा रहा है तो उसको पता है, बोलने में असमर्थ है, तो वो जो हीन भावना के शिकार होते हैं, तो उसमें किस तरह से मनोवैज्ञानिक ट्रीटमेंट होता है या नहीं होता है?
0: इट ऑल डिपेंड्स ऑन चाइल्ड टू चाइल्ड एंड फैमिली टू फैमिली. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन हूँ और मेरी फैमिली ऐसी है जो बहुत पॉजिटिव है, ओके, एंड उनका माइंडसेट ऐसा है कि इट्स ओके, मतलब कि ठीक है, और उनका काफ़ी रीइन्फोर्समेंट हो रहे हैं, उन बच्चों को ज़्यादा इश्यूज़ और कंसर्न्स नहीं आते हैं. पर जहाँ पे पेरेंट्स ने खुद ने एक्सेप्ट नहीं किया है कि मेरे बच्चे को ये कंसर्न है, एंड पेरेंट और बच्चे के बीच का जो संबंध है वो सही नहीं है, तो बच्चों को कंसर्न्स आएंगे ही आएंगे. इट कैन बी उनको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो कि मेरे से कोई बात नहीं कर रहा है, मेरे से कोई क्यों नहीं बात कर रहा है, मुझे लोग अलग तरीके से क्यों ट्रीट कर रहे हैं, तो दैट कॉम्प्लेक्सिटी विल कम. पर ये तो हमारे साथ भी होता है कि समझो अगर हम कोई ग्रुप में गए और हमें लगा कि हाँ मुझे ये इंग्लिश भाषा बात करने नहीं आती और सबके सब इंग्लिश में बात करते हैं, तो वो तो हमको भी लगता है, ये एक स्वाभाविक चीज है. तो ये कंसर्न्स जहाँ पे एक्सेप्टेंस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, वहां मैंने ये कंसर्न्स बहुत ज्यादा देखे हैं. एक दूसरा जो बहुत ज्यादा देखा है मैंने, वो है कि क्या होता है कि पहले समझो बच्चा स्पेशल स्कूल में गया या थेरेपी सेंटर में गया, वहाँ पे पेरेंट्स को लगा और टीचर्स को लगा कि हाँ बाबा मेरा बच्चा अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, वो सब कुछ अच्छे से कर रहा है, उसको स्पेशल स्कूल सेटअप में जहाँ पे सब स्पेशल बच्चे हैं, स्पेशल टीचर हैं, एंड उसको वहाँ से पिक करके उन्होंने प्लेस कर दिया एक रेगुलर स्कूल में. अब वो रेगुलर स्कूल में बाकी सब एक सामान्य बच्चे, एक जनरल टीचर, उन्होंने कभी ऐसा बच्चा देखा नहीं, उसके पढ़ाने का तरीका जिस तरीके से वो दिखता है, दिखता तो बिल्कुल सेम है, ओके, बट वो हियरिंग एड है और मोस्टली कभी वो इशारे करता है, तो वो थोड़ा अलग हो जाता है.

0: तो वहां पे अगर वो कोप अप नहीं करता है ओके, बाकी वो इन्वायरमेंट और सराउंडिंग से, देन देयर कैन बी अ साइकोलॉजिकल कंसर्न्स ऑल्सो. फिर क्या होता है, वहां से हम वापस उसको स्पेशल स्कूल में लेकर आते हैं, रिवर्स इंटीग्रेशन करते हैं. इस प्रोसेस में द चाइल्ड फेसेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम. थर्ड, अगर उसकी लैंग्वेज उतनी डेवलप नहीं है, चाहे वो मौखिक भाषा हो या सांकेतिक भाषा हो, अगर उसकी लैंग्वेज डेवलप नहीं है एंड द चाइल्ड इज नॉट एबल टू कम्युनिकेट, ओके, अगर मेरा कम्युनिकेशन अफेक्टेड है, तो यस आई माइट हैव साइकोलॉजिकल कंसर्न्स ऑल्सो.
1: बिल्कुल.
0: सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि कौन सा सिनेरियो है, कौन सा सिचुएशन है, दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. एंड समटाइम्स आई फील कि जो बिहेवियर्स हैं ना हम सबके, वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. फॉर सिंपल एग्जाम्पल, अगर बच्चा स्कूल जाता है तो उसके सिक्योरिटी गार्ड उसको कैसे डील करते हैं, आया जो है आया किस तरीके से उसको डील करती है, और ये सब छोटे बच्चों में बहुत, बिकॉज दे आर मोर ऑफ विजुअल लर्नर्स. ओके, आपका फेशियल एक्सप्रेशन ऐसा होगा कि यू नो यू आर नॉट एक्सेप्टिंग इट, बट आप मुंह से तो बोल रहे हैं हेलो गुड मॉर्निंग, बट फेशियल एक्सप्रेशन इज नॉट गोइंग विथ योर स्पीच. ओके, तो वो भी कहीं ना कहीं उसको फील होता है. तो बिहेवियर्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, बिकॉज जो हियरिंग इम्पेयर होते हैं वो मोस्टली विजुअल लर्नर्स होते हैं, दे आर मोर ऑफ विजुअल्स. ओके, तो आपका बर्ताव, आपका एटीट्यूड, आपका बॉडी लैंग्वेज, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. यहाँ कहीं ना कहीं कमतरता हुई तो दैट मीन्स दैट विल अफेक्ट द चाइल्ड.
1: बिल्कुल सही बात है. इन बच्चों की ऐसी कौन सी प्रमुख शैक्षणिक आवश्यकताएं हैं जिन्हें हर माता पिता और शिक्षक को समझना चाहिए, ये बताइए हमारे श्रोताओं को.
0: ओके, अभी जैसे मैंने कहा चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट या वो बच्चे जिनको हियरिंग लॉसेस हैं, वो दो ग्रुप में होते हैं बेसिकली. एक ग्रुप जो हियरिंग एड या कॉकलियर इम्प्लांट यूज़ करता है एंड उसका वर्बल कम्युनिकेशन डेवलप होता है, हम मोस्टली उनके इसमें मौखिक भाषा किस तरीके से विकास हो उसके ऊपर हम स्टेप्स लेते हैं. दूसरा ग्रुप है जहाँ पे हम साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, इशारों की भाषा बोलते हैं या विजुअल स्पेशल मैनुअल कम्युनिकेशन हम जिसको बोलते हैं, ये एक ग्रुप होता है. ठीक है, अब इन दोनों ग्रुप में बेसिक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट या जो ज़रूरत है या लर्निंग नीड्स हैं बेसिकली कम्युनिकेशन और लैंग्वेज की ज़रूरत है. ठीक है, अब नॉर्मली लोगों को क्या लगता है कि आपने हियरिंग एड लगा दिया तो मेरा बच्चा बात करेगा, या कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी कर दी तो मेरा बच्चा बात करेगा, पर इसमें और चश्मे के बीच में बहुत फ़र्क है. मुझे अगर दिखाई नहीं देता है और मैं ऑप्थेल के पास जाती हूँ, ऑप्थेल मुझे चश्मा देगा और मुझे तुरंत दिखाई देगा और वो आपका तभी का तभी टेस्टिंग करते हैं. ठीक है, जिन बच्चों को सुनाई नहीं देता है ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो अलग अलग श्रवण यंत्र ट्राई करते हैं, फिर वो गेन देखते हैं और उसके बाद आपको एक हियरिंग एड दिया जाएगा. हियरिंग एड लगाने के बाद तुरंत बच्चा बात नहीं करता है, उसके बहुत सारे थेरेपी सेशंस होते हैं, श्रवण प्रशिक्षण के बहुत सारे थेरेपी के सेशंस होते हैं, उसको सिखाया जाता है कि ये आवाज़ कौन सी है, इस आवाज़ का मतलब क्या है, आवाज़ आ कहाँ से रही है. तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, ओके, एंड अ टीडियस प्रोसेस जहाँ पे बहुत ज़्यादा सिंसियरिटी से आपको काम करना होता है. तो ये एक लर्निंग नीड है जहाँ पे अगर लगता है कि हाँ बच्चे ने श्रवण यंत्र पहना है तो उसका ऑडिटरी ट्रेनिंग या श्रवण प्रशिक्षण आपको लगातार करना होगा. हियरिंग एड आपको लगातार पहनना होगा एंड चाहे वो कॉकलियर इम्प्लांट हो या हियरिंग एड हो, आपको कंटिन्यूसली पहनना बहुत ज़रूरी है. दूसरी चीज़ है, आप जिस वातावरण में हैं वो भाषिक वातावरण होना चाहिए. जितना ज़्यादा आप लैंग्वेज इनपुट दोगे उतना ज़्यादा आप लैंग्वेज आउटपुट होगा. जितना लैंग्वेज इनपुट नहीं है उतना आउटपुट इज़ अफेक्टेड. सोशल इंटरेक्शंस बहुत ज़्यादा कराएं ताकि बच्चे को भी लगे कि हाँ मैं इस समाज का एक हिस्सा हूँ एंड मुझे हर जगह एक्सेप्टेंस होनी चाहिए एंड प्लस एक सोशल आइडेंटिटी भी डेवलप होती है. मैं जितना ज़्यादा समाज में इन्वॉल्व होंगी मेरी उतनी अच्छी आइडेंटिटी भी बनेगी. नीड्स है बेसिकली एक चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट की. अपार्ट फ्रॉम दिस, अब देखिए जब हम भाषा की बात करते हैं तो अगर मैं सिंपल एग्जाम्पल दूँ मैथमेटिक्स का, अगर मैं लिखूंगी 26 प्लस 24 कितना होता है इन अ डिजिटल फॉर्मेट, वो बच्चा कर पाएगा. ओके, पर अगर यही चीज मैं भाषिक रूपांतर में दूं मैथमेटिकल सम्स, वो डिफिकल्ट हो जाएगा. बिकॉज अब जिस तरीके से मैं बात कर रही हूँ और जब मैं वो लिखती हूँ भाषा, ओके, टिपिकल मैथमेटिकल कंसेप्ट में जो भाषा का इस्तेमाल होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बच्चे को भाषा सीखने में. नेक्स्ट, व्हाट आई फील इज, हम कभी भी जो भी कंटेंट सिखाते हैं या चाहे वो टीचर्स हो या चाहे वो पेरेंट्स हो, जो भी हम कंटेंट सिखाते हैं उस कंटेंट के अंदर जितने भी कंसेप्ट होते हैं, ओके, वो जितने भी संकल्पनाएं हैं, वो संकल्पना संदर्भ के

0: अकॉर्डिंगली सीखना बहुत ज़रूरी है. अब एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक शब्द बोलूँ खोलना, ओके, ये शब्द है अगर खोलना, तो हम तो कितनी चारी अलग अलग चीज़ें खोलते हैं. ओके, क्लास में आप जाते हो और बोलते हो कि आप बुक्स खोलो, तो यू अंडरस्टैंड कि बुक मुझे खोलना है. ओके, बुक इस तरीके से खुलती है. ओके, अगर मैं कहूँ कि मुझे डोर खोलना है, तो दैट क्रिया इज़ डिफरेंट. ओके, दैट प्रोसेस इज डिफरेंट. तो वन वर्ड बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट. तो हेंस द कंसेप्चुअल क्लैरिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अगर संकल्पना में अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं अफेक्टेड होती है, तो इसके लिए बच्चों को आगे एकेडमिक अंडरस्टैंडिंग में भी प्रॉब्लम्स होती है. नहीं तो फिर बच्चे फिर रट्टा मार के वो वैसे आंसर लिखते हैं. कि बहुत बार आप देखोगे कि बच्चे क्या करते हैं, जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका वो कीवर्ड देखते हैं और उसके हिसाब से आंसर लिखते हैं, क्योंकि उनमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी ही नहीं होती है. और बहुत बार रट्टा मारना करते हैं तो रट्टा मारा हुआ चीज़ लिखते हैं, पर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है. तो अंडरस्टैंडिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अंडरस्टैंडिंग हुई तो बहुत सारी एकेडमिक डिफिकल्टीज तो चली ही जाएंगे. प्लस आई एम अ टीचर, तो मैं लिटरेसी डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ. कि जितना ज्यादा आप रीडिंग राइटिंग कराओगे, उतना ज्यादा अच्छा प्रोग्रेस होगा.
1: अभ्यास
0: तो
1: होगा.
0: हाँ, जितना ज्यादा रीडिंग हो, फॉर एग्जाम्पल 6 महीने का अगर बच्चा है, आप बोलोगे क्या मैं कराऊँ रीडिंग और राइटिंग एंड क्या ही कराऊँ, बट आप बुक खोल सकते हैं उसके सामने और बुक खोल के पढ़ सकते हैं. तो वो जो विजुअल थिंग्स है, ओके, दैट गोज इन हिज हेड. ओके, बच्चा देख रहा है, उसका रिसेप्टिव लैंग्वेज इज ऑल्सो डेवलपिंग. आप पेज टर्न कर रहे हैं तो ही ऑल्सो अंडरस्टैंड्स कि हाँ, जब हम रीड करते हैं तो मुझे पेज टर्न करना है. जब मैं रीड करता हूँ तो मैं ऊपर से लेके नीचे तक जाता हूँ, ना कि नीचे से लेके ऊपर तक. तो ये जो स्मॉल स्मॉल थिंग्स है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. सो दिस ऑल थिंग कंपाइल्स इन द लर्निंग नीड्स ऑफ द चाइल्ड.
1: जी, तो ऐसे बच्चे जो सीख रहे हैं इस तरह, जिनमें श्रवण बाधित जो बच्चे हैं, तो इनकी समझदारी में भी कुछ फर्क होता है सामान्य बच्चों के तुलना में, कि नॉर्मल, क्योंकि जो सामान्य बच्चे हैं बहुत कुछ सुन रहे हैं, देख रहे हैं आंखों से, और बहुत ऐसी जगहों पर ले जा रहे हैं. अमूमन होता होगा, पेरेंट्स अवॉइड करते होंगे कि यहाँ नहीं ले जाना है, यहाँ ले जाना है. तो उनकी जो समझ, थिंकिंग प्रोसेस है, क्या बराबर होती है या कम होती है?
0: See, आपका जब कॉग्निशन की बात करते हो तो कॉग्निशन बहुत हायर लेवल थिंकिंग है, राइट? एंड उसके अंदर एक और चीज आती है जिसको हम मेटा कॉग्निशन बोलते हैं. तो उसमें बहुत सारे प्रोसेसेस आते हैं. प्रोसेसेस को समझने के लिए आपको एक यंत्र चाहिए, आपको एक टूल चाहिए, जो है भाषा. ओके, कोई भी चीज़ को समझने के लिए, जैसे आई नो कि जो मैं बात कर रही हूँ ये माइक के माध्यम से, इट इज़ गोइंग टू मैम, मैम उनको चेंज वेंज करके, एंड देन इट इज़ लाइव ब्रॉडकास्टिंग. एवरीथिंग आई एम अंडरस्टैंडिंग थ्रू लैंग्वेज. ओके, पर अगर मेरे पास लैंग्वेज ही नहीं है, हाउ विल माई अदर प्रोसेसेस विल टेक प्लेस? सो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए लैंग्वेज भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बट मैं ये नहीं कह सकती कि जो हियरिंग इम्पेयरमेंट होते हैं उनको कुछ कॉग्निटिव इशूज़ होते हैं. नहीं, देर आर नो कॉग्निटिव इशूज़, नो अंडरलाइंग इशूज़ एज सच. बट येस, लैंग्वेज कॉग्निशन से जुड़ा हुआ है, एंड इट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑल्सो. तो वो काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस करते हैं. बट अगेन, सेम थिंग बॉयज डाउन टू लैंग्वेज और कम्युनिकेशन डेवलपमेंट. मेरे पास अगर भाषा ही नहीं है, तो मैं आगे किस तरीके से वो प्रोसेस को समझूं, या किस तरीके से रिस्पॉन्ड करूं, या क्या कैसे करूंगी, वो मुझे कैसे पता? जब तक मुझे वो रियल लाइफ सिचुएशंस नहीं पता होंगे, या मुझे उस चीज़ का संदर्भ भी नहीं पता है कि मैं किस तरीके से करूं. वैसे
1: बिल्कुल. यहाँ हम एक गाना सुनते हैं, कौन सा गाना सुनवाएं?
0: ये मुंबई है मेरी जान, ए दिल है मुश्किल.
1: ए दिल है मुश्किल जी ना, यहाँ ये जी सुनते हैं ये गाना. ए दिल

0: मेरी जान।
1: डॉक्टर गायत्री, हमें बताइए कि श्रवण बाधित बच्चे की सीखने की पूरी प्रक्रिया को किस तरह से प्रभावित करती है, जो सीखने की मतलब लर्निंग प्रोसेस होती है। अभी गाने से पहले भी इस बारे में हम बात कर रहे थे।
2: हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात करते हैं या लर्निंग की बात करते हैं, एक सिंपल चीज़ को अगर हम ध्यान में रखें कि हर चीज़ मुझे एक्सेसिबल होना चाहिए। अगर सारी चीज़ें आपके पास एक्सेसिबल हैं तो आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी आसान से हो सकता है। नाउ जब मैं एक्सेसिबिलिटी ये शब्द बोलती हूँ तो इसका अर्थ क्या है? एक्सेसिबिलिटी बेसिकली मींस कि मैं कोई भी चीज़ को पार्टिसिपेट करूँ तो उसमें कोई भी बैरियर नहीं होना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, समझो व्हील चेयर का इस्तेमाल करती हूँ और आपके बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है, सो मैं थर्ड फ्लोर तक कैसे जाऊँ? ठीक है, आई हैव टू टेक हेल्प ऑफ समबडी एल्स। ओके, मैं इंडिपेंडेंटली नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, तो एक्सेसिबल होना हर चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। समझो हम ये रेडियो शो कर रहे होते और आप फ्रेंच में बात कर रहे होते, तो मुझे तो फ्रेंच आती नहीं है, तो इट वुड हैव बीन वन वे कम्युनिकेशन, क्योंकि मैं कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करती। तो लर्निंग सक्सेसफुल करने के लिए आप जो भी चीज़ें, जो भी मटेरियल आप बच्चों को देते हो या जो भी चीज़ों का इस्तेमाल करते हो, बच्चे के लेवल के अनुसार होना चाहिए और उसको उस तक वो पहुंच सके, इसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दैट इज़ एक्सेसिबल होना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो हमारे बच्चे होते हैं वो मोर ऑफ विजुअल लर्नर्स होते हैं। ओके, सो आप कोई भी क्लासरूम देखोगे, अगर स्पेशल क्लासरूम देखोगे या अगर आप हमारे CDIC में आओगे, दैट इज़ क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, उधर भी आप देखोगे बहुत ज़्यादा विजुअल चार्ट्स होंगे, विजुअल थिंग्स होंगे, बिकॉज द चाइल्ड इज़ मोर ऑफ विजुअल। ओके, सो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स आपको अलग अलग लेने होंगे एंड अगेन आई रिपीट, एक्सेसिबल होना बहुत ज़रूरी है। जो भी आप कंसेप्ट कंटेंट दे रहे हैं, क्या वो साइन लैंग्वेज में उपलब्ध है कि नहीं है? ओके, और अगर साइन लैंग्वेज में उपलब्ध नहीं है, जो आप भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो भाषा मेरे बच्चे को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो बहुत बार जो होता है वो टेक्स्ट जो होता है, स्कूल के जो टेक्स्ट होते हैं, उसको हम अडेप्ट करते हैं। अडेप्ट बेसिकली मीन्स व्हाट? हम उसको चेंजेस करते हैं, चेंजेस बच्चे के लेवल के अनुसार चेंजेस करते हैं और बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स के माध्यम से सिखाते हैं। अगेन कमिंग टू बेसिक, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, कंसेप्ट्स क्लियर है तो बच्चे का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी आसान तरीके से होता है। हमारे बच्चों के लिए आप जब असेसमेंट भी करते हो, जो मूल्यांकन करते हो, तो आप समझो आप जब पढ़ा रहे हो तो पढ़ाते समय भी आप मूल्यांकन करते रहते हो। पढ़ाने के पहले भी करते हैं, पढ़ाने के बाद भी करते हैं और पढ़ाते समय बहुत बार हम मूल्यांकन करते हैं। एंड इट प्रोसेस शुड बी बेसिकली दोनों तरफ से इंटरैक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टीचर क्लास में गई और खुद ही खुद बात किए जा रही है। और बहुत बार तो हमने ये देखा है कि जब हम पेरेंट्स को बोलते हैं कि लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट होना चाहिए, भाषिक वातावरण होना चाहिए, तो माँ ही बोले जा रही है। नहीं, बच्चे को

0: मौका दो कि बच्चा भी बात करे, बच्चा भी वो प्रोसेस में इन्वॉल्व हो। तो जितना ज़्यादा आप इन्वॉल्व करोगे बच्चे को हर प्रोसेस में, उतना ज़्यादा बच्चा प्रोग्रेस कर सकता है।
1: बिल्कुल। डॉक्टर गायत्री, हमारे श्रोताओं को बताइए कि सरकार की कौन सी नीतियाँ हैं, कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण नीतियाँ हैं इन बच्चों को जो शिक्षा में समर्थन देती हैं और बढ़ावा देती हैं।
0: गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऐसे बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारे स्कीम्स हैं जहाँ पे वो बच्चों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं या इंडिविजुअल्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। हमारे पास अलग अलग एक्ट्स हैं, चाहे वो RPWD एक्ट हो या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो 2020 की, या सिप्टा स्कीम हो। स्किल डेवलपमेंट के लिए वी हैव PM दक्ष स्कीम ऑल्सो। हमारे पास अलग अलग स्कॉलरशिप के स्कीम्स हैं ताकि बच्चे को ऐसा नहीं लगे कि एजुकेशन काफ़ी डिफ़िकल्ट है, मैं एजुकेशन कहाँ से लूँ और कैसे लूँ।
1: जी
0: एक सिंपल एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि आप अगर हमारे यहाँ पे अगर कोई दिव्यांग है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है, और उसको तो BEd का कोर्स करना है, MEd का कोर्स करना है, या डिसलिटी TESOL का कोर्स करना है, तो उसके लिए फ्री है एजुकेशन। ओके, दैट इज़ एज पर द स्कीम, बच्चे के
1: जी
0: लिए फ्री है। अगर उसको कोई स्किल डेवलपमेंट का कोर्स करना है या फ्री कोचिंग करना है, तो इट इज़ टोटली फ्री। तो ऐसे बहुत सारे स्कीम्स हैं जहाँ पे उनको हियरिंग एड भी मिलता है कंसेशनल रेट पे। तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पे लॉज आर इन प्लेस, स्कीम्स आर इन प्लेस, जहाँ पे हम एजुकेशन भी देते हैं बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट में। सो ये सारी चीज़ें तो है इन प्लेस। पर जब हम गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस या लॉज एंड पॉलिसीज की बात करते हैं, वी स्टिल हैव टू डेवलप अवेयरनेस, और अवेयरनेस की आवश्यकता है अभी तक हमारे देश में कि अगर ये इशू है, अगर ये कंसर्न है, तो मुझे कहाँ जाना है। ये कहाँ जाना है, ये अभी तक एक कंसर्न है। अभी भी हमको अवेयरनेस में बहुत ज़्यादा काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ आई कैन कोट अ थिंग इज़ कोविड के टाइम पे, दे आर गोइंग टू हॉस्पिटल्स एंड दे वर हैविंग देयर ट्रीटमेंट ऑल्सो। सो यू थिंक ऑफ अ पर्सन जिसको कोविड अफेक्टेड है एंड वो हॉस्पिटल गया है एंड ही इज़ नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद द डॉक्टर बिकॉज देर इज़ नो इंटरप्रेटर। ओके, तो हमारे देश में अभी भी इंटरप्रेटर्स की संख्या बहुत कम है, उसमें और ज़्यादा इनरोल होना ज़रूरी है। थर्ड इज़ दी एक्सेसिबिलिटी। इस एक्सेसिबिलिटी को भी हमें इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम इन सब अवेयरनेस, एक्सेसिबिलिटी, इंटरप्रेटर सर्विसेज एंड सपोर्ट सिस्टम अगर हम और बढ़ा दें, तो यस, तो गवर्नमेंट लॉज पॉलिसीज़ जो हैं, इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी अच्छे से होगा। हम डॉक्यूमेंट्स में बहुत अच्छे हैं, इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत कर रहे हैं, बट फिर भी अगर ये दो तीन चीज़ पे और लाइनअप हम करें, तो यस, द चाइल्ड कैन गो मच मच हायर लेवल पे।
1: जी, आप खुद इस संस्था में पढ़ाती हैं बच्चों को और आपके पास देश भर के बहुत सारे बच्चे आते होंगे। कोई ऐसा निजी यादगार कोई घटना है आपके पास जो शेयर करना चाहती हैं
0: मैं इस
1: कि
0: क्षेत्र में आई क्योंकि ऑन माय
1: आप तो
0: पर्सनल
1: हेड
0: नोट
1: हैं, डिपार्टमेंट की हेड हैं, तो बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रही
0: नहीं,
1: हैं।
0: उसके पहले तो फैकल्टी थी एंड उसके पहले बहुत साल तक NGO सेटअप में भी काम करती थी मैं। एंड आई इंटर्ड इन दिस फील्ड बिकॉज मेरी बुआ की डॉटर इज़ हियरिंग इम्पेयर्ड। ओके, सो जब भी मैं बुआ के घर जाती थी तो मुझे ऐसे लगता था कि ये इशारों से बात कर रही है और मेरे पापा आराम से कम्युनिकेट कर सकते थे। एंड आई यूज़ टू फील ये ऐसे, ये कुछ अलग है, ये क्या है। ओके, सो व्हेन आई कंप्लीटेड माई मास्टर्स आई थॉट कि लेट मी गेट इन टू दिस फील्ड बिकॉज दिस फील्ड आई फेल्ट इज़ वेरी सैटिस्फैक्ट्री, वेरी क्रिएटिव एंड बहुत कुछ चेंज हम कर सकते हैं। एंड अगर हम सब इकट्ठा होके एज अ टीम काम करें, तो आई फील यू कैन मेक वंडर्स। कमिंग टू द पर्सनल नोट, जिस संस्था में मैं काम कर रही हूँ, पहले मैं वहाँ पे फैकल्टी थी एंड उसके बाद मैं अभी 2024 में आई बिकेम द हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट। सो बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, लाइक मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो खुद डेफ हैं, ने कहा कि जो बैचलर्स करते हैं, मास्टर्स करते हैं और PhD करते हैं, और बहुत सारे सो कॉल्ड टिपिकली डेवलप्ड स्टूडेंट्स भी हैं। दोनों काफ़ी अलग हैं एंड दोनों का सीखने का तरीका काफ़ी अलग है, बट दीज आर ऑल लेसन्स, यू अंडरस्टैंड सो मेनी थिंग्स। और अगर मैं कहूँ कि मैंने इनसे क्या सीखा है, पेशेंस सीखा है काफ़ी ज़्यादा, मेरे में पेशेंस लेवल काफ़ी अच्छा हो गया है। एंड यू अंडरस्टैंड कि एक ही पहलू को हम कितने अलग तरीके से देख सकते हैं। जैसे हम रिसर्च में कहते हैं थर्ड व्यू। ओके, थर्ड व्यू बेसिकली मीन्स फ्रॉम रिसर्च एंगल, डिफरेंट तरीके से वही चीज़ को देखना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है. तो दिस इज़ द थिंग व्हाट आई हैव अंडरगॉन एज अ रीडर.
1: बिल्कुल. भारत में श्रवण बाधित बच्चों को जो शिक्षा दी जा रही है, तो इसे मजबूत करने के लिए और क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं भारत सरकार की ओर से?
0: कैपेसिटी बिल्डिंग की जब मैं बात करती हूँ, तो अगर मैं जनरल स्कूल्स की बात करूँ तो जनरल स्कूल्स में जो टीचिंग स्टाफ है एंड नॉन टीचिंग स्टाफ है, उनका कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है. उनको समझना, उनका एक्सेप्टेंस करना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ, जैसे मैं आई थिंक स्टार्ट से कह रही हूँ, वी नीड मोर डेवलपमेंट ऑन एक्सेसिबिलिटी. अगर हर चीज़ उनके पहुँच तक हो तो यस, द थिंग्स आर पॉजिटिव. एट द एंड ऑफ द डे माइंड सेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. पॉजिटिव माइंड सेट होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है.
1: जी, संक्षेप में बताइए चलते चलते कि आपकी संस्था किस तरह से मदद करती है इन बच्चों को, क्योंकि देश भर से बच्चे आते हैं, तो क्या क्या, किस तरह की थेरेपी दी जाती है और क्या क्या जांच की जाती है, फिर उनकी मदद कैसे करती है आपकी संस्था?
0: हमारी संस्था में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जो अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल, जिनको सुनने में तकलीफ होती है, तो वी हैव एन ऑडियोलॉजी डिपार्टमेंट जहाँ पे उनकी जांच की जाती है कि बच्चे को कितना सुनाई देता है, कितना सुनाई नहीं देता है, उसको कौन सी हियरिंग एड से फ़ायदा होगा, अगर कॉकलियर इम्प्लांट करना है तो कितने हद तक. हमने रिसेंटली वर्टिको थिंग भी बनाया है. वर्टिको एक क्लिनिक थेरेपी सेंटर बनाया है कि जिन बच्चों को, अगर सिंपल तरीके से बोलूं कि बहुत बार लोगों को चक्कर आते हैं, राइट, सम पीपल सी ना हैव अ वर्टिगो इश्यूज एंड ऑल, ओके, सो दिस इज अ न्यू थिंग व्हिच इज बीइंग डेवलप्ड इन द डिपार्टमेंट. फिर हमारे पास एक डिपार्टमेंट है जिसको हम बोलते हैं स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी डिपार्टमेंट. जिन बच्चों को बात करने में, वाचा में प्रॉब्लम आती है, स्टटर करते हैं, स्टैमर करते हैं, कभी कभी सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी कुछ शब्द नहीं बोलते हैं, तो उनकी पूरी थेरेपी वहाँ पे चलती है. फुल स्पीच थेरेपी लैब है, आइडेंटिफिकेशन से लेके इंटरवेंशन तक. ओके, देन वी हैव साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट जहाँ पे पूरा का पूरा साइकोलॉजिकल डायग्नोसिस होता है, बिहेवियरल मैनेजमेंट करते हैं, बिहेवियरल टेक्निक्स करवाते हैं ताकि उसका भी निवारण हो सके. और जिस डिपार्टमेंट से मैं आती हूँ, हम पूरा एडुकेशन देखते हैं उन बच्चों का, कि समझो अगर बच्चा कोई रेगुलर स्कूल में भी जाता है और उसको वहाँ पे भी तकलीफ होती है, तो वी गिव देम रेमेडियल टीचिंग एज वेल. सो एडुकेशन डिपार्टमेंट में अगेन अलग अलग कोर्सेज चलते हैं, डिप्लोमा से के PhD तक. एंड हम साइन लैंग्वेज के भी कोर्सेज चलाते हैं, कभी ऑफलाइन कभी ऑनलाइन. तो अगर किसी को लगे कि मुझे सांकेतिक भाषा सीखनी है तो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. एंड काफ़ी सारी कोर्सेज चलते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में. हम कैंप्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी करते हैं, ताकि जो हमारे तक नहीं आ सके तो हम वहाँ तक पहुँच सके, रीच दी अनरीच. तो हम वहाँ जाके कैंप्स और अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं और उनको हियरिंग एड्स या उनको जो ज़रूरत हो, ओके, वो हम देते हैं.
1: जी, तो आपके संस्था से कोई संपर्क करना चाहे तो क्या कुछ कर सकता है, मेल के जरिए? और
0: वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, AYJNISHT NIC वेबसाइट है. आप वहाँ जाके आपको हर डिपार्टमेंटल हेड्स के फ़ोन नंबर्स और ईमेल आईडीज मिलेंगे. यू विल गेट ऑलमोस्ट ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन द वेबसाइट इटसेल्फ.
1: बहुत बढ़िया जानकारी आपने दी है डॉक्टर गायत्री, और मुझे लगता है देश भर के हमारे श्रोता जो सुन रहे होंगे, जिन्हें भी, जिनके घर में, जिन बच्चों को, जिन बड़ों को हियरिंग लॉस है या बोलने में दिक्कत है, तो बहुत अपने तई जहां इलाज संभव करें, नहीं तो आपकी संस्था से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं.
0: sure.
1: और चलते चलते कोई गाना सुनवाना चाहेंगे?
0: जगजीत सिंह का कोई भी गाना, आई जस्ट लाइक हिम और लाइक हिज वॉइस अ लॉट, तो एनी सॉन्ग ऑफ जगजीत सिंह इज ओके विद मी.
1: तुमको देखा तो ये ख्याल है,
0: ऑल गुड.
1: तो सुनते हैं ये.
0: ठीक है.

0: और डॉक्टर गायत्री विविध भारती के स्टूडियो में आप आई और इतनी सारी जानकारी दी। और ये एक ऐसा विषय है जो जिस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता है, जो लोग इससे पीड़ित होते हैं वही लोग परेशान होते हैं। तो हमारा भी श्रोताओं से बस यही कहना है कि जहाँ कहीं ऐसे बच्चे हैं उनको सपोर्ट करें, मानसिक रूप से सहयोग दें। आपका तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत।
1: Thank you to you, Mamta Ma'am, and thanks to Vivid Bharti, the whole team. They are very cooperative and the way they are dealing with everything. So thanks to them. Thanks to all the listeners ki आप सुने और कहीं पे किसी को भी आवश्यकता हो तो प्लीज संपर्क करें अलिया वर्जन संस्था को। थैंक यू सो मच।
2: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर गायत्री आहूजा से रेडियो सखी ममता सिंह की ये बातचीत। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग काजल भदरगे का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
3: आज के

0: हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। विविध भारती पर हमारा अगला कार्यक्रम रंग तरंग। विविध भारती
1: रंग तरंग।
0: श्रोताओ नमस्कार, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के कार्यक्रम रंग तरंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत।

रंग तरंग कार्यक्रम का आगाज हमने किया हरिओम शरण की इस गाई हुई इस भक्ति रचना के साथ, प्रेमांजलि एल्बम से, जिसे हसरत जयपुरी ने लिखा था। अब बढ़ते हैं छाया गांगुली की गाई मीराबाई की इस पारंपरिक रचना की ओर।

रंग तरंग कार्यक्रम में अभी आपने भक्ति सुधा एल्बम से छाया गांगुली के स्वर में मीराबाई की ये पारंपरिक रचना सुनी, जिसे संगीत से संवारा था संगीतकार जयदेव ने। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: हकीकत है।
1: तुम न मानो मगर हकीकत है, इश्क इंसान की जरूरत है। काबिल अजमेरी का ये कलाम आप सुन रहे थे पंकज उधास की आवाज़ में अ गिफ्ट ऑफ सॉन्ग एल गज़ल एल्बम से। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर रंग तरंग कार्यक्रम में अब बढ़ते हैं देव कोहली के रचना और आनंद राज आनंद के संगीत की ओर।

0: थे ये मोहब्बत है एल्बम का ये गाना। आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

रोशन के संगीत से सजी ये कव्वाली आप सुन रहे थे आशा भोसले और साथियों के स्वरों में। दिल ही तो है फिल्म का नाम था और साहिर लुधियानवी का कलाम। चलिए अब एक नाजुक से गीत की ओर बढ़ते हैं।

ये है प्रेम एल्बम से, ये बड़ा ही नाजुक सा सॉफ्ट सा गाना आपने सुना। श्याम अनुरागी ने इसे लिखा था, आवाज़ और संगीत का जादू मिलिंद इंगले का था। चलिए अब अगले एल्बम में आवाज़ का जादू है मोहित चौहान और कायम त्रिवेदी के साथ अतुल मित्तल का।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार

दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

बज़्म ख़याल एल्बम से दिलराज कौर की आवाज़ में आपने अहमद वसी का ये कलाम सुना और यही थी आज के रंग तरंग कार्यक्रम की आखिरी पेशकश।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती कार्यक्रम। ये आकाशवाणी के हाफलोंग केंद्र है। आइए थोड़ी देर में सुनते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच नई दिल्ली में वार्ता हो रही है। बातचीत में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार तथा निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की नई संभावनाएं तलाशी जाएंगी। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इससे पहले राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़े कई स्थलों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत के तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं का जायजा लेना और सहयोग के अवसरों का पता लगाना है। भारत ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों में वेनेजुएला का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। ब्रिटेन के विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यविट कूपर भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। वे 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उनकी यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिश्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन का दौरा करेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत और अमेरिका लंबे समय से प्रस्तावित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के बेहद करीब हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ये समझौता अगले कुछ सप्ताह में पूरा हो सकता है। अमरीकी संसद की विदेश मामलों की समिति के समक्ष सुनवाई के दौरान श्री रूबियो ने भारत को हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमरीका का महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बताया। उन्होंने कहा कि हाल ही में भारत यात्रा के दौरान क्वाड देशों के प्रतिनिधियों के बीच चर्चा हुई। श्री रूबियो ने कहा कि क्वाड देश केवल बातचीत तक सीमित नहीं है बल्कि समुद्री सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर मिलकर काम कर रहे हैं।
1: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और लाओस के बीच गहरे सभ्यतागत संबंध हैं और ये बौद्ध धर्म तथा रामायण की साझा विरासत में दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं जो द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ आगे की सैन्य कार्रवाई से रोकने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। ये चौथी बार है जब प्रतिनिधि सभा ने ट्रंप की युद्ध संबंधी शक्तियों को सीमित करने की कोशिश की है। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: श्रोताओं, अभी आप हिंदी में समाचार सुन रहे थे। ये आकाशवाणी की हाफलोंग केंद्र है। आइए पुनः ले चलते हैं आकाशवाणी का मुंबई केंद्र और सुनते हैं पीत भारती के कार्यक्रम।
3: आपको करना है थोड़ा सा इंतजार, हम अभी हाजिर होते हैं लेकर यादों

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर हम हाजिर हैं लेकर कार्यक्रम यादों की महफिल, और इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं।

यादों की महफिल कार्यक्रम में हमने आज सबसे पहला जो गाना शामिल किया वो 100 डेज फिल्म से था। एसपी बालासुब्रमण्यम के साथ लता मंगेशकर की आवाज़, दिलीप ताहिर ने इसे लिखा था, राम लक्ष्मण का मचलता संगीत। और मेरे ख्याल से आपने ये गाना सुना और आप जान ही गए होंगे कि आज यादों की महफिल में वो गाने शामिल हो रहे हैं जिनमें गायक आवाज़ है एसपी बालासुब्रमण्यम की। जी हाँ, आज उनका जन्मदिन है तो हम उनको उनके गीतों के ज़रिए याद करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले गाने की ओर।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

सागर फिल्म का ये गाना आपने सुना। साथियों, एसपी बालासुब्रमण्यम की गायकी का एक अलग ही अंदाज रहा है। हर भाव के गीतों को कितनी सहजता से समेट लेते थे। अब ये गीत ही सुनिए ना। गीत संगीत बोल आवाज सब कुछ कमाल।

दिल को छू लेने वाले सच्चे बोल, जावेद अख्तर के सुरीला संगीत, राहुल देव बर्मन का गर्दिश फिल्म में इस गाने में आवाज़ एसपी बालसुब्रमण्यम की। चलिए यादों की महफिल कार्यक्रम के अगले गाने की ओर बढ़ते हैं।

एसपी बाला सुब्रमण्यम के साथ अलका याग्निक की आवाज में आपने मझधार फिल्म का गाना सुना। यादों की महफिल कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक एसपी बाला सुब्रमण्यम के गाए कुछ बेमिसाल गाने। और अब बारी है लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों वाले उस गाने की जिसकी फिल्म का नाम है पत्थर के फूल।

हाँ तो भाई, पत्थर के फूल फिल्म का ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर और एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाज़ों में, और यही गाना बना आज के यादों की महफिल कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

श्रोताओ, अभी आप विद भारती के कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी के हाफलोंग केंद्र है। आइए अब ले चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र और सुनते हैं हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच नई दिल्ली में वार्ता हो रही है। इस बातचीत में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार तथा निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की नई संभावनाएं तलाशी जाएंगी। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इससे पहले सुश्री रोड्रिगेज ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी मुलाकात से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल्स क्षेत्रों से जुड़े कई स्थलों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं का जायजा लेना और सहयोग के अवसरों का पता लगाना है। भारत ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों में वेनेजुएला का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। वे 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उनकी यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। उत्तर पूर्वी परिषद का 73वां पूर्ण सत्र मेघालय के शिलंग में चल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक है। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री सुकांतो मजूमदार, गृह सचिव गोविंद मोहन और मंत्रालय के सचिव संजय जाजू उपस्थित हैं। इसके अतिरिक्त मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड तथा सिक्किम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बैठक की जानकारी दी है।
1: ये हमारा 23rd प्लेनरी मीटिंग ऑफ नॉर्थ ईस्ट होने जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है नॉर्थ ईस्ट के लिए। इसके द्वारा है बहुत सारे स्कीम के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर डिसाइड होता है। और 2014 के बाद तो नॉर्थ ईस्ट का जो भी फंड है, डेवलपमेंट फंड है, इसके द्वारा बहुत सारे योजना शुरू हो चुका है, काम हो रहा है।
0: उत्तर प्रदेश सरकार राज्य पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्रों तक निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध कराएगी। सिविल पुलिस कांस्टेबल और समकक्ष पदों के लिए भर्ती परीक्षा 8, 9 और 10 जून को प्रतिदिन 2 शिफ्टों में आयोजित की जानी है। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने इस आयोजन को योगासन के वैश्विक खेल विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। इस बीच प्रधानमंत्री ने देशवासियों से नियमित रूप से योग करने का आग्रह किया है। एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए उन्होंने कहा कि योग के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। भारत सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। गोवा के मडगांव में कल भारत ने सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराया। फाइनल शनिवार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। शेयर बाजार दोपहर के कारोबार में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 35 अंक गिरकर 74,311 पर, जबकि निफ्टी 5 अंक फिसलकर 23,401 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: श्रोताओ, अभी आप हिंदी में समाचार सुन रहे थे। ये आकाशवाणी के हाफलॉन्ग केंद्र है। आइए पुनः ले चलते हैं आकाशवाणी का मुंबई केंद्र और सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।
3: नूतन जी की कहानी को सुंदर तरीके से शब्दों में पिरोया गया है। कई दिन बाद शायद ये प्रयोग हुआ है। इन्होंने ढेर सारा धन्यवाद दिया है और लिखा है कि आज बेहतरीन गीतों की माला सजाई जाएगी। गानों का सिलसिला शुरू हो उससे पहले कुछ कमेंट्स ले लेते हैं। हमारे एक साथी ने लिखा है कि आज गुजरे जमाने की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री नूतन जी की जन्म जयंती है, लिहाजा छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी है उन्हीं की फिल्मों के गीत हैं। जी हाँ बिल्कुल। आगे लिखा है कि नूतन के सौंदर्य को मिस इंडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया और वो इस पुरस्कार को पाने वाली पहली महिला थी, ऐसी जानकारी इन्होंने दी है। तो दूसरे साथी क्या लिखते हैं कि कार्यक्रम में फिर से शामिल होने वाले इस गद्यमयी इबारत में एक छोटी सी गुड़िया के मन की गुदगुदी भरी बड़ी सी कहानी का चित्रण बंदिनी, सुचाता, छलिया, अनाड़ी, महाराजा आदि के माध्यम से भली भांति उकेरा गया है। और इस दृष्टिकोण से गुड़िया की कहानी जो वादे तक आती है तो हर हृदय को स्पर्श करने में पूरी तरह समर्थ है। और फिर तो भाई गीतों का सिलसिला शुरू करना ही पड़ेगा। और साथियों, चूंकि आज के टेक्स्ट में जिक्र है एक छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी का, तो भाई आज के सुरीला सफर की कहानी का आगाज भी इसी गाने के साथ होना चाहिए। क्या कहते हैं आप, इस गाने को सुनकर बताइएगा क्या राय है आपकी।

दुबई सीमा फिल्म के इस गाने के साथ कार्यक्रम सुरीला सफर का आगाज हो गया है और हमारे साथी ने भी लिखा है कि बहुत ही साफ सुथरे गीत से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। तो और दूसरे साथी लिख रहे हैं कि फिल्म सीमा का ये गीत मेरी लिस्ट का यानी उनकी लिस्ट का पहला गीत बच गया। तो आप सब भी अपनी अपनी लिस्ट में गाने टिक करते चलिएगा कि कौन कौन सा गाना हमारी लिस्ट के साथ मेल कर रहा है। वैसे आप गाने लिख कर भेजिए हमें, हो सकता है कि आप वाला गाना बज ही जाए। वैसे एक साथी ने लिखा है कि इस गाने में सरोद का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है, फिल्म सीमा लता जी शंकर जयकिशन का संगीत। जी हाँ। और आगे एक साथी लिखते हैं कि नमस्कार किया है, लिखते हैं अगर आज की इबारत को देखा जाए तो लगता है कि आज तो गाने बहुत ही सुंदर और सुनने को मिलेंगे, आज तो बहुत आनंद आएगा। और दूसरे साथी ने लिख दिया है कि नूतन ने बिना ज़्यादा बोले सिर्फ अपनी आँखों और चेहरे के भावों से भावनाओं को व्यक्त किया। फिल्म सुजाता 1959 और बंदिनी 1963 जैसी फिल्मों में

का संवेदनशील अभिनय इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यकीनन साथियों, उनकी सादगी में एक अनोखा आकर्षण था जो बिना किसी दिखावे के सीधे दिल को छू जाता था। और उनकी खूबसूरती केवल चेहरे तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनके व्यक्तित्व, विनम्रता और संस्कारों में भी झलकती थी। जैसा कि हमारे एक साथी ने उनकी आंखों के लिए लिखा है कि अपनी आंखों और चेहरे के भावों से भावनाएं व्यक्त करती थीं, तो यकीनन उनकी आंखें भावनाओं की ऐसी भाषा बोलती थीं जिसे शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। प्रतिभा, सौम्यता और आत्मविश्वास का जो सुंदर संगम अभिनेत्री नूतन में था, वो उन्हें अपने दौर की सबसे विशिष्ट अभिनेत्रियों में शामिल करता है। एक और कमेंट आया है हमारे पास कि ऐ मेरे हम सफर, रोक अपनी नजर, ये दिल है बड़ा बेअसर, बचपन के दिन भी क्या दिन थे उड़ते फिरते, ऐसा गाना लिखा है इन्होंने। बहुत सारे गाने लिख भेजे हैं और लिखा है कि युग युग से गीत मिलन के गाते हैं, गाते रहेंगे, यानी इन्होंने नूतन जी के बहुत सारे गानों को यहाँ तक भेज दिया है। और एक साथी ने लिखा है कि मैं तो यही कहूँगी कि ब्लैक एंड वाइट का जो दौर था वो बहुत ही सुंदर था। एक श्वेत शाम दौर की फिल्मों में जो सादगी, आंखों की भाषा और ठहराव था, वो आज के शोर शराबे में कहीं खो सा गया है। उस दौर की भोली सी सूरत और गहरी आंखें बिन कुछ कहे भी सब कुछ कह जाती थीं। बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप। वैसे आप बताइएगा, आप सब साथी, कि आपको ब्लैक एंड वाइट फिल्मों में ज्यादा अच्छा लगता है फिल्में देखना या रंगीन? और नूतन जी की कौन सी फिल्म है जो आपके दिल के बेहद करीब है? एक कमेंट में हमारे साथी ने लिखा है, ब्लैक एंड वाइट सिनेमा के स्वर्णिम युग में नूतन भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बेहतरीन और प्रभावशाली अभिनेत्रियों में से एक थीं। उनकी सादगी, प्राकृतिक अभिनय और सशक्त किरदारों ने उन्हें उस दौर के दर्शकों के दिलों की धड़कन बना दिया था। वो सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा नहीं थीं, बल्कि उन्होंने अपनी आवाज़ और आंखों के भावों से हर किरदार में जान डाल दी। उन्होंने बिना किसी लाउड मेकअप या ड्रामे के केवल अपने संजीदा अभिनय से ब्लैक एंड वाइट फिल्मों के पर्दे पर अपनी एक अमित छाप छोड़ी। बिल्कुल सही बात है। और उदाहरण है उनकी क्लासिक फिल्मों में उनका क्लास, अभिनय, बंदिनी, सुजाता, तमाम फिल्में हैं साथियों। ढेर सारी कमेंट्स मेरा शामिल करने का इरादा है गीतों के साथ। बहरहाल अगला गीत प्ले हो, उससे पहले मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ ढेर सारे कमेंट्स ले लूँ। उन्होंने मेरे साथी लिखते हैं एक कि इन्होंने लिखा है कि अभिनेत्री नूतन हिंदी सिनेमा की सबसे प्रतिभाशाली और सम्मानित अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं। अपनी सहज अभिनय शैली, प्रभावशाली आंखों की अभिव्यक्ति और भावनाओं को जीवंत रूप से पर्दे पर प्रस्तुत करने की उनकी अद्भुत क्षमता के कारण उन्हें दर्शकों के दिलों में विशेष उन्होंने स्थान बनाया। तो वहीं दूसरे साथी ने लिखा है कि मधुर गीत से आगाज हुआ आज के इस कार्यक्रम का। तो एक दूसरे हमारी एक साथी हैं, लिख रही हैं कि तब मैं बहुत छोटी थी, नूतन की फिल्म लगी थी तेरे घर के सामने। मेरे पापा नूतन जी के अभिनय वाली कोई भी फिल्म लगी हो तो हम सबको जरूर देखने जाते थे। उन्हीं दिनों में नूतन की सरस्वती चंद्र, खानदान और दुल्हन एक रात की देखी थी। उस समय नूतन के अभिनय में क्या खासियत है ये नहीं पता था, मगर जब थोड़े बड़े हुए तो सुजाता और बंदिनी देखने के बाद जाना कि अभिनेत्री नूतन में क्या खास है। धीर गंभीर चेहरे के पीछे भाव प्रवण अभिनय, मैंने लगभग नूतन के अभिनय की सारी फिल्में देखी हैं और मेरे पापा की तरह वो मेरी भी पसंदीदा अभिनेत्रियों में शुमार हैं। शायद ही कोई होगा ऐसा साथियों जिसे अभिनेत्री नूतन पसंद ना हो और उनका अभिनय पसंद ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सहज अभिनय बहुत कम देखने को मिलता है। तो वहीं एक और कमेंट में लिखते हैं साथी कि नूतन जी भारतीय सिनेमा की पहली अभिनेत्री थीं जिन्होंने शादी और करने और माँ बनने के बाद भी बतौर लीड एक्ट्रेस बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट फिल्में दीं। अपनी सजल आंखों और स्वाभाविक अभिनय के लिए मशहूर नूतन थीं। जिस लड़की को रूप रंग के लिए ताने मिले, उसी नूतन ने 1952 में महज 16 साल की उम्र में मिस इंडिया, मिस मसूरी का खिताब जीतकर सबको चौंका दिया था। तो चलिए, कमेंट बहुत सारे हैं, गाना बजने के लिए बिल्कुल तैयार है। जैसा कि आप सबने कहा है कि नूतन जी गाती भी थीं, हमारे बहुत सारे कमेंट्स में मुझे पढ़ने को मिला है, तो जी हाँ, वो गाती भी थीं। तो जब छोटी सी गुड़िया की कहानी का आगाज़ हुआ है तो देखें वो गुड़िया आगे क्या कहती है।

ये वही फिल्म थी, वही गाना था जिसका आपको इंतजार था। छबीली फिल्म का गाना था और आवाज अभिनेत्री नूतन की थी। जैसा कि हमने आपसे पूछा था कि आपको अभिनेत्री नूतन की कौन सी फिल्म सबसे अच्छी लगती है, आपके दिल के करीब है, तो हमारी एक साथी लिख रही हैं कि उनकी किसी एक फिल्म को चुनना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिल्म सौदागर में उनका अभिनय मेरे दिल को छू गया। तो वहीं दूसरी सखी ने भी लिखा है कि नूतन की सौदागर मुझे बहुत अच्छी लगी, एक बेबस बेवा की शक्ति रूप का शानदार प्रदर्शन है। सच में साथियों, उनकी हर फिल्म में उनका क्लास अभिनय हम सभी के दिलों में आज भी बसा है। एक साथी ने लिखा है कि नूतन जी मेरे जन्म से पहले की अदाकारा हैं, परंतु उनकी कई पुरानी ब्लैक एंड वाइट फिल्में मैंने दूरदर्शन पर, ब्लैक एंड वाइट टेलीविजन पर देखी हैं और उनकी नई फिल्में सिनेमा हॉल में भी देखी हैं। वे सदाबहार अदाकारा हैं। एक साथी ने लिखा है कि बिमल रॉय की फिल्म बंदिनी भारतीय सिनेमा की एक मील का पत्थर है। और आगे लिखा है कि इस फिल्म में नूतन द्वारा निभाया गया कल्याणी का किरदार हिंदी सिनेमा के इतिहास में अभिनेत्रियों द्वारा दिए गए सर्वश्रेष्ठ और सबसे सशक्त अभिनय में से एक माना जाता है। कल्याणी का चरित्र एक ऐसी शांत महिला का है जिसके भीतर जुनून और वेदना का ज्वालामुखी उबल रहा है। उन्होंने बिना किसी लाउड ड्रामे का अभिनय बहुत ही कोमलता और गरिमा के साथ इस भूमिका को जिया। उनकी संवाद के बजाय अपनी आंखों से उन्होंने सूक्ष्म के भावों से अपनी पीड़ा और असमंजस को पर्दे पर उतारा। वो प्यार, त्याग और अपराध बोध के द्वंद्व को केवल एक नजर से बयां कर देती थीं। फिल्म के क्लाइमेक्स में जिस तरह अपने प्यार, अपनी जिंदगी त्याग कर अपने पुराने प्यार की तरफ लौटती हैं, क्या कोई सिने प्रेमी उनके इस किरदार और को अदाकारी को भूल सकता है? कोई नहीं भूल सकता साथियों, कोई भी नहीं। और इतने भावों को अपनी आंखों से बयां करना कोई आसान काम नहीं है। तो एक साथी ने लिखा है कि नूतन की फिल्मों के गानों, विशेष रूप से लता मंगेशकर जी द्वारा गाए में उनका जो लिप सिंक होता है इतना सटीक और स्वाभाविक होता था कि वे

सीधे उनके किरदार का हिस्सा लगते थे। तो दूसरे साथी लिखते हैं कि उनकी सारी फिल्में, नूतन जी की सारी फिल्में सुपरहिट रही हैं। सुनील दत्त के साथ उनकी फिल्म खानदान बचपन में 2 आना टिकट दर पर देखी थी, पारिवारिक फिल्म सपरिवार देखी थी। नूतन जी की फिल्मों से जुड़ी आपकी कोई याद हो तो जरूर साझा कीजिए साथियों। और हाँ, अपनी लिस्ट के गाने टिक करना मत भूलिएगा और हमें बताना मत भूलिएगा कि आपके कौन कौन से गाने मेल खा रहे हैं। एक कमेंट आया है कि नूतन महज एक अभिनेत्री नहीं थी बल्कि भारतीय सिनेमा के कैनवास पर उकेरी गई एक ऐसी जीवंत कविता थी जो बिना किसी शोर के सीधे दिलों को छू लेती हैं। चेहरे पर सादगी, अभिनय में सहजता और कैमरे के सामने हमेशा ईमानदारी रहने वाली नूतन की अभिनय शैली, संवाद अदायगी और उनकी भाव भंगिमाओं में दर्शक बन जाते हैं। नूतन अपने किरदार में इतनी गहराई से उतर जाती थी कि सिनेमा घर से बाहर निकलने के बहुत बाद भी उनकी हर हरकत, हाव भाव, नज़र और संवाद मन में बसे रहते हैं। उनकी आंखें शब्दों से अधिक कह जाती हैं। नूतन आज भी उस पहली बारिश की महक की तरह हमारे दिलों में महकती हैं, जिनकी यादें वक्त के साथ कभी धुंधली नहीं होती। बहुत अच्छी बातें आपने बहुत अच्छे शब्दों को पिरो कर लिखी हैं। तो वहीं दूसरे साथी ने लिखा है कि मैंने भी आज की इबारत से एक पैराग्राफ बनाया है और पुराने रेडियो गीतों की मधुर धुनें जब श्वेत श्याम यादों को फिर से जीवंत कर देती हैं तब मन अनायास ही उन सुनहरे पलों में खो जाता है। कभी सुजाता की मासूमियत दिल को छूती है तो कभी बंदनी की भावनाएं मन को बांध लेती हैं। अनाड़ी, छलिया, सौदागर और सरस्वती चंद्र जैसी फिल्मों के किरदार आज भी यादों में वैसे ही बसे हैं जैसे सावन में कन्हैया की बांसुरी की मीठी तान। वाह, क्या बात है। आगे लिखा है, चुनरिया के रंग, राधा का प्रेम, छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी और एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने जैसे गीत पुराने दौर की मोहब्बत और अपनापन फिर से महसूस करा देते हैं। तो वहीं दूसरे साथी ने भेजा है कि आज की इबारत में एक नूतन प्रयोग किया गया है जिसमें अभिनेत्री नूतन जी की फिल्मों को जोड़कर इबारत बनाई गई है। आज छैल छबीली अभिनेत्री नूतन जी की फिल्मों और उनके शानदार अभिनय और बढ़िया गीतों से सुरीले सफर को सजाया गया है। अपनी आंखों से अभिनय को जीवंत करने में माहिर नूतन जी ने एक अपनी अलग ही पहचान बनाई थी। श्वेत श्याम फिल्मों में बेहतरीन अभिनय किया और ढलती उम्र में भी माँ की भूमिका में भी अपने बेहतरीन अभिनय से वो स्थान बरकरार रखा जो वो शुरुआती दौर में था। ऐसी महान अभिनेत्री नूतन जी को विनम्र नमन। एक कमेंट आया है कि नूतन जी हिंदी सिनेमा की सबसे संजीदा और सहज अभिनेत्रियों में जानी जाती हैं। उनकी आंखें ही संवाद बोलती थीं। फिल्म बंदनी में कल्याणी की खामोशी हो या सुजाता में अछूत लड़की की पीड़ा या फिर तुलसी तेरे आंगन की मिस सौतन की जटिल भावनाएं, उनकी आंखें ही बोल देती थीं। सत्यजीत रे जी ने कहा था कि नूतन की आंखों में ही स्क्रिप्ट लिखी होती है। नूतन जी ने अपने हर किरदार को जिया है। उन्होंने आदर्श नायिका की परिभाषा बदली और उनके किरदार कमजोर नहीं बल्कि हालातों से लड़ने वाले ज्यादा रहे। आज उनके जन्मदिन पर उन्हें सादर नमन। और जैसे कि बात बंदनी की चल ही रही है तो जब बात चले बंदनी फिल्म के जिक्र आए तो उस फिल्म का ये गाना ना बजे, ऐसा तो हो नहीं सकता।

हाँ तो साथियों, ये गाना ना बजे ऐसा तो हो ही नहीं सकता जब बंदनी फिल्म का जिक्र हो, और आज भी ये गाना सुनो तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए देखें हमारे साथी लोग क्या कहते हैं। वैसे जब बहुत सारे साथियों ने उनकी मुस्कान और आंखों के बारे में लिखा है, तो सच में साथियों, नूतन जी की मुस्कान में मासूमियत थी, उनकी अदाकारी में गहराई थी, सादगी उनका आभूषण थे और प्रतिभा उनकी असली पहचान थी। और वो सिर्फ पर्दे का सितारा नहीं थी, बल्कि वो हैं भारतीय सिनेमा की अमर विरासत। चलिए देखते हैं हमारे साथी क्या लिख रहे हैं कि बंदनी सौदागर, मेरी जंग, कर्मा, मैं तुलसी तेरे आंगन की और सुजाता, मिलन और बहुत सारी फिल्में हैं जो हमारी पसंद की हैं। आगे दूसरे साथी ने लिखा है कि नूतन जी की बंदनी, अनाड़ी और सौदागर तीनों फिल्मों में उनका काम बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन काम लाजवाब है। उनकी मुस्कुराहट दिल को मोह लेती है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात। तो दूसरे साथी लिख रहे हैं फिल्म सीमा, बंदनी, सुजाता, सौदागर, मैं तुलसी तेरे आंगन की यादगार फिल्म है। वैसे बचपन में दिल्ली का ठग देखने में भी बहुत अच्छी लगती थी उसके एक गाने के लिए। वो गाना कौन सा है जरा ये तो बता दीजिएगा। और दूसरे साथी लिखते हैं कि मैं नूतन जी के सब फिल्में तो मैंने देखी नहीं है, मुझे नूतन जी अभिनीत बंदनी और सौदागर फिल्म में उनका अभिनय बहुत अच्छा लगा। तो वहीं वैसे दूसरे साथी ने लिखा है कि नूतन जी की 1973 की सौदागर फिल्म बहुत अच्छी लगती है, बहुत पसंद है, जो नरेंद्र नाथ मित्रा की बंगाली कहानी रस पर आधारित है। ये फिल्म कल्ट क्लासिक साबित हुई। रविंद्र जैन का जादुई संगीत बेहद शानदार, गीत है तेरा मेरा साथ रहे में भी शामिल हो। इंतजार कीजिए ना। एक कमेंट में लिखते हैं कि नूतन जी उन दुर्लभ अभिनेत्रियों में से थीं जिन्होंने ये साबित किया कि एक महान कलाकार को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए चिल्लाने या तेज संवादों की आवश्यकता नहीं होती। सीमा, सुजाता और तेरे घर के सामने जैसी फिल्मों में उन्होंने जो रेंज दिखाई वो आश्चर्यजनक थी। बिल्कुल करेक्ट आपने लिखा है ये बात। और दूसरे साथी लिखते हैं कि नूतन जी बहुत सुंदर अभिनय करती थीं, उनकी कुछ फिल्में जो हमें पसंद हैं, सरस्वती चंद्र, बंदिनी, सुजाता, सीमा वगैरह वगैरह। एक कमेंट में सुजाता फिल्म के लिए लिखा है कि ये फिल्म समाज में फैली छुआछूत और जातिवाद जैसी गंभीर रूढ़ियों पर चोट करती है। नूतन ने इसमें एक अछूत लड़की सुजाता की मुख्य भूमिका निभाई थी। विशेषतः नूतन के अभिनय की सादगी और उनके द्वारा झेले गए सामाजिक दर्द को दर्शकों ने बेहद करीब से महसूस किया। समीक्षकों के अनुसार इस फिल्म ने नूतन को एक गंभीर और संजीदा अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया। और दूसरे साथी ने लिखा है कि आज का सुरीला सफर संजीदा अभिनेत्री नूतन जी के जन्मदिन पर उन्हीं को समर्पित है। ये जानकर अच्छा लगा, शोभना समर्थ की बेटी ने अपने अभिनय से माँ का नाम ही नहीं ऊंचा किया, उन्होंने जिन भी फिल्मों में अभिनय किया एक आदर्श पत्नी, बहन, प्रेमिका, माँ के रूप में जो स्थान पाया वो किसी अभिनेत्री को आज तक नहीं मिला। बंदनी फिल्म के लिए लिखा है कि 1963 की बंदनी बिमल रॉय के निर्देशन में बनी इस फिल्म को भारतीय सिनेमा के मील का पत्थर माना जाता है। इसमें उनके सशक्त अभिनय के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था।

एक साथी ने अंग्रेजी में कमेंट हमें लिख भेजा है, नमस्कार करते हुए, गुड आफ्टरनून करते हुए कि सुरीला सफ़र के लिए कि टुडेज द टेक्स्ट इज़ नाइस एंड इंडिकेट्स मैनी इंटरेस्टिंग सॉन्ग्स दैट विल बी द कंपेनियन ऑफ लिसनर्स इन सुरीला सफ़र फ्रॉम बंदिनी छलिया सुजाता सौदागर अनाड़ी सरस्वती चंद्र खानदान पेइंग गेस्ट टू तेरे घर के सामने ओनली नूतन जी।

एक कमेंट में लिखते हैं कि आज के सुरीला सफर की हम सफर बन रही हैं अपने जमाने के दिग्गज अभिनेत्री और गायिका नूतन, जिनका आज जन्मदिन है, उन्हें मैं पुष्पांजलि अर्पित करता हूं। आज के इस कार्यक्रम के सारे गीत उन्हीं की फिल्मों से होंगे और उनके नाम की इबारत में बड़ी खूबसूरती के साथ शामिल किए गए। नूतन हिंदी सिनेमा की एक दिग्गज और बहुमुखी कलाकार थी, जिन्होंने अपनी सादगी, सशक्त अभिनय और अनूठी शैली से दर्शकों का दिल जीता। और लिखा है आगे दूसरे साथी ने कि आज सुरीले सफर में होंगी वो बहुत खूबसूरत मगर सांवली सी बहुत खूबसूरत नूतन जी, जितनी हमारे बीच की सामान्य सी लड़की वहीं बेहद स्मार्ट नायिका छलिया अनाड़ी में एक से बढ़कर एक गीत सुनने को मिलेंगे। बहुत ही खास होगा आप सभी के साथ नूतन जी की बातें और खानदान का वो खूबसूरत गीत तुम्हें मेरी मंजिल फूल तुम्हें भेजा है, ढेर सारे गाने इन्होंने लिखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। और अब जो बातें चल रही हैं और इसमें जिक्र आ चुका है फिल्म सुजाता का, जो कि सभी साथियों ने लिखा है, तो फिल्म सुजाता का वो गीत जिसका आप सबको है इंतजार, और मुझे लगता है कि ये गाना निश्चित रूप से आप सभी की लिस्ट में जरूर होगा। बताइएगा जरा कि इस गाने में इनके साथ कौन है।

सुजाता फिल्म का ये गाना जलते हैं जिसके लिए। इस गाने को जितनी बार चाहो रेडियो पर सुनो या पर्दे पर देखो बहुत कम लगता है। कितना सहज है ये गाना और अभिनेता अभिनेत्री कितनी सहज अभिनय इसमें इन दोनों कर बैठे हैं। जैसा कि हमने पूछा था आपसे कि इस गाने में अभिनेता कौन है, तो हमारे सभी साथियों ने इसका बिल्कुल सटीक आंसर दिया। साथियों ने लिखा है कि सुनील दत्त टेलीफोन पर यह गाना उन पर फिल्माया गया है और इस गाने में नूतन भी टेलीफोन पर ही हैं जो सुनील दत्त के दिल की बातें सुन रही हैं। हमारे एक साथी ने लिखा है कि फिल्म खानदान का तुम ही मेरी मंदिर तुम ही मेरी पूजा ये गाना जो है बहुत से संगीत कार्यक्रमों में गाया है मैंने और एक प्रतियोगिता में इस गाने के लिए पुरस्कार भी जीता है। वाह भाई क्या बात है, तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। तो आगे एक हमारी सखी लिखती हैं कि बंदिनी सुजाता और सीमा आगे लिखा है कि नूतन जी की किसी एक फिल्म को चुनना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। मैंने मेरी सबसे ज़्यादातर तीन फिल्मों का अलग अलग फिल्मों के बारे में जो इन्होंने लिखा है ये फिल्में इन्हें बहुत पसंद हैं। एक कमेंट है जिन्होंने लिखा है कि मैंने रेडियो थोड़ा देर से चालू किया और जैसे ही चालू किया मोरा गोरा रंग गाना आया, मन खुशी से झूम उठा। मुझे लगा शायद ये गाना बच चुका है। मैं जब छोटी थी दूरदर्शन पर सुजाता पिक्चर देखी, हर पिक्चर देखकर मन रो देता था। हमेशा अपने ऊपर होने वाले अन्याय के लिए चुपचाप सहती रहती नूतन जी। वैसे तो हमारी मम्मी के ज़माने की हीरोइन थी लेकिन जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो जो सीधी और शांत सहेलियाँ रहती थी उनको हम सब कहते थे ये नूतन है और बाकी सब तनुजा। तो बताइएगा जरा कि नूतन जी और तनुजा जी में रिश्ता क्या है। एक साथी ने लिखा है कि फिल्म सुजाता का गाना हमने सुना, सुनील दत्त साहब टेलीफोन पर नूतन जी को अपने दिल की बात कह रहे हैं, आवाज़ तलत महमूद साहब की है। और एक ने लिखा है कि फिल्म सुजाता में सुनील दत्त जी हैं और बहुत अच्छा फिल्म अंकन है ये। दूसरे साथी लिखते हैं कि श्वेत श्याम फिल्मों का दौर भारतीय सिनेमा का स्वर्णिम अध्याय था जहां अभिनेत्री नूतन ने अपने स्वाभाविक अभिनय से दर्शकों के दिलों में एक खास स्थान बनाया। इन्हीं स्मृतियों में सुजाता का भोला चेहरा गहरी आंखें और मासूम अदाएं जीवंत उठती हैं। कहीं वो बंदिनी है कहीं अनाड़ी की नायिका तो कहीं प्रेम और विरह के गीतों में डूबी एक संवेदनशील स्त्री। उनकी फिल्मों में के अनेक गीतों को के साथ प्रेम प्रतीक्षा तथा सपनों से भरे इस अमर श्वेत श्याम गीत को आज भी जब रेडियो पर सुनते हैं एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, तब श्वेत श्याम दौर की फिल्में और गाने सुनहरी यादें बनकर मन को छू जाते हैं। एक साथ ही लिखते हैं कि आज की भारत में शब्द ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, उस शख्सियत की फिल्मों से गीत ढूंढना है जिनका नाम नूतन है। आज उनका जन्म स्मृति दिन है, उस छबीली अभिनेत्री को विनम्र नमन करते हैं। उनके द्वारा निभाए गए हर किरदार में नूतनता भरी होती थी क्योंकि नूतन एक अभिनेत्री ही नहीं भावनाओं की सशक्त अभिव्यक्ति थी। हर कोई एक कार्य की सीमा होती है लेकिन उनके द्वारा निभाए गए किरदारों की कोई सीमा नहीं होती, चाहे वो कन्हैया अनाड़ी या छलिया राज कपूर के साथ हो या सौदागर अमिताभ बच्चन के साथ हो या धर्मेंद्र के साथ एक रात की बनकर चुनरिया रंग ली हो या हैंडीकैप सुनील दत्त की पत्नी राधा बनकर उनकी सेवा करते हुए खानदान का नाम रोशन किया हो या पेइंग गेस्ट देवानंद को तेरे घर के सामने घर बनाने और दुनिया बसाने की हामी भरती हो, उस छोटी सी गुड़िया की कहानी का सुनने का इंतजार रहेगा। और इन्होंने अपना उनको विनम्र नमन भेजा है। तो चलिए जब अनाड़ी फिल्म का भी जिक्र आ चुका है राज कपूर जी के साथ, तो अब हम अनाड़ी फिल्म के गाने की ओर बढ़ते हैं। आपको ये बताना है कि ये गाना जैसे ही शुरू होता है तो नायिका कौन सा वाद्य बजा रही हैं।

तेरा जाना, दिल के अरमानों का लुट जाना, अनाड़ी फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज और फिल्म आया गया नूतन जी पर। जैसा कि हमने पूछा था कि इस गाने में जैसे ही शुरुआत होती है तो नायिका कौन सा वाद्य बजा रही हैं, तो हमारे सभी साथी लिखते हैं कि पियानो बजा रही हैं अभिनेत्री, तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना। और हमने ये भी पूछा था कि नूतन जी और तनुजा जी में आपस में क्या रिश्ता है, तो उसको लेकर भी बहुत सारे हमारे पास कमेंट्स आए हैं। उससे पहले नूतन जी की फिल्मों से लेकर एक याद साझा की है हमारे एक साथी ने कि एक घर बनाऊंगा जी, मैं बताना चाहूंगा कि शादी से पहले मैंने होने वाली धर्म अपनी धर्म पत्नी के घर के सामने तो घर नहीं बनाया, लेकिन एक बड़ा घर बनाया उनके घर के सामने वाली सड़क पर, और अजमेर की उसी कॉलोनी में फिर ब्याह कर अपनी धर्म पत्नी को उसी घर में स्वागत किया। एक ये प्यारी सी याद इनकी बड़ी ही मीठी सी रही, बहुत अच्छी लगी। और वहीं जहाँ पर हमने पूछा था कि नूतन जी और तनुजा जी का रिश्ता, तो लिखते हैं साथी कि नूतन और तनुजा आपस में सगी बहनें हैं, लेकिन दोनों का फेस बिल्कुल नहीं मिलता। तो दूसरे साथी ने लिखा है कि नूतन की छोटी बहन है तनुजा, दोनों शोभना समर्थ जी की बेटियां हैं जो स्वयं अपने दौर में नायिका रही हैं। फिल्म सुजाता के लिए लिखते हैं कि ये सदाबहार गीत जलते हैं जिसके लिए तलत महमूद की मखमली आवाज़ में गाए गए, मजरू सुल्तानपुरी के सबसे खूबसूरत रोमांटिक गीतों में से एक है। एस डी बर्मन के संगीत और सुनील दत्त के फ़ोन पर अभिनय से मधुर बनाया है इसे। और एक साथी ने कुछ अपनी यादें साझा की हैं कि नूतन बुआ जी की तो सभी फिल्में देखी हैं, पर अब आप लोग कहेंगे कि इसकी बुआ कैसी, तो बताती हूँ। जब हम ठाणे में थे और बाबा पिताजी के दोस्त पर्सनल सेक्रेटरी थे नूतन बुआ जी के, तब वो मुमरा में रहा करती थी। बाबा को बालू चाचा ने एक बार नूतन बुआ जी के घर में ले गए थे, तो वो बाबा की वो अनमोल याद मिली जो बहुत कम लोगों को मिलती है। तब नूतन जी ने खाना खुद बनाया और इन दोनों को खिलाया, बहुत सिंपल सा, और नूतन बुआ मराठी में बहुत

कर बातचीत करते हुए खुद को परोसा गेट तक छोड़ने आई और मराठी में कहा, ये तरहा भाऊ कधी कधी वेल मिलाला तर बालू दादा सोबत। बाबा नतमस्तक हो गए कि इतनी बड़ी हीरोइन खुद खाना बनाती है, परोसती है, ऊपर से गेट तक आती है, भाऊ कह के ऐसी हीरोइन कहीं नहीं मिलेगी। बहुत यादगार बात है। नूतन जी के लिए कुछ और हमारे पास कमेंट्स हैं। लिखते हैं कि नूतन हिंदी फिल्म जगत की एक नामचीन अदाकारा रही हैं, उनके अभिनय का लोहा हर किसी ने माना है। गूगल ने हिंदी सिनेमा की इस दिग्गज अभिनेत्री को उनके 81वें जन्मदिन पर एक विशेष गूगल डूडल के माध्यम से याद किया था। उनकी बेजोड़ अभिनय क्षमता को श्रद्धांजलि देते हुए डूडल में उनके निभाए गए सबसे प्रतिष्ठित किरदारों के भावों को दर्शाया गया। नूतन की बहुमुखी प्रतिभा को केवल एक चित्र में समेटना मुश्किल था, इसलिए डूडल में उनके चेहरे के 4 अलग अलग भावों को चित्रित किया गया था। ये भाव बंदिनी की संघर्षरत कल्याणी, सुजाता की व्यथित और सीमा की एक उपद्रवी अनाथ लड़की के रूप में उनके उत्कृष्ट अभिनय को दर्शाते हैं। नूतन की एक विशिष्ट अभिनय शैली थी जिसमें वे चेहरे की न्यूनतम भाव भंगिमाओं और आवाज के मॉड्यूलेशन से गहरा भाव प्रवण अभिनय किया करती थी। बिल्कुल, और इस गाने में भी जो अब आप सुनेंगे उनका जो आँखों का और जो फेशियल एक्सप्रेशन हैं वो भी कुछ कम तो नहीं है। अब आपको ये बताना है कि इस गाने में उनके नायक कौन है, और हमारे मुझे ऐसा लगता है कि ये गाने का भी इंतज़ार आप सबको है। वैसे आप सब अपनी अपनी लिस्ट के गाने नोट कर रहे हैं ना, हम तक भेजिए ज़रूर कि आपके अब तक कितने गाने टिक हो चुके हैं।

सौदागर फिल्म का ये गाना था और हमारे सभी साथियों ने लिखा कि इस गाने में नायक थे अमिताभ बच्चन। एक साथी लिखते हैं कि रविंद्र जैन जी का जादुई संगीत, तो वहीं दूसरे साथी ने लिखा कि वह बेहतरीन मधुर और भावपूर्ण गीत। बेचारी का इस गाने के बाद अमिताभ द्वारा तलाक देना दर्शकों को झकझोर गया था। दूसरे साथी ने लिखा है कि विविध भारती के लिए भी हम यही कह रहे हैं कि तेरा मेरा साथ रहे, दिन हो के रात सदा बना रहे ये साथ। तो दूसरे साथी ने लिखा कि भाई मेरा तो पांचवा गीत हीरो अमिताभ बच्चन रहे एक फिल्म नूतन जी के साथ, इनका पांचवा गीत शामिल हुआ। और दूसरे साथी ने लिखा कि फिल्म अनाड़ी नूतन पियानो बजा रही हैं, मेरा वाला गाना आ गया। और दूसरे साथी ने लिखा है कि वो पियानो बजा रही हैं, वैसे गाने में बांसुरी का भी खूबसूरत प्रयोग किया गया है, अनाड़ी तेरा जाना हाई पिच पर विशेष गायकी। तो दूसरे साथी ने लिखा कि मेरी लिस्ट का तीसरा गीत भी शामिल हो चुका है। और एक साथी लिखते हैं कि गुड आफ्टरनून, आज प्रोग्राम सुनने के लिए बहुत लेट

है उनके जन्मदिन पर उन्हें नमन करते हैं और उनके बारे में क्या कहें, उनकी फिल्मों में से कोई एक फिल्म चुननी बहुत मुश्किल है। मुझे तो उनकी सारी फिल्में बहुत पसंद हैं, उनकी बंदनी सीमा ये दोनों फिल्में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और अब वक्त हो चला है कि आज के इस कार्यक्रम का आखिरी मोस्ट अवेटेड सॉन्ग आप सबकी नज़र।

एक साथी लिखते हैं कि आज महान अभिनेत्री न्यूटन जी को श्रद्धांजलि स्वरूप सुरीला सफर में सम्मान दिया जा रहा है। बेहद पसंद आया ये आपका जेस्चर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: सामने।
1: आप सभी एक दूसरे को बधाई देते हुए हमारे एक साथी लिखते हैं कि अनेक साथियों के कमेंट शामिल हुए, उन सभी को बधाई और इन्हें प्रस्तुति अच्छी लगी। दूसरे साथी ने लिखा, शानदार लाजवाब सफर रहा आपके साथ, गति में और संगीत में कार्यक्रम का धन्यवाद, प्रश्नों ने बांधे रखा। तो अब साथियों वक्त हो चला है कि आपसे ले लें इजाज़त। तो आप सभी का दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, विविध भारती के इस कार्यक्रम सुरीला सफर को सुरीला और खूबसूरत बनाने के लिए। मैं मिलूंगी आपसे कुछ देर बाद, फिलहाल आप जुड़े रहिए, सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम का। ये आकाशवाणी के हाफलॉन्ग केंद्र है। आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता, ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलांग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का निधन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया। केरलम में

0: दक्षिण पश्चिम मॉनसून शुरू और पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप अहमदाबाद में शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ व्यापक चर्चा की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा, ऑटोमोबाइल आदि क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते तलाशे। मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने तथा वैश्विक दक्षिण के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इससे पहले सुश्री रोड्रिगेज ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़े कई स्थलों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं का जायजा लेना तथा सहयोग के अवसरों का पता लगाना है। भारत ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों में वेनेजुएला का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगी। वे 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। उत्तर पूर्वी परिषद NEC का 73वां पूर्ण सत्र मेघालय के शिलंग में चल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक है। बैठक में पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे के विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। बैठक में क्षेत्रीय विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए गठित मुख्यमंत्री उच्च स्तरीय कार्यबलों द्वारा की गई प्रगति पर चर्चा प्रमुखता से शामिल है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने कहा कि इन विचार विमर्शों से राज्यों और हितधारकों के बीच समन्वित कार्रवाई को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे साझा विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री श्रीकांतो मजूमदार, गृह सचिव गोविंद मोहन और मंत्रालय के सचिव संजय जाजू उपस्थित हैं। इसके अलावा मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड तथा सिक्किम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बैठक को महत्वपूर्ण बताया।
1: ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है नॉर्थ ईस्ट के लिए। इसके द्वारा है बहुत सारे स्कीम के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर डिसाइड होता है। और 2014 के बाद तो नॉर्थ ईस्ट का जो भी फंड है, डेवलपमेंट फंड है, इसके द्वारा बहुत सारे योजना शुरू हो चुका है, काम हो रहा है।
0: उत्तर पूर्वी परिषद पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सर्वोच्च क्षेत्रीय योजना निकाय के रूप में कार्य करती है। ये क्षेत्र में समन्वित विकास को बढ़ावा देने और सहकारी संघवाद को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने कहा है कि वैश्विक व्यवधानों और आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत वैश्विक बाजार में अन्य देशों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। श्री प्रसाद ने नई दिल्ली में ग्लोबल बिजनेस रिसर्च कॉन्फ्रेंस GBRC के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने हाल ही में कई देशों के साथ संपन्न हुए मुक्त व्यापार समझौतों की सराहना भी की। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा आयोजित GBRC का उद्देश्य वैश्विक व्यापार से जुड़े विषयों और चुनौतियों पर शोध के लिए चर्चा का अवसर प्रदान करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात पुलिस ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन डेल्टा हंट की शुरुआत की है। इसके तहत पिछले 24 वर्षों में गुजरात में अवैध रूप से रह रहे 424 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 782 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ जारी है। ये अभियान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ शुरू किया गया था। गांधीनगर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री और गृहमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले प्रत्येक घुसपैठिए का पता लगाया जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें बांग्लादेश वापस भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासियों को आश्रय, रोजगार या सहायता प्रदान करके कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
2: 6,200 से ज्यादा लोगों की तहकीकात की जा रही है, इनमें से 362 लोग अभी तक बांग्लादेशी पाए गए हैं। साथ ही जिन लोगों ने उनको रहने के लिए घर दिया होगा और जिन्होंने उनको नौकरी दी है लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे होंगे, उन पे भी एक कड़े कदम उठाने के लिए एक पूरी टीम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। गुजरात पुलिस घर घर और गांव गांव तक ये तहकीकात चालू रखेगी।
0: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए हैं। ये घटना कल रात ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में हुई। गंभीर मरीजों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। मुजफ्फरपुर के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना की जांच जारी है।
3: ICU 14 फ्लोर पर है, उसी में आग लगने की बात है शॉर्ट सर्किट से। कुल 13 से 15 लोग भर्ती थे, लेकिन 3 लोगों की मृत्यु कंफर्म है, बाकी लोग अन्य जगह भेजा गया अलग अलग अस्पताल में इलाज के लिए। तो मृत्यु का आंकड़ा बढ़ सकता है हालांकि, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, हम लोग जांच कर रहे हैं।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मालवीय नगर अग्निकांड के घायलों से मिलने आज साकेत के निजी अस्पताल पहुंची। मुख्यमंत्री ने घायलों तथा उनके परिजनों से बातचीत की और अधिकारियों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। श्रीमती गुप्ता ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 10-10 लाख रूपये और गंभीर रूप से घायलों को 5-5 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि घायलों के चिकित्सा खर्च की व्यवस्था की जाएगी। मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मृत्यु हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। वयोवृद्ध निर्माता और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहलानी का आज मुंबई में निधन हो गया। वे 76 वर्ष के थे। 10 जनवरी 1950 को जन्मे निहलानी ने 1982 में आई फिल्म हथकड़ी से निर्माता के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। उन्हें 1986 में आई फिल्म इल्जाम से अभिनेता गोविंदा को पहला बड़ा ब्रेक देने का श्रेय दिया जाता है। जनवरी 2015 में निहलानी को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सख्त नए दिशा निर्देश लागू किए, जिनके तहत ए रेटिंग वाली फिल्मों में भी कुछ अपशब्दों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने या हिंसा दर्शाने वाली सामग्री को सीमित करने का प्रयास किया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ आगे की सैन्य कार्रवाई से रोकने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। ये चौथी बार है जब प्रतिनिधि सभा ने ट्रंप की युद्ध संबंधी शक्तियों को सीमित करने की कोशिश की है। आलोचकों का कहना है कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को अमरीकी संसद की मंजूरी मौसम विभाग ने आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन की पुष्टि की है। मॉनसून 3 दिन देर से आया है। 1 जून से केरलम में मॉनसून के आने की संभावना थी। विभाग ने 9 जून तक केरलम और माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में तेज बारिश हो रही है।
4: केरलम के 6 जिलों में आज कुछ जगहों पर तेज बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो रही है और आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के पहुंचने की संभावना है। केरलम में कई जगहों पर रात से अब तक लगभग 5 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। केरलम से स्मिथ एम पलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के दौरान उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों के दौरान लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी इसी तरह की स्थिति का अनुमान व्यक्त किया है। दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर आंधी की प्रबल संभावना है। गुजरात के अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के 1st संस्करण का शुभारंभ हुआ, जो वैश्विक खेलों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को इस भव्य आयोजन में वर्चुअल रूप से शामिल होकर अपनी शुभकामनाएं देंगे। पूरे विश्व से योग प्रेमी और एथलीट प्रतियोगिता के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि चैंपियनशिप का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहुखेल प्रतियोगिताओं को योग में शामिल करना है।
5: वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: इस बीच प्रधानमंत्री ने देशवासियों से नियमित रूप से योग करने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए उन्होंने कहा कि योग के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर संतुलित, स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन जिया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और लाओस के बीच गहरे सभ्यतागत संबंध हैं और ये बौद्ध धर्म तथा रामायण की साझा विरासत में दिखाई देते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में लाओस के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री थोंग सावन फोम विहाने से भेंट की। इस दौरान

0: निफ्टी 34 अंक फिसल कर 23,372 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता। ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलांग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का निधन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून शुरू और अहमदाबाद में पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: श्रोताओ, अभी आप हिंदी में दोपहर समाचार सुन रहे थे। गीत और संगीत के सफर को जारी रखते हुए आइए पुनः ले चलते हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र और सुनते हैं विद भारती के कार्यक्रम।
2: विविध भारती पर हम लेकर हाजिर हैं गुजरे जमाने के कुछ नायाब

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले का गाया लाड साहब फिल्म का ये गाना था आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की पहली पेशकश। हसरत जयपुरी के बोलों को सुरों में ढाला था संगीतकार शंकर जयकिशन ने। साथियों, अगले गाने में भी इन्हीं दोनों आवाज़ों का जादू है, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले। क्या कहता है ये गाना, आइए सुने।

0: दिल ने फिर याद किया फिल्म का। ये दो गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के युगल स्वर, जी एल रावल के बोल थे, सोनी कोमी का संगीत। रोशन के संगीत से सजा होगा अगला गाना, लेकिन उससे पहले ये संदेश।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
2: मैं और मेरी तन्हाई,
1: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: चलिए साथियों, अब सुना जाए रोशन के संगीत से सजा और साहिद लुधियानवी का लिखा गाना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। क्या कहता है ये गाना, दिल ही तो है।

मिलन फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर के स्वर में। आनंद बख्शी के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। अब आपको सुनवाते हैं नौशाद की तर्ज पर शकील बदायूनी के बोल, लता मंगेशकर की आवाज़, फिल्म का नाम शबाब।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आशा भोसले और किशोर कुमार के युगल स्वर दिल्ली का ठग फिल्म के इस गाने में आप सुन रहे थे। SH बिहारी के बोलों को सुरों में ढाला था संगीतकार रवि ने। सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। साथियों, इन सदाबहार नगमों की सुंदरता, इनका सौंदर्य, इनका हुस्न कल भी तरोताज़ा था, खूबसूरत था, आज भी है और हमेशा रहेगा। चलिए अब आज के इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश की ओर बढ़ा जाएं। शंकर जयकिशन की तर्ज पर शैलेंद्र की रचना है, लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों के स्वर। क्या कहता है कन्हैया फिल्म का ये गाना, चलिए सुनते हैं साथ साथ।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। सोनाली जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको और सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सब प्रेम नमस्कार। और ममता जी क्या बात है, आप थोड़ी बुझी बुझी सी, थोड़ी सी खामोश सी, थोड़ी सी नाराज सी नजर आ रही
1: अब कहाँ नाराज तो बिल्कुल थी नहीं पहले भी, लेकिन जो बुझा बुझा चेहरा आपको लगा और आपके हाथों का स्पर्श मिला तो उदासी तो मेरी चली गई वैसे ही। और जिंदगी में क्या होता है कि थोड़ा गम थोड़ी खुशी सबको मिलती है, कई बार हम यूं ही बेवजह चुपचाप बैठ जाते हैं तो लोग उसको उदासी समझते हैं, तो ऐसे ही कुछ आपके साथ हुआ। तो आपने जब स्पर्श किया और हाथ मिलाया मुझसे और कहा कि क्या बात है, क्यों थोड़ी सी उदास लग रही, बस मैं मुस्कुरा उठी
2: और वो छू मंतर हो गया सारा सारा दर्द। क्योंकि देखिए ना, हर किसी की जीवन में थोड़ी ना थोड़ी परेशानी होती है, और हम ऐसे है ना कि अगर हमारे मन से थोड़ा भी अलग हुआ ना तो हम भी परेशान हो उठते हैं। भले ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा परेशानियां होती है, पर हम उसे बहुत ज्यादा मान भी लेते हैं कि अरे ऐसे क्यों हो गया मेरे साथ में।
1: बिल्कुल,
2: तो हर किसी के साथ ऐसा होता है, और उम्र बढ़ने के साथ साथ तो होता ही है कि थोड़ी सी तबीयत नासाज हो गई तो परेशान हो जाते हैं,
1: किसी ने कुछ कह दिया
2: किया तो नाराज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे में हमारी जो घर की दादी माँ, नानी माँ या फिर पिताजी माँ, जिनसे हमारा स्पर्श कम होते जाता, उनका हाथ में हाथ थाम लिया और बस उनको एक झप्पी दे दी, प्यार भाई गले से लगा लिया, तो वे खुश हो जाते हैं।
1: बिल्कुल सही बात है। तो जो उदास बैठा है उसके पास जाकर एक जादू की झप्पी दे दे और प्यार से उसके कंधे पर उसके सिर पर हाथ रखे कि चलो सब ठीक हो जाएगा। भले ही आपको कारण पता हो ना हो, लेकिन इतने से कोई बहुत बड़ा दुख या अवसाद होता है तो दूर हो जाता है। और कई बार ये घटनाएं भी इससे घटित होती हैं कि लोग दुनिया अपनी जिंदगी से अपने हालात से बहुत परेशान हाल होते हैं और वो कोई बड़ा कदम आत्महत्या जैसे कर रहे हो तो भी वो वक्त टल जाता है। और ये कहा जाता है कि आत्महत्या का बस कुछ लम्हा होता है, वो लम्हा अगर कुछ सेकंड टल गया तो वो टल गया, फिर उसके बाद मन ठीक हो जाता है। तो इसलिए जब भी कोई उदास चेहरा दिखाई पड़े तो बस उसके सिर पर हाथ रखें, एक स्पर्श से किसी की उदासी, किसी की नाराजगी, किसी का दुख दूर हो जाता है।
2: और साथ में आज हम कहानी पद्मश्री की इस सेगमेंट के अंतर्गत दुलारी देवी, जो मधुबनी पेंटिंग के लिए जानी जाती है, उन्होंने मधुबनी पेंटिंग इस क्षेत्र में बहुत नाम कमाया है, तो उनके बारे में भी हम जानकारी देंगे। और साथ ही मुझे कुछ कहना है तो इसमें गर्मी की छुट्टियों में आम खाने का आनंद,
1: बिल्कुल
2: यानी बचपन याद आ गया, नॉस्टैल्जिया हो गया ना,
1: मतलब आम के बाग में जाकर वो ढेला जो होता था पत्थर कंकड़ उससे फेंका और आम जो टूटता था और उस आम को लेने की पकड़ने की होड़ होती थी, कई लोग झुंड होता था बच्चों का तो वो झुंड दौड़ता था कि हम लेंगे हम लेंगे, और उसमें जो आनंद था वो तो जो इकट्ठा आम मिल जाए और अब जो आम मैंगो शेक बना के पीने का आनंद है या फिर पेटी में जो आम आता है जिसे आप खोलते हैं, वो आनंद कहाँ है।
2: वो जो आनंद था उसकी तुलना ही नहीं हो सकती, भले उसमें पंछी ने भी अगर उसमें थोड़ा सा
1: खास तौर से खा लिया
2: तो भी हम उसे धोखे खा लेते
1: तो
2: थे।
1: कहा जाता है कि तोते ने अगर जूठा किया है तो वो मीठा
2: और भी मीठा
1: होगा और वो देसी आम तरह तरह के आम। तो हम अपने श्रोताओं से जानना चाहते हैं कि वो आम खाने का क्या सुख था वो बचपन वाला, और साथ में किस तरह के आम आपने खाए हैं, कौन कौन सी प्रजाति होती है आम की,
2: आपके क्षेत्र में कौन सी प्रजातियां होती है,
1: लिख भेजे।
2: हाँ, और साथ ही उपयोगी टिप्स, यानी आम खा लिया, बहुत सारा आम खा लिया और व्यायाम नहीं किया तो वजन तो बढ़ ही जाएगा, तो वजन कैसे घटाए इस विषय पर भी हम बातचीत करेंगे। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने इस विषय पर कमेंट्स लिखना शुरू भी कर दिया है, तो आप कितना आम खाते हैं और वजन घटाने के लिए क्या करते हैं, इस बारे में हमें लिखकर
1: विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर टिप्पणी करें और कोई अपना अनुभव भी साझा कर सकते हैं आम खाने से जुड़ा हुआ। और ये जो हमने विषय दिया है बढ़ती उम्र के साथ पीछे छूटता स्नेहिल स्पर्श, कि आज मोबाइल का जमाना है तो वो टाइम ही नहीं है लोगों के पास, पता ही नहीं चलता कि कमरे में बैठा वो कोई रो रहा है, लोग अपने मोबाइल में, अपने कंप्यूटर में, अपने काम में बिजी रहते हैं, बहुत देर बाद पता चलता है। तो ये जो ऐसा कोई अनुभव है, वाक्य है, तो आप जरूर साझा करें। और हम अब साझा करते हैं ये गीत।

0: तो ये गाना हमारी सखियां और सखा सुन रहे थे, और अब आप मोबाइल के स्क्रीन से बाहर लौट आइए, क्योंकि अभी भी तो हम बात कर रहे थे ना मोबाइल के स्क्रीन से बाहर आना, लेकिन अगर आप बाहर आ गई तो
1: हम श्रोताओं के कमेंट्स कैसे
0: पढ़ेंगे, ये बात तो है। तो ठीक है, मोबाइल के स्क्रीन को साथ में रखिए, लेकिन अभी हम पद्मश्री दुलारी देवी के बारे में थोड़ी जानकारी दे दें।
1: जी, मधुबनी जिले के रांटी गांव की रहने वाली दुलारी देवी ने कभी स्कूल की सीढ़ियां तक नहीं चढ़ी। 25 साल पहले उन्हें पद्मश्री अवार्ड के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन आज पूरा देश उन्हें पद्मश्री दुलारी देवी के नाम से जानता है। और ममता जी, इस मुकाम पर पहुंचने के लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। जिस तरह वे अपने कैनवास को अलग अलग रंगों से रंगीन बनाती है, ठीक उसी तरह उन्होंने अपनी मेहनत से अपने जीवन में सफलता के रंग भरे। दुलारी देवी कहती कि मैंने जीवन में बहुत गरीबी देखी है, मुझे पेंटिंग बनाना पसंद और आज इसी के बदौलत उन्हें इज्जत और सम्मान मिल रहा है।
0: और आज जब हम कहीं किसी शॉप में कहीं शॉपिंग करने जाते हैं, कपड़ों की शॉपिंग खासतौर से, तो मधुबनी पेंटिंग ढूंढते हैं कि मधुबनी पेंटिंग वाली डिज़ाइन का कुर्ता हमें मिल जाए, ड्रेस मिल जाए, तो वो पहन लें, और फिर मधुबनी पेंटिंग खरीद कर ले आते हैं, अपनी दीवार को सजाते हैं। तो मधुबनी पेंटिंग कितनी ज़्यादा मशहूर है और कितनी उसकी अहमियत है, तो दुलारी देवी ने मधुबनी में रहते हुए मधुबनी पेंटिंग को बढ़ावा दिया और उसमें आगे बढ़ी, पद्मश्री से सम्मानित हुई। दुलारी देवी की ज़िंदगी की शुरुआत बहुत नीचे तबके से हुई और एक आम लड़की की तरह गरीब परिवार में हुई। उनके परिवार में शिक्षा को लेकर बहुत कम जागरूकता थी और आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी। वो कभी स्कूल नहीं गए इस वजह से। उनका परिवार मजदूरी करके जीवन बिताता था। दुलारी देवी बचपन से ही माँ के साथ काम पर जाती और घर में भाई बहनों की देखभाल करती थी, और उनके पिता मछुआरे थे।
1: देखिए,
0: तो वैवाहिक जीवन में भी बहुत सारी तकलीफें हुई उन्हें, इस कारण दुलारी देवी मायके वापस आ गई थी।
1: और मायके वापस आने के बाद उन्होंने मिथिला पेंटिंग की प्रख्यात कलाकार कर्पूरी देवी और महासुंदरी देवी के यहाँ झाड़ू पोछे का काम करना शुरू कर दिया।
0: जी, कितनी अजीब बात है ना कि कितने छोटे काम करती थी और उसके बाद और कहाँ तक पहुंची।
1: और आगे चलकर यहीं से उन्होंने मधुबनी पेंटिंग बनाना भी सीखा। दुलारी देवी ने तकरीबन 25 साल तक कर्पूरी देवी के घर पर काम किया। दोनों मिथिला आर्ट्स आर्टिस्ट कर्पूरी देवी और महासुंदरी देवी को पेंटिंग बनाते देख दुलारी देवी को भी मैथिली पेंटिंग सीखने की चाहत हुई। और दुलारी देवी को मिथिला पेंटिंग का शौक तो था ही, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे रंग, कागज और कपड़े खरीद पाती। इसी दौरान उनके लगन को देखते हुए कर्पूरी देवी ने उनकी मदद की और पेंटिंग की बारीकियाँ उन्हें सिखाई। और 1983 में प्रख्यात पेंटर गौरी मिश्रा ने महिलाओं को मिथिला पेंटिंग सिखाने और उनके काम को प्रमोट करने के लिए एक संस्था बनाई, और कर्पूरी देवी की मदद से दुलारी देवी को वहाँ पर सीखने का मौका भी मिला।
0: और उनकी पहली पेंटिंग सिर्फ 5 रुपए में बिकी थी। सोचिए, 5 रुपए, आज के ज़माने में उसकी तो कोई कीमत ही नहीं है, उस समय भी इतनी 5 रुपए की बहुत ज़्यादा कीमत नहीं थी। इस संस्था से जुड़ने के बाद उनकी कुछ पेंटिंग बिकने लगी। चूँकि बिहार का मधुबनी ज़िला मिथिला पेंटिंग के लिए पूरे विश्व में मशहूर है, इसलिए कई विदेशी लोग यहाँ के कलाकारों से मिलने और पेंटिंग खरीदने आते रहते हैं। पेंटिंग से जुड़ी अपनी पहली कमाई के बारे में वो बात करते हुए कहती हैं कि जापान से आए कुछ मेहमानों ने उनसे पेंटिंग वाले 7 पोस्टकार्ड्स खरीदे थे और एक कार्ड की कीमत 5 रुपए थी।
1: और जो फॉरेनर होते हैं, विदेशी लोग होते हैं, वो इन कलाओं को बहुत महत्व देते हैं, और स्थानीय लोगों से जब चीज़ें खरीदते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है, और उन्हें पैसा भी मिला होगा उससे। और गौरी मिश्रा की संस्था से जुड़कर उन्होंने 16 साल तक काम किया। वहीं अपने सबसे महंगी पेंटिंग के बारे में बात करते हुए कहती है कि मैंने अपनी एक पेंटिंग 3 लाख रुपये में बेची थी, जिसे बिहार सरकार ने खरीदा था। आज भी वो पेंटिंग पटना के बिहार म्यूजियम में लगी हुई है।
0: क्या बात है।
1: और दुलारी देवी को पढ़ना लिखना भी नहीं आता था, लेकिन कर्पूरी देवी ने उन्हें मधुबनी पेंटिंग के साथ साथ खुद का नाम लिखना भी सिखाया। कला के प्रति अपनी रुचि और मेहनत के दम पर दुलारी देवी ने आगे चलकर कई सारे अवार्ड जीते। और दुलारी देवी के पेंटिंग को इग्नू के लिए मैथिली में तैयार पाठ्यक्रम के होम पेज के लिए भी चुना गया था। कितनी गौरव की बात है।
0: बिल्कुल। और आज भी वो सुबह 4 बजे उठकर पेंटिंग बनाने का काम करती हैं, और कहती हैं कि ब्राह्म मुहूर्त में किया गया काम हमेशा अच्छा होता है, इसलिए वो जल्दी उठकर पेंटिंग बनाती हैं आज भी। साथ ही वो कोशिश करती हैं कि अपनी कला के माध्यम से लोक कथा और संस्कृति से लोगों को जोड़ सकें।
1: और पिछले 8 सालों से वे मिथिला आर्ट आर्ट इंस्टीट्यूट में पेंटिंग सिखाने का काम भी कर रही है। इसके अलावा मिथिला पेंटिंग के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए उन्हें राज्य सरकार से भी मिथिला अस्मिता का सम्मान मिल चुका है
0: और
1: पद्मश्री से नवाजे जाने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने बताया कि जब दाई जी यानी महासुंदरी देवी को पद्मश्री मिला था तब मैंने पहली बार इस विशेष सम्मान के बारे में सुना था। आज अगर मेरी गुरु जीवित होती तो मुझे इस मिले सम्मान को देखकर बेहद खुश होती। तो सचमुच कितनी खुशी होती है ना ऐसी बात सुन के।
0: बिल्कुल, और प्रेरणा की स्रोत है। तो अब एक गाना सुन लेते हैं और फिर बातें करते हैं।

0: सोनाली जी, के गाना हमने सखियों और सखाओं को सुनाया और बात कर रहे थे शुरुआत में स्पर्श की, कि एक जरा से स्पर्श से आपका मन कितना हल्का हो जाता है। कई बार बहुत बड़ा हादसा टल जाता है सिर्फ स्पर्श से। तो पहले जो दादी नानी के आंचल का स्पर्श होता था, वो एक वटवृक्ष की तरह था, कि
1: सचमुच
0: जैसे हम तपती धूप से निकल कर कहीं पेड़ की छाँव में बैठ जाए, इतना सुकून मिलता था माँ और दादी नानी के आंचल तले, है ना। लेकिन अब वो सब खत्म होता जा रहा है, वो जैसे समय ही खत्म हो गया, अब वक्त ही नहीं है। अब परिवार में जितने सदस्य हैं सब लोग वर्किंग होते हैं अमूमन, और फटाफट तैयार होकर बाहर जाने की हड़बड़ी होती है, होड़ होती है, तो कहाँ वक्त रह गया है। लेकिन इसी में, इसी भागदौड़ की जिंदगी में थोड़ा सा समय निकालें, एक साथ परिवार के साथ बैठें, थोड़ा टच थेरेपी का इस्तेमाल करें,
1: और
0: है
1: हम
0: ना।
1: लोग है ना, हम लोग भारतीय, खासकर हम लोग ना बस हाथ जोड़ते, चरण स्पर्श में भी ना हम लोग ऐसे पैर को छूते नहीं है, बस जमीन में ऐसा झुक गए और जमीन में बस ऐसे ही आप घुटने तक ही कर
0: अब तो
1: दिया।
0: घुटने तक,
1: हाँ,
0: हाँ
1: बस
0: बिल्कुल।
1: इतना करते हैं। पर जब हम किसी को छूते हैं ना, तो उसको भी बहुत खुशी मिलती है, और हमें जो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद उस स्पर्श मिलता है, उसकी कोई तुलना ही नहीं है। जैसे स्नेह का सबसे सुंदर जो है ना, स्नेह सबसे सुंदर और सहज रूप होता है स्नेहिल स्पर्श। ये स्पर्श कभी माँ की उंगली पकड़ कर चलने में महसूस होता है, कभी पिता के कंधे पर हाथ रखकर मिली हिम्मत में मिलता है, कभी दादा दादी के आशीर्वाद में, तो कभी मित्रों के आत्मीय आलिंगन में। ये स्पर्श शब्दों से कहीं अधिक प्रभावशाली होता है ममता जी, और इसमें प्रेम की भाषा होती है,
0: बिल्कुल।
1: विश्वास का संदेश होता है और सुरक्षा का आश्वासन होता है।
0: और इन स्पर्श में ऐसी जादुई शक्ति होती है जो मन की व्याकुलता को शांत कर देती है। बच्चा या बड़े शायद उन शब्दों को भूल जाएं जो उन्हें सुनाए गए थे, लेकिन प्रेम से भरा वो स्पर्श जीवन भर उनकी स्मृतियों में अंकित होता है। वो स्पर्श दो दोस्तों का भी होता है, माता पिता का होता है, पति पत्नी का होता है, भाई बहन का होता है, कि आप जब गले लग जाते हैं तो जैसे प्रेम की धारा प्रस्फुटित हो जाती है। हमारे एक श्रोता ने लिखा भी है कि जब कोई माँ अपने बच्चे के चेहरे पर हाथ रखती है तो बच्चा खुद ब खुद रोता हुआ शांत हो जाता है। जब कोई प्रियजन के कंधे पर हाथ रखता है तो उसे मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यही है स्पर्श की शक्ति, और इसी सिद्धांत पर आधारित है स्पर्श चिकित्सा यानी टच थेरेपी। और ये प्राचीन भारतीय वैदिक परंपरा का हिस्सा रही है। आज विज्ञान में भी ये बात मानी जा रही है कि स्पर्श से मानव शरीर में ऊर्जा प्रवाहित होती है, और वो केवल मानसिक और शारीरिक पोषण से भी राहत दे सकती है। सोनाली, आप ये देखिए ना कि जब कोई कहीं जब घर छोड़ता है, बाहर जा रहा होता है, तो आप क्या करते हैं, गले लगते हैं, तो उसका क्या मतलब है कि आप प्रेम का इजहार कर रहे हैं, और वो जो अंतिम मुलाकात होती है
1: जी
0: एक दूसरे से बिछड़ने की, वो आपके जहन में बस जाती है, या आप हाथ पकड़ के सिर पर हाथ रख देते हैं। जैसे कोई दुखद घटना घटित हो जाती है तो कहीं जाते हैं और उसके पीठ थपथपा देते हैं, या बच्चे को पीठ थपथपा के कह देते हैं कि देखो तुम तो विजेता होकर लौटोगे। तो ये बातें याद रह जाती हैं, और इसमें बहुत शक्ति होती है।
1: पर समय के साथ साथ ये सब हम चीज़ें भूलने भी लग गए। एक हमारे साथी ने लिखा है, ममता जी, बढ़ती उम्र में भी एक आत्मीय मुस्कान, कंधे पर रखा विश्वास भरा हाथ या हालचाल पूछने वाला अपनापन मन को नई ऊर्जा दे जाता है। इसलिए जीवन की व्यस्तताओं के बीच हमें अपने प्रियजनों के लिए समय निकालना चाहिए, क्योंकि स्नेहिल स्पर्श केवल शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी सुकून देता है।
0: बिल्कुल सही बात है। जो परिवार कभी एक साथ बैठकर सभी भोजन किया करते थे, अलग-अलग शहरों और देशों में अब बट गया है। दूरी केवल भौगोलिक नहीं होती, वो भावनात्मक भी होने लगी है। फोन और वीडियो कॉल से बातचीत तो हो जाती है, लेकिन माँ के हाथों की वो जो ममता, पिता के कंधे का वो जो सहारा, और अपनों की निकटता का वो अनुभव कहीं ना कहीं पीछे छूटता जा रहा। वो थकान थक के लौटे स्कूल कॉलेज से तो माँ के कंधे पे सिर टिका लिया, भाई से भाई के गले लग गए, तो जैसे थकान कहीं दूर हो
1: छूमंतर हो
0: जाती
1: जाती
0: है।
1: थी, है ना।
0: लेकिन अब वो समय कहाँ है, और अब समय एक
1: गीत
0: गाना
1: सुने
0: सुनवाने का।
1: सुनते हैं गीत।

0: सारा प्यार तुम्हारा मैंने बांध लिया है आंचल में। सचमुच प्यार आंचल में बांधा जा सकता है क्या?
1: सचमुच उसे
0: स्पर्श के माध्यम से
1: उसे समेट कर रखा जा सकता है और बहुत दिनों तक सहेज कर भी रखा जा सकता है। ममता जी, हमारे
0: बीबर ने लिखा था ये गाना और आशा भोसले किशोर कुमार की आवाज से, आनंद आश्रम फिल्म का गीत था।
1: और एक हमारे

0: दोस्तों विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली और श्रोताओं की बहुत सारी टिप्पणियां सोनाली जी यहां आ चुकी हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर। देखिए एक श्रोता ने लिखा है कि बढ़ती उम्र में भी एक आत्मीय मुस्कान, कंधे पर रखा विश्वास भरा हाथ या हालचाल पूछने वाला अपनापन मन को नई ऊर्जा दे देता है। इसलिए जीवन की व्यस्तताओं के बीच हमें अपने प्रियजनों के लिए समय निकालना चाहिए क्योंकि स्नेहिल स्पर्श केवल शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी सुकून देता है।
1: एक सखी ने लिखा है कि दुनिया भर में माँ अमृतानंदमय इसलिए मशहूर है कि वे अपने से मिलने वालों को गले लगाती है। डॉक्टर इसे स्पर्श थेरेपी कहते हैं। बच्चे हो या बुजुर्ग, जरा सा स्नेह स्पर्श उनके मन की जिजीविषा को दोगुना कर एक नई ऊर्जा से भर देता है। मौका खुशी का हो या दुख का, दिल से किया हुआ आपका प्रेमिल स्पर्श किसी चमत्कार से कम न होगा। अगर आपस के कुछ मतभेद होंगे तो वे भी सुधरेंगे और रिश्तों में मजबूती देने का सुखद और सकारात्मक माहौल बनेगा।
0: और एक कह रहे हैं कि ये विषय आधुनिक समाज में बुजुर्गों के अकेलेपन, बिखरते संयुक्त परिवारों और मानवीय संवेदनाओं में आ रही कमी को दर्शाता है। स्नेहिल स्पर्श केवल शारीरिक स्पर्श नहीं बल्कि ये अपनों का प्यार, सम्मान, परवाह और मानसिक संबल है। समस्या का मूल मानव जीवन में बचपन और जवानी जिस चकाचौंध और सामाजिक सक्रियता में बीतती है, बुढ़ापे

एक हमारे साथी ने लिखा है कि बढ़ती उम्र के साथ पीछे छूटता स्नेहिल स्पर्श। हाँ, मुझे भी ऐसा कभी कभी महसूस होता है कि जब हमारे बच्चे छोटे छोटे होते तो हम हर पल उन्हें प्यार दुलार देते थे, उनके सुबह उठने से लेकर रात के बुलाने तक। लेकिन बड़े होने पर हम उस तरह से देखभाल नहीं कर सकते क्योंकि वे कुछ काम अपने हाथों से करने लगते हैं, परंतु प्यार तो हम आज भी बचपन जैसा ही करते हैं पर जताते नहीं हैं।

0: सास बहू के बीच एक दीवार खड़ी है, ननद भाभी के बीच, भाई बहन के बीच एक दीवार खड़ी है, तो बच्चे भी वही सीखते हैं, फिर बच्चे भी वो नहीं कर पाते हैं जो आप उम्मीद करते हैं जिसकी।
1: और एक साथी ने लिखा है कि जब कोई माँ अपने बच्चे के चेहरे पर हाथ रखती है तो बच्चा खुद ब खुद शांत हो जाता है, जब कोई प्रियजन के कंधे पर हाथ रखता है तो उसे मन पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। यही है स्पर्श की शक्ति और इसी सिद्धांत पर आधारित है स्पर्श चिकित्सा। स्पर्श चिकित्सा यानी टच थेरेपी कोई आधुनिक आविष्कार नहीं बल्कि प्राचीन भारतीय और वैदिक परम्परा का हिस्सा रही है। आज विज्ञान भी यही बात मानी जा रही है कि स्पर्श से मानव जीवन में ऊर्जा प्रवाहित होती है, ये केवल मानसिक और शारीरिक पोषण से भी राहत दे सकती है। स्पर्श थेरेपी का जादू इस बात का प्रमाण है कि प्रकृति ने हमारे हाथों में ही इलाज की शक्ति दी है। व्यस्त दिनचर्या में अपनों को गले लगाना या छोटी सी मालिश देना आपके जीवन को सेहतमंद और खुशहाल बना सकता है।
0: क्या बात है, बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी है। अमूमन क्या होता है कि कुछ व्यस्तता के कारण, कुछ आप कुछ टकराव के और कुछ ईगो के कारण भी हम छोड़ते हैं। घर में जब कई बार तकरार होती है, जहाँ पे 10-4 बर्तन होते हैं तो खटखट की आवाज होती है, टकराहट होती है, तो ऐसे रिश्तों में भी टकराव होते हैं। तो आजकल क्या होता है कि सबके सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट ईगो का रूप ले लेता है, अहम का, तो वहाँ पे टकराव ज़्यादा होते हैं। अहम छोड़कर अगर एक स्पर्श से कह दिया जाए कि हाँ छोड़ो, जाने दो, हो गया, जो बीत गई सो बात गई, तो बस इतने में झगड़ा खत्म हो जाता है। लेकिन 2-3 लोग जब घर में होते हैं तो अपने अपने ईगो को लेके बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि अरे हाथ बढ़ाते हैं, हमने तो अभी फिल्मों में ये सीन भी दिखाया जाता है कि हाथ बढ़ रहे और फिर पीछे ले लिया। तो ऐसे ही घरों में भी होता है कि आपका मन करता है कि हम जाए अपने बच्चे को गले लगाए, लेकिन अरे उसने तो पलट के जवाब दे दिया, नहीं हम नहीं जाएंगे,
1: हम नहीं बोलेंगे, तो वो पहले शुरुआत करें, हम क्यों करें।
0: तो ऐसे में टकराव और बढ़ता है और दूरी और बढ़ती जाती है।
1: एक साथी ने लिखा है ममता जी कि मेरे विचार से माता पिता को अपने बच्चों को स्नेहिल स्पर्श से वंचित नहीं रखना चाहिए। हम अभी भी अपने बेटे बेटियों को उनके किसी भी अचीवमेंट पर स्नेहिल स्पर्श भी करते हैं और प्यार की झप्पी भी देते हैं, चाहे बेटे अभी पढ़ रहे हैं, बेटियां जॉब में हैं। हाँ, मेरे से ज्यादा मेरी धर्मपत्नी इस मामले में 2 कदम आगे हैं।
0: क्या बात है भाई,
1: महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं।
0: जी, तो वैसे भी ये कहा जाता है महिलाओं के हिस्से में, ये जोड़ दिया जाता है कि सहनशीलता आपके हिस्से में है, सहनशील बनो, तो ये दोनों तरफ होना चाहिए। अब जमाना बदल चुका है कि अब सिर्फ सहनशील महिलाओं के हिस्से में नहीं, पुरुषों को भी उतना ही सहनशील होना चाहिए।
1: और जैसे आपने कहा ईगो की बात है, तो उस ईगो को झाड़ दीजिए, जैसे हम घर में झाड़ू लगाते हैं वैसे ही हमारे ऊपर से झाड़ू फेरा के उस ईगो को फेंक दीजिए, क्योंकि रिश्ते जो होते हैं ना उसकी मिठास ही कुछ और होती है और अपने अपने ही होते हैं, बस ये अहंकार को हमें आड़े नहीं आने देना चाहिए।
0: बिल्कुल, और अपने रिश्तों को छोड़कर कई बार बाहर प्यार जब तलाशा जाने लगता है तो स्थिति और बिगड़ जाती है। तो इसलिए ये जो स्पर्श वाली चिकित्सा है इसको मेंटेन रखें। एक श्रोता ने एक अनुभव साझा किया है, लिखा है कि वैसे स्पर्श बहुत फायदेमंद होता है, खासकर बुजुर्गों की सेवा और बच्चों, जानवर वगैरह। एक बार पिताजी की बुरी हालत थी, उनकी निरंतर सेवा कर स्पर्श ध्यान द्वारा भी जल्दी ठीक हो गए थे। और अन्य ध्यान आप करते हैं जिसमें जिससे मन शांत होता है, ये स्पर्श के बहुत अच्छा होता है। स्पर्श से बच्चों का दिमाग और उनका स्पर्श हमेशा फायदेमंद होता है। मतलब ये कहना चाहते हैं बच्चों के साथ अगर आप उन्हें टच करके छू कर बात करते हैं तो ये बहुत फायदेमंद होता है। हालांकि ये बीच में एक दौर आया था जहाँ पर एक दूरी मेंटेन कर दी गई थी, वो था कोरोना समय कि छूना नहीं है, कितनी विपरीत और विषम स्थिति थी। तो ये घर में तो ठीक है अपनों को छू कर बात करना अच्छी बात है, लेकिन कई लोगों की आदत इतनी ज़्यादा होती है टच करके बात करने की कि बाहर अजनबियों से टच करके बात करते हैं, तो वहाँ पे हालत स्थिति बिगड़ भी सकती है, इसका भी ध्यान रखें आप।
1: बस हमें संतुलन बनाए रखना है उस स्पर्श में भी कि कहाँ ज़रूरी है और कहाँ नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: कहाँ हद से ज़्यादा नहीं आगे बढ़ना है और कहाँ हमें गले,
0: खासतौर से अगर कोई लड़की चली जा रही है और कोई लड़का आकर उसे छू कर बात करे कि हाँ एक्सक्यूज़ मी मुझे कुछ कहना, तो निश्चित रूप से थप्पड़ पड़ जाएगा। और इस समय अब गाना सुनवा दे,
1: सुनते हैं गीत।

0: तो सोनाली जी, मुझे लगा कि आम खाने की तैयारी में लग गई आप।
1: आम अभी पढ़ना है ममता जी,
0: आम आम बहुत खास है कहने
1: आम
0: को,
1: आज
0: आम
1: खास हो गए।
0: बिल्कुल, क्योंकि आम जब आम की बाहर आती है गर्मी के मौसम में तो खास हो जाता है। फिर सबसे पहला सवाल ये होता है कि आम है कि नहीं खाने में।
1: हाँ।
0: फिर नाश्ते में, खाने में, दोनों टाइम, मतलब लंच डिनर सब जगह आम शामिल हो जाता है। और उसको कभी आम का रस बना के पूड़ी के साथ, और आम का रस पराठे के साथ, मैंगो शेक बना के कभी काट के। तो आप बताइए, आप को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मतलब
1: तो,
0: काट के?
1: मुझे तो वैसे ही पसंद है ममता जी, बस मैं काट के खाना ज्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि ना जो आम रस होता है ना वो थोड़ा पचने में भारी होता है, क्योंकि हमने उसे बनाया फिर ऐसा लगा कि अरे ये तो थोड़ा सा फीका लग रहा है, उसमें थोड़ी सी शक्कर डाल दो। फिर माँ बोलेगी कि भाई वो थोड़ा गरिष्ठ होता है, उसमें थोड़ा दूध डाल दो, उसमें इलायची डाल दो, ऐसे करते करते करते थोड़ी बादाम की कतरन डाल दो, ऐसे करते करते वो थोड़ा भारी हो जाता है। और फिर है ना खाने में तो बहुत अच्छा लगता है, एक कटोरी से समाधान नहीं होता, ऐसा लगे और थोड़ा सा ले ले। फिर खाने में दूसरे भी आइटम होते हैं, सब्जी भी है, दाल चावल है, रोटी है, और भी है, सलाद है, पापड़ है, फिर वो बहुत भारी हो जाता है। तो मैंने अभी शुरू कर दिया है कि बस दो तीन फाक खा लो,
0: बस।
1: हाँ
0: मतलब एक आम जैसे तैसे,
1: हाँ,
0: उससे ज्यादा नहीं खाना
1: और
0: है।
1: फिर अगर
0: तो
1: जब
0: ये
1: आम जी भर के खाना है तो फिर थोड़ा सा खाने को कम कर दो, कि जैसे रात में थोड़ा सा हल्का सा कुछ लिया, और उसके साथ में फिर अगर मैंगो शेक लिया है या फिर घर में बनी हुई मैंगो की आइसक्रीम ली है, तो फिर हम इस तरह से अगर करें ना तो फिर आम का भी आनंद ले सकते हैं और हमारी सेहत का भी ध्यान।
0: अच्छा, तो मतलब सत्तू

0: पराठे के साथ और पूरी के साथ आम का रस नहीं खा सकते?
1: खा सकते हैं ना, बिल्कुल हाँ, खा सकते हैं।
0: लेकिन हमारे बहुत सारे श्रोता हैं जो इनके शौकीन होंगे हाँ। क्योंकि अमूमन ये कहा जाता है अरे क्या बना है, आम का रस और पूरी तो ये तो बहुत, और साथ में आलू की भुजिया
1: हाँ।
0: तो हमारे श्रोता बता सकते हैं कि कौन कौन लोग अभी इन दिनों में कितनी बार आम का रस पूरी खा चुके हैं,
1: और लोग बुलाते भी हैं चलो हमारे घर आज आम रस पूरी का आयोजन है तो आप आइए खाने के लिए, उसके साथ में सूखी आलू की सब्जी भी रख देते हैं, बहुत बहुत आनंद आता है सब खाने में।
0: हमारे कौन से श्रोता हैं जिन्होंने बाग में जाकर आम तोड़कर खाया है, और कौन कौन से आम? हमारे कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि हमने तो ये देसी आम बहुत सारे खाए हैं, और तोता परी एक ने लिखा है चौसा लंगड़ा ये आम हमने खाए हैं, और एक श्रोता ने लिखा है कि हमने तो रत्नागिरी आम खाया है बहुत सारा। इधर महाराष्ट्र में और कोंकण साइड में खासतौर से ये अल्फांजो जो आम होता है, हापुस आम, ये बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन जो लोग लंगड़ा और चौसा खा चुके हैं उन्हें इनमें स्वाद नहीं आता है। उनको तो फिर लंगड़ा आम तो ऐसे है कि कच्चा आम भी आपको मीठा ही लगता
1: है, बहुत अच्छा लगता है वो आम,
0: तो उसमें जो
1: भी बहुत अच्छा लगता है
0: हाँ, तो उसमें जो शक्कर मिलाने वाली बात है ना, जरूरत नहीं,
1: जरूरत ही नहीं है उसमें। और वो तो हम लोग ना बारिश होती है ना उसके बाद भी खाते हैं, यानी रक्षाबंधन आता तब तक वो आम आता है।
0: अभी लेकिन महाराष्ट्र में मुंबई में खासतौर से केसर आम
1: हाँ
0: बहुत मीठा आ रहा,
1: केसर आम है, फिर उसके बाद में जो बैगन फल्ली आम जो आता है वो जो साउथ का आम है वो भी खाते हैं। एक हमारे साथी ने लिखा है ममता जी हमारी तो गर्मियों की छुट्टियां नहीं होती तो क्या हम आम खाने का आनंद ना उठाएं? वैसे तो आम खाने का आनंद उठाएंगे, आम का नाम सुनते ही हरे पीले रसीले आम आंखों के आगे घूमने लगते हैं, मार्केट जाओ तो हर तरफ आम ही आम दिखते हैं, घर घर में आम के चर्चे, किसने कितने बॉक्स आम के मंगवाया। पर मेरा तो कुछ खास ही अनुभव रहता है, घर का बगीचा है, आम का पेड़ है, सच मानिए एक आम का पेड़ ही कितने सारे आम दे देता है कि आपने जान पहचान के लोगों को खिलाने के बाद भी काफ़ी सारा आम रह जाता है, बिल्कुल शुद्ध बिना रसायन वाला आम, आम के अचार बनाए, आम रस बनाए, मिल्क शेक, आम लस्सी, स्मूदी, सब कुछ, और गर्मियों का आनंद आम के साथ ले रही हूँ।
0: बिल्कुल, और यहाँ आम के बगीचे से याद आया कि हमने भी बचपन में आम का बगीचा, बड़े बड़े बाग देखे हैं और वहाँ पेड़ से तोड़कर आम खाए हैं और गिरे हुए आम बटोरे हैं, भले खाए नहीं लेकिन वो अजीब सा शौक होता था। तो वो जो पिता और दादा के लगाए हुए बाग हैं उनको बढ़ाने के लिए, पीढ़ी दर पीढ़ी चलाने के लिए आपको नए नए आम के पेड़ भी लगाना चाहिए, वो चाहे कलमी आम हो, लंगड़ा, चौसा या रत्नागिरी, जो भी आम लगाया जाता है वो सीख कर आपको आम के पेड़ जरूर लगाने चाहिए। और बड़ा आसान होता है, कई कई कुछ आम तो गुठलियों से ही
1: अपने आप
0: पनप जाते हैं, उग जाते हैं, जैसे यहाँ विविध भारती के परिसर में भी हमने कुछ गुठलियों से आम लगाए हैं और वो बड़ा पेड़ हो गया, तो हमें देख कर बड़ा अच्छा लगता है। एक श्रोता ने लिखा है कि गर्मियों में आम खाने का आनंद, आहा बस पूछिए मत, एक दो हो तो कुछ बात भी बने मगर इतनी वैरायटी के आम की पूछो मत, जहाँ गए वहीं खा लिया, यदि नहीं गए तो अपना लंगड़ा आम तो है ही है, फिर दशहरी का क्या कहना। हाँ

0: पर
1: उसमें
0: अब एक आम भी खाया तो भारीपन लगता है ना,
1: और उसमें केमिकल नहीं होता था, कोई भी
0: केमिकल नहीं,
1: कोई दवा मिला के नहीं, वो सीधे देसी आम।
0: खेलते कितने थे ममता जी हम उस वक्त, खेलने चले गए दिन भर वो बाल्टी में भिगोए हुए आम, आते जाते 20 भी खा लिए 25 भी खा लिए तो पता नहीं चलता था, अभी तो एक आम खाते खाते परेशान हो जाते। एक हमारे साथी ने लिखा ममता जी की, गर्मियों की चिलचिलाते धूप में जब फ्रिज से निकला हुआ ठंडा ठंडा आम खाने को मिलता है तो मन और तन दोनों तृप्त हो जाते हैं। पारिवारिक जुड़ाव, आम खाने का असली मजा अकेले नहीं बल्कि परिवार के साथ बैठकर हाथ सरो सरो कर आम निकाल कर खाना और रस निकालना, परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है। और बहुत सारी किस्में हैं भारत में आम की, जैसे दशहरी, लंगड़ा, चौसा, हाफुस, केसर, हर किसी को पसंद होते हैं। और इसके व्यंजन भी जैसे आमरस है, मैंगो शेक है, आइसक्रीम और अचार भी थालियों की शान बढ़ाते हैं।
1: और एक श्रोता ने लिखा है कि जब हम गांव जाते थे तो पेड़ से आम टूट के आते थे तो पहले उसे अनाज की भूसी में रखा जाता था, जब पक जाते थे तो उसे निकाला जाता था और बड़ी बड़ी बाल्टी में मिट्टी के नाद में उसे पानी में डाल दिया जाता था और फिर उसे बाल्टी में ही रख कर खाते थे। तब होड़ लगता था कि किसके सामने गुठलियों की ढेर ज्यादा होती है। इन गर्मियों में आम के चलते हमें बचपन में फोड़े फुंसी आम के रस से चेहरे पर भी कई तरह के दाग निशान हो जाते थे
0: और आम का यहाँ पे
1: और आम का पना भी बनता था। और साथ में गांव में तो आम के आम को भून कर आग में उसका रस निकाल कर उससे बाल भी धोए जाते थे। तो ये कितने तरह के आम के कितने तरह के गुण, और आम के अचार की तो बात ही निराली है।
0: और आम की जो रोटी भी बनाते थे वो आम का रस बच गया तो उसको थाली में थोड़ा सा
1: आम पापड़,
0: लगा के, आम पापड़ उसमें डाल के और उसको सूखा दिया, वो साल भर खाते थे।
1: अमावट भी कहा जाता है जिसे तो। और बोलिए,
0: एक साथी ने लिखा है कि भाई आम जो है सब साथ में बैठकर खाते हैं और आम बैगन फली खाएं, परिवार के साथ बैठकर खाएं, आम खाने का मजा ना अलग होता है। सब बैठकर आम के छिलकों को चूसने लगते हैं, आम की तारीफें कहना और क्या कहना, तुमने उसको ज़्यादा आम दे दिया, मुझे नहीं दिया, इसका तो मज़ा ही कुछ अलग होता था। आज भी आता है, आज आम का जो स्वाद होता है ना, मैं कहूँगी सारे दिन की थकान मिटाने में सक्षम होता है। इसलिए गर्मी में आम नहीं खाया तो क्या खाया, और वो भी परिवार के साथ कर बैठकर खाया तो उसका आनंद दुगना हो गया।
1: और एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन की गर्मी की छुट्टियों की बात याद आती है तो सबसे पहले नानी का गाँव याद आता है। नानी के गाँव के उन देसी आमों की बात ही कुछ और थी। बाजार में मिलने वाले हाइब्रिड या बड़े बड़े आमों में वो स्वाद कहाँ जो उन छोटे रेशेदार आमों में होता था। तो अब क्या इरादा है,
0: आप एक गीत सुन ले,
1: सुनते हैं।

वजन कैसे कम करना है इस बारे में हमारे एक साथी लिखते हैं कि मैं सुबह 5 बजे विविध भारती पर जागो, सुबह हो गई सुनते प्राणायाम व्यायाम कर लेता हूँ, फिर हमें राही प्यार के तक दोपहर तक बाजार बैंक से जुड़े काम निपटा लेता हूँ, सखी सहनी सुनने के बाद आराम कर लेता हूँ, शाम को इवनिंग वॉक करने जाता हूँ जिसके कारण दोपहर का खाना भी आसानी से पच जाता है, और जब आपका पेट साफ सुथरा रहेगा तो कोई बीमारी नहीं आएगी, चलने के कारण आपके हाथ पैर में दर्द भी शिकायत नहीं होगी, ये मेरा निजी अनुभव है। वही एक साथी कहते कि मैं और मेरी श्रीमती सुबह 4 बजे योग, शाम 6 बजे 5 किलोमीटर जाकर वापस घर

0: कर देते हैं, वो खाना बंद कर देते हैं और उसके बाद में अचानक से खाना शुरू कर देते हैं, उससे भी हमारा वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। साथ ही तनाव कम करें, जो लोग तनाव लेते हैं तो उन्हें भी उनका भी वज़न बढ़ता है। और मीठे और जंक फूड पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है, पिज़्ज़ा, बर्गर, चिप्स, केक और मिठाइयों में कैलोरी ज़्यादा होती है, तो पूरी तरह से छोड़ना ज़रूरी नहीं लेकिन इसे सीमित मात्रा में लेना चाहिए और घर के बने भोजन को, पौष्टिक भोजन को हमें प्राथमिकता देना चाहिए।
1: मतलब आम के रस में शक्कर नहीं मिलाना चाहिए, आपने जैसे बताया था।
0: हाँ, आम के रस में शक्कर बिल्कुल नहीं मिलाना
1: बिल्कुल
0: है,
1: मीठी चीज में शक्कर मिला के ना खाएं।
0: अब कुछ लोग चाय में भी इतनी सारी शक्कर डाल के पीते हैं, तो जहाँ तक हो सके अगर मिठाई खाना है तो चाय फीकी पी सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: वही हमारे एक साथी ने भी लिखा है कि ये जो वजन घटाने की गति तेज करने के लिए सप्ताह में कम से कम 150 मिनट मध्यम स्तर पर कार्डियो, जैसे तेज चलना, दौड़ना, साइकिल चलाना, मांसपेशियों के निर्माण के लिए कार्डियो के साथ वेट ट्रेनिंग या रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करने से भी शरीर का मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिससे आराम करते समय कैलोरी बर्न होती है।
1: और साथ में पानी ज़्यादा पीते रहना चाहिए, ये जो गर्मी का मौसम है इसमें तो खास ख्याल रखना चाहिए। और हमें अभी ख्याल रखना चाहिए कि एक गाना सुनवा दें, प्रोग्राम का आखिरी गाना।

0: छोटी बहन फिल्म का ये गाना था, लता मंगेशकर और सुबीर सेन की आवाजें थी। और अब सोनाली जी घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल वक्त नहीं कि हम कुछ बोले बतियाएं या गाना सुनवाएं, तो लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और सोनाली पाठक का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: श्रोताओ, अभी आप बीत भारतीय कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी के हाफलोंग केंद्र है। आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।
1: आकाशवाणी दिल्ली का
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार किया। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा कि वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं। उन्होंने बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था। श्री टंडन ने कहा कि ऊर्जा के अलावा खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने भारत वेनेजुएला संबंधों को और मजबूत बनाने तथा विकासशील देशों के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। वेनेजुएला की राष्ट्रपति सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची थीं। उनके साथ विदेशी मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यविट कूपर भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगी। वे 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उनकी यात्रा से भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूती मिलेगी। उत्तर पूर्वी परिषद का 73वां पूर्ण सत्र मेघालय के शिलांग में चल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। सत्र में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जा रही है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने कहा कि इन विचार विमर्शों से राज्यों और हितधारकों के बीच समन्वित कार्रवाई को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है ताकि साझा विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बैठक की जानकारी दी।
3: ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है नॉर्थ ईस्ट के लिए। इसके द्वारा है बहुत सारे स्कीम के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर डिसाइड होता है। और 2014 के बाद तो नॉर्थ ईस्ट का जो भी फंड है, डेवलपमेंट फंड है, इसके द्वारा बहुत सारे योजना शुरू हो चुका है, काम हो रहा है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। गुजरात पुलिस ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन डेल्टा हंट की शुरुआत की है। इसके तहत पिछले 24 घंटों में गुजरात में अवैध रूप से रह रहे 424 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 782 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ जारी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मालवीय नगर अग्निकांड के घायलों से मिलने आज साकेत के निजी अस्पताल पहुंची। मुख्यमंत्री ने घायलों तथा उनके परिजनों से बातचीत की और अधिकारियों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। श्रीमती गुप्ता ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 10-10 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मृत्यु हो गई थी। मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक शामिल हैं। वयोवृद्ध निर्माता और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहरानी का आज मुंबई में निधन हो गया। वे 76 वर्ष के थे। मौसम विभाग ने

0: आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन की पुष्टि की है। मॉनसून 3 दिन की देरी से आया है। विभाग ने 9 जून तक केरलम और माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 4 दिन के दौरान उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में भी तेज वर्षा हो सकती है। दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर आंधी आने की प्रबल संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कुछ स्थानों पर आज तेज हवा के साथ हल्की वर्षा हुई। भारत सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। गोवा के मडगांव में कल भारत ने सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराया। भारतीय टीम 6 साल बाद सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची है। फाइनल शनिवार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा, जिसमें भारतीय टीम और मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: श्रोताओ, अभी आप हिंदी में समाचार सुन रहे थे। ये आकाशवाणी के हाफलोंग केंद्र है। आइए पुनः ले चलते हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र और सुनते हैं विद भारती के कार्यक्रम।

0: हेलो, फरमाइश।
1: राकेश यादव बोल रहा हूँ, सासनी के टलीगढ़ से।
0: राकेश जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया, ठीक है।
0: क्या काम करते हैं?
1: दुकान करते हैं मोबाइल के। टाइम बहुत सुनता हूँ मैं, काफी दिनों से सुन रहा हूँ। जब हमारे जब ऐसा वो रेडियो था
0: जी,
1: बहुत काफी समय पहले से रेडियो भारती सुन रहे हैं।
0: अच्छा, बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है।
1: आशा पिक्चर का ही गाना सुनना चाहते हैं, शीशा हो या दिलो आखिर टूट जाता है।
0: क्या बात है, सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो नमस्ते सर, जगदीश चौहान पेंटर मुखर्जी नगर इंदौर से बोल रहा हूँ सर।
0: जी जी जगदीश जी, कैसे हैं?
1: बस बढ़िया सर।
0: बताइए आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: मुझे वो सुमन कल्याणपुर जी और मुकेश जी की आवाज में मेरा प्यार भी तू है, बहार भी तू है, रूही नजारों में।
0: साथी फिल्म का गाना मजरू सुल्तानपुरी के बोल नौशाद की तर्ज। सुमन जी हमारे बीच जी नहीं रही और एक तरह से आप इस गाने के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं।
1: जी सर
0: जी, चलिए सुनते हैं ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ नमस्ते सर,
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: हम अपने एमपी सागर से विक्रम सिंह और पुचाली राजा।
0: विक्रम सिंह, सागर में कौन से इलाके से बोल रहे?
1: सागर इलाके में तहसील बंडा, हमारा ग्राम छोटा सा गांव पड़ता है क्वायला।
0: बंडा तो समझ में आ गया हो, पर गांव का नाम समझ में नहीं आओ।
1: क्वायला क्वायला।
0: अच्छा बताओ क्या कर रहे हैं आज?
1: अब बैठे हैं सर, छोटी सी किराने की दुकान है भी।
0: अच्छा, और गर्मी अर्मी कैसी पड़ रही?
1: गर्मी तो सर बहुत है अभी, अब तो थोड़ी राहत मिल चुकी है।
0: काय बारिश हो गई का?
1: जी बारिश हो गई 2 दिन तक में।
0: अच्छा कितनी बारिश हुई, बहुत सारी हुई या थोड़ी सी हुई?
1: थोड़ी सी हुई है सर, ज्यादा तो नहीं भाई है।
0: हाँ।
1: हाँ।
0: अभी तो 9 तपा चल रहे, ये खत्म हो गए।
1: जी सर बिल्कुल, 3 दिन बाकी हो सर, को
0: तनक बाकी है, 3 दिन बाद तो फिर बारिश आ जाए है, फिर मौज हो जाए है। काय
1: जी सर।
0: अच्छा कौन सा गाना सुनने हैं ये बताओ।
1: हमको सुना है पगला कहीं का।
0: है पगला कहीं का? को है पगला?
1: पगला कहीं का फिल्म का नाम है, फिल्म का नाम है पगला कहीं का, और बोल है वो मन्ना डे की आवाज में है, मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा।
0: ए दद्दारे, किसी ने किसी की भैंस को डंडा मार दो का? का होगा हमें तो बताओ।
1: जी आपसे बात करके
0: मजा आ गया, हमसे बात करके हमेशा ही मजा आ गया आपसे बात करके।
1: आनंद आया सर,
0: सच्ची हमें भी बहुत ही आनंद आ गया। हमें जितने भी अपने श्रोता हरण है ना, सबसे बात करके बहुत ही मजा आता है।
1: जी आपका बिल्कुल सर, बुंदेलखंड जैसा बटका है बिल्कुल आपका।
0: बुंदेलखंडी आए अपन शुद्ध वाले। हाओ तो चलो बातों का सिलसिला कर रहे खत्म, और आपको सुना रहे आपकी फरमाइश को जे गाना।
2: क्यों मारा? क्यों मारा? क्यों मारा? क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों

हर घर का ये स्टेशन है और झंडी प्यारी प्यारी है। हर घर का ये स्टेशन है और झंडी प्यारी प्यारी है। हम सब तो

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो,
0: हाँ जी, कौन?
1: मैं ज्योति प्रजापति बोल रही हूँ।
0: ज्योति जी, कहाँ से बोल रही हैं आप?
1: पीतमपुर जिला धार मध्य प्रदेश से।
0: अच्छा, बताइए क्या हाल चाल है पीतमपुर के?
1: जी बढ़िया है, गर्मी पड़ रही है।
0: गर्मी पड़ रही है, सब जगह गर्मी पड़ रही है और बहुत जोरदार पड़ रही है कि नहीं?
1: जी
0: अब
1: बहुत ज्यादा।
0: हमें ये बताइए कि इस साल गर्मी से बचने के क्या उपाय किए आपने?
1: गर्मी के से बचने के लिए बाहर जाए तो तावील लेके जाए, छाता लेके जाए, पानी
0: हाँ,
1: अपने साथ लेके जाए,
0: बहुत सही,
1: और
0: बिल्कुल
1: ज्यादा से ज्यादा धूप में कहीं ना निकले। गाना
0: सही बात है। अच्छा बताइए, आज किस गाने की फरमाइश है?
1: फिल्म का नाम है सूरज, तुमसे इतना प्यार है।
0: क्या बात है, चलिए बातें करते हैं पूरी और आपको सुनवाते हैं।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार।
0: अच्छा बताइए कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: अनिल नाइक बोरोली मुंबई से बात कर रहा हूँ।
0: जी बोलिए बोलिए, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया हूँ।
0: क्या सुनना चाहते हैं आज?
1: पैसा फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं। पैसा
0: गाने के बोल बताइए।
1: जिन्हें नाज है इन लोग पर वो कहाँ है।
0: क्या बात है, साहिर लुधियानवी के बोल, शानदार गाना, SD बर्मन का संगीत। जी कुछ कहना चाहते हैं इस गाने के बारे में?
1: बहुत बढ़िया गाना है
0: जी।
1: कितना भी सुने तो मन भरता नहीं है।
0: बिल्कुल, कितना भी सुने इस गाने को मन नहीं भरता।
1: और मोहम्मद रफी की आवाज में तो क्या गर्व था।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया इस गाने की फरमाइश के लिए। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश जी, कौन बोल रहे हैं?
1: जी सर, मैं दुलगोविंद मिश्रा उड़ीसा से, डिस्ट्रिक्ट झारसुगड़ा। हमारा गांव का नाम सुल्हाई है।
0: अच्छा, बताइए कैसे हैं आप?
1: जी सर, बहुत बढ़िया है। एक साल के बाद आपसे बात हो रहा है। मैंने डेली हर सोमवार को हम फोन लगाता है, लेकिन आपका नंबर नहीं लगता है सर।
0: जी,
1: बिजी बताता है।
0: देश भर के श्रोता फोन कर रहे होते हैं तो इस वजह से मुश्किल होती है फोन लगने में।
1: आप बोलते हैं कि महीना में एक बार लगाने के लिए, मैं तो हर सोमवार को लगाता हूँ, लेकिन मेरा नंबर एक साल हो गया, कभी नहीं लगा सर।
0: तो आज लगा है, ये बहुत खुशी की बात है।
1: बहुत खुशी बात है, मेरे को बहुत खुश लग रहा है, अच्छा लग रहा है। मैं तो ये सोच रहा था कि उड़ीसा का नंबर नहीं लगता है, क्या सोच रहा था मैं।
0: नहीं नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है। देश के कोने कोने से लोगों के फोन आते हैं और सबके नंबर बारी बारी से लगते हैं। इतने लोग लगा रहे होते हैं कि फोन लाइन की भी अपनी सीमाएं हैं।
1: जी
0: बताइए, क्या हालचाल है आपके इलाके के, उड़ीसा के?
1: जी हालचाल तो सिर्फ गर्मी के लिए तो बहुत, हर आदमी परेशान है, बहुत गर्मी हो रहा है। ये 3 दिन से थोड़ा सा मैंने बारिश हो रहा था, थोड़ा सा राहत मिला है।
0: जी जी, बारिश होने से वाकई राहत मिल गई है। देश के अलग अलग हिस्सों से बारिश की खबरें हमें मिल रही हैं।
1: जी जी,
0: कौन कौन से कार्यक्रम अच्छे लगते हैं विविध भारती के आपको?
1: जी हमको तो ज्यादा हेलो फरमाइश, और जो आप जो सुनाते हैं, जो मैंने संदेश टू सोल्जर वो वाला, फनकार जो सुनाते हैं वो वाला, और अभी जो नया एक जो शुरुआत किए है 1 बजे जो सुनता हूँ, वो अच्छा लगता है।
0: अच्छा अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया इन कार्यक्रमों को पसंद करने के लिए। बताइए कौन से गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: जी दोस्ती फिल्म का राही मनवा, दुख क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है।
0: अरे वाह, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया गाने की फरमाइश की है। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गाना है, सुनते हैं ये गाना।
2: दुख हो या सुख, जब सदा संग रहे ना को फिर।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश यूनिस साहब, कैसे हैं आप?
0: जी मैं अच्छा हूँ।
1: मैं तो आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ कि पूछे मैं नहीं। आप तो मैं कितने आपके इंटरव्यू सुने, कितने आपके शब्दों में बोले तो मजा आ गया। क्या बात है,
0: मजा आ गया। क्या बात है, कौन बोल रही हैं आप?
1: मैं आशा बोल रही हूँ बेंगलुरु से, और मैं आपकी बड़ी फैन हूँ। आपके बड़े मतलब सारे प्रोग्राम मैं सुनती हूँ, और मैं 3 हफ्ते 5 हफ्ते से ट्राई कर रही हूँ आपका। जब सुनती हूँ लोग बात कर रहे, बड़ी जलन होती थी,
0: अरे
1: चलो आज
0: बाप
1: मैं
0: रे,
1: भी बात कर रही हूँ। यस
0: क्या बात है। देखिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है ना।
1: यस यस। पहली बात तो मैं कहना चाहूंगी कि आपके पुराने प्रोग्राम में मैंने समझा, आपने एक राइटर से बात की थी, तब वो राइटर ने आपसे कहा था, आपसे या किसी और से, यूनिस खान से बात करने से ऐसा लगता है जैसे मैं किसी अपने देवर से बात कर।
0: ओहो, क्या बात
1: वो
0: है।
1: राइटर ने ऐसे बोला था कि मेरे मतलब जहन में है, वैसे
0: जी
1: ही मैं आप भी मेरे जहन में हो।
0: जी
1: आप लोगों से तो मेरा ऐसा रिश्ता है कि पूछो मत, सारा दिन मैं सुनती रहती हूँ, सारे प्रोग्राम सुनती रहती हूँ,
0: जी
1: लोग मेरे से तंग आ गए कितना बजाओगी करके।
0: अच्छा, विविध भारती का साथ इसी तरह से बना रहा है आपके साथ, है ना।
1: हाँ, मैं बस जिंदगी भर अंत तक सुनती रहूँ, जीवन का यही लक्ष्य है बस।
0: क्या बात है जी। तो बताइए, कौन कौन से कार्यक्रमों का जिक्र करना चाहेंगी जो आपके दिल के करीब
1: मैं
0: रहे हैं?
1: सभी कार्यम, ज्यादातर पिटारा के सारे प्रोग्राम
0: जी
1: वो बहुत अच्छे रहते हैं,
0: जी
1: और हेलो फरमाइश, हेलो सहेली, और सब आप अभी तो एकदम से मैं एक्साइट हो गई हूँ, प्रोग्राम के नाम ही याद नहीं रहे आपसे बात करते हैं।
0: जी
1: हाँ,
0: जी जी
1: सबसे ज्यादा तो आज के फनकार मैं सुबह जरूर सुनती हूँ,
0: जी
1: सुबह 8 बजे से लेकर

0: मेरा विविध भारती शुरू हो जाता है न्यूज से लेके और जब तक हो सके तब, और रात को भी जब भी टाइम मिले तब।
1: अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। तो आज कौन सा गाना चुन रखा है आपने?
0: मैंने राम तेरी गंगा मैली का, सुनो तो गंगा ये क्या सुनाए, तुम्हारे पथ पर जो भी आए, उन्होंने ऐसे नियम बनाए के प्राण जाए पर वचन न जाए।
1: क्या बात है भाई, इतने सारे बोल भी याद हैं आपको।
0: अरे अरे, मेरे को तो कुछ कुछ गानों के पूरे पूरे बोले याद है, पूरा गाना सुना सकती हूँ।
1: वाह वाह वाह, ये जानकर बहुत अच्छा लगा। मतलब वो जो आप कहती है ना कि मैं हमेशा कहता हूँ, क्या बात है,
0: क्या बात है। थैंक यू
1: जी, शुक्रिया।
0: बचपन से आप बिलीव नहीं करोगे, आई एम 57 नाउ और मैं कम से कम 5-6 साल से विविध भारती सुन रही हूँ।
1: ये लंबा सफर तय किया आपने विविध भारती सुनते हुए।
0: बस सब सब आप लोग पुराने गाने सब, मतलब जो चीजें कहीं नहीं बचती वो विविध भारती पे बचती।
1: क्या बात है जी, शुक्रिया, ये जान के बहुत अच्छा लगा।
0: मैं आपसे बात करके गदगद हो गई हूँ, लाइफ टाइम अचीवमेंट हो गया मेरा आपसे बात। थैंक यू।
1: शुक्रिया, हम ये दुआ करेंगे कि आगे भी आपका फोन लगे और बातें हों। बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर बातों का सिलसिला यहीं करते हैं खत्म और आपको सुनवाते हैं राम तेरी गंगा मैली फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ भैया जी, नमस्कार
0: नमस्कार नमस्कार
1: जी। हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: जी जी बताइए,
1: एकदम बढ़िया है भैया।
0: क्या करते हैं आप?
1: हमारा मूल काम खेती बाड़ी का है भैया।
0: अच्छा।
1: हाँ जी, और अभी तो फिलहाल गर्मी में आराम करना ज्यादा होता है, और बरसात जैसे लगेगा धान की बुआई करेंगे।
0: और छत्तीसगढ़ तो धान का कटोरा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अच्छा मुझे ये बताइए कि छत्तीसगढ़ के इलाके में गर्मियों के मौसम में वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको बहुत लुभाती हैं, जैसे कि आम?
1: आम और अमरूद तो इधर बहुत मिलता है भैया। मतलब आम तो बाहर से ही आते हैं,
0: जी जी जी बिल्कुल।
1: लेकिन जो अमरूद वगैरह होते हैं वो प्रायः घर में अमरूद है, पपीता हो गया, बेर का पेड़ हो गया, ये मतलब बहुत आयत सबके घर में मिल जाते हैं।
0: सही है सही है। अच्छा बताइए कि इस साल क्या गर्मियां बीते कई सालों की तुलना में ज्यादा पड़ी?
1: बिल्कुल ज्यादा पड़ा है भैया, 44 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच गया है, और कई इसके कारण होंगे भैया। सबसे ज्यादा तो यही अपन जो देखते हैं, पर्यावरण में हस्तक्षेप करना, और हम मानव समाज के लिए बेहद जरूरी है कि हम प्रकृति से निकटतम प्रेम करें और वो सामंजस्य बना के रखें।
0: बहुत प्यारी बात कही आपने। अब मुझे ये बताइए कौन से गाने की फरमाइश है?
1: फिल्म है राजा और रंक के, गीत के बोल है ओ फिरकी वाली तू कल फिर आना, ये प्यारा सा गीत सुनना है।
0: बहुत ही बढ़िया, सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: दोस्तों ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के लिए हम आपके टेलीफोन कॉल्स रिकॉर्ड करते हैं सोमवार को दिन में 11 बजे से। हमारे दो टेलीफोन नंबर हैं, एक है 2867-0288, दूसरा है 400-24662। अंग्रेजी में बता दें 2867-0288 और 4002-4662। मुंबई का एसटीडी कोड 022 है। रिकॉर्डिंग सोमवार को दिन में 11 बजे से होती है। जिन श्रोताओं के कॉल्स आज शामिल हो गए वो कृपया दो महीने तक हमें फोन ना करें ताकि नए श्रोताओं को हम मौका दे सकें। और हाँ, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के जरिए जब आप बातें करें तो अपने इलाके के बारे में कुछ बताएं, कुछ दिलचस्प बातें करें, कुछ गाने सुनाएं, तो इस कार्यक्रम को हम अच्छी तरह से सजा सकते हैं। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर मंगेश सांगले और इस कार्यक्रम को विविध भारती की ओर से प्रस्तुत किया राघवेंद्र सिंह नेगी ने। अब अपने दोस्त यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश। विविध भारती की फोन इन सर्विस के इस प्रोग्राम का पिटारा आज के लिए हुआ पूरा। पिटारा हर रोज पेश होता है, रोजाना सुनिए पिटारा।

श्रोताओं, बीज भारती के इसी कार्यक्रम के साथ ही आज के हमारे पहली सभा कार्यक्रम यहीं समाप्त होती है। ये आकाशवाणी के हाफलोंग केंद्र है। इस समय शाम के ठीक 5 बजे है। श्रोताओं, शाम के दूसरी सभा में यानी कि 6 बजे आपसे फिर मुलाकात होंगे। तब तक लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।

नमस्कार, एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6 बज चुके हैं। हम सभी श्रोताओं का अभिनंदन करते हुए स्वागत करते हैं आज की दूसरी सभा में।

श्रोताओं, आइए अब आपको देते हैं जानकारी आज के इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। अब से कुछ समय बाद यानी कि 6:05 पर पेश करेंगे स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रमों के अंतर्गत मार कार्यक्रम। आज मार कार्यक्रम के तहत आप सुन पाएंगे मार भक्ति गीत, गायक कलाकार होंगे कालचोटलिंग मार और उनके साथी। जेमी कार्यक्रम के तहत आपको सुनवाएंगे हाइदुआइंग क्वामे और उनके साथी कुछ जेमी भक्ति गीत। समय रहेगा 6:25। 6:45 पर आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से रिले किए जाएंगे सोमदियार आंचलिक पातोरी।

श्रोताओं, 7 बजे आप सुन पाएंगे डिमासा कार्यक्रम। आज डिमासा कार्यक्रम के तहत आपको सुनवाएंगे डिमासा लोकगीत चिंतामणि बोड़ो की आवाज़ में। 7:10 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे स्पेशल बायलिंगुअल प्रोग्राम सीरीज। आज का थीम रहेगा स्वास्थ्य सेवा। 7:45 का समय रहेगा हमारे स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रमों की आखिरी पेशकश यानी कि कुकी कार्यक्रम का। आज कुकी कार्यक्रम के अंतर्गत आपको सुनवाएंगे कुकी आधुनिक गीत। गायक कलाकार होंगे खूब खोई सेंग हेंगना और उनके साथी। 8 बजे पेश करेंगे किसान श्रोताओं का कार्यक्रम किसान वाणी, जिसे प्रस्तुत करेंगी जुदीत एल रांगचल।

श्रोताओं, 8:30 का समय रहेगा फिल्मी गीतों के कार्यक्रम का। 8:45 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे समाचार संध्या। 9:00 आप सुन पाएंगे गुलाम अली के कुछ बेहतरीन गजल के गीतों का, और 9:30 का समय रहेगा आपके पसंदीदा कार्यक्रम चित्र गीत का। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी आज के इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। FM 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। श्रोताओं, इस सभा की शुरुआत करते हैं स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रमों के अंतर्गत मार कार्यक्रम से। आनंद लीजिए कुछ मार भक्ति गीतों का, कालचौतलिंग मार और उनके साथियों की आवाज़ में।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ मार कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होते हैं। आज मार कार्यक्रम के अंतर्गत हमने आपको सुनवाया मार भक्ति गीत कालचोटलिंग मार और उनके साथियों की आवाज़ में। FM 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। अब समय हो चुका है जेमी कार्यक्रम का। आनंद लीजिए कुछ जेमी भक्ति गीतों का हैदुएंग क्वामे और उनके साथियों की आवाज़ में।

부살상 봉래상상이고 봉랑상상이고 레지발람 상상이 상상이 봉래 부살상

小勝山菜山菜山菜小夜空もあえ小夜空

حاسبك سمك سيما سمك بوينا تنين تكلا زنين جو كلام هاكي

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे डिमासा कार्यक्रम FM 100.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। अब समय हो चुका है इस विशेष बायलिंगुअल प्रोग्राम सीरीज का, जिसका थीम है स्वास्थ्य सेवा। पेश किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: सभी संबंधित हिताधिकारियों को पुनः हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: इस अवसर पर सचिव पंचायती राज मंत्रालय श्री विवेक भारद्वाज ने अपने संबोधन में कहा,
2: राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोह के अवसर पर आज हम उन पंचायतों का सम्मान कर रहे हैं जिन्होंने इस व्यवस्था को जनसेवा और विकास का प्रभावी माध्यम बनाया है। पंचायती राज मंत्रालय सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण कर उन्हें ग्राम पंचायत स्तर पर मूल स्वरूप प्रदान करने की दिशा में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों को भी 2023 से ही LSDG के 9 विषयों में उत्कृष्ट कार्य के आधार पर पंचायती राज संस्थानों को देना प्रारंभ किया गया है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के लिए प्रतियोगिता की संरचना एक बहुस्तरीय पिरामिड के स्वरूप में की गई है। इसमें ग्राम पंचायतें ब्लॉक जिला और राज्य स्तर पर प्रतियोगिता का सामना करके उसके पश्चात ही राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचती हैं और फिर उनमें से राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए चयन किया जाता है। ये पुरस्कार अन्य पंचायतों को स्थानीय

0: शासन को और सुदृढ़ करने, सेवा प्रदायगी में सुधार लाने तथा समुदाय आधारित विकास के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति को गति देने के लिए प्रेरित करते हैं। इस वर्ष राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के आंकलन में पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनको पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स के आधार पर ही इनका चयन किया गया है। आपको जान के हर्ष होगा कि राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के लिए देश भर में कई सौ पंचायतों ने आवेदन किया। इस बार भी पुरस्कार पाने वालों में पंचायतों का विस्तार अद्वितीय है। उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में केरल और पूर्व में आसाम से लेकर पश्चिम में महाराष्ट्र तक की पंचायतों ने पुरस्कार जीते हैं। माननीय मंत्री जी को ये भी कि आज यहाँ राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों से सम्मानित होने वाली 42 पंचायतों में से 22 पंचायतों का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं, यानी आधे से भी ज्यादा। इन महिला नेतृत्व वाली पंचायतों ने अपने असाधारण कार्य से महिला सशक्तिकरण की अद्भुत मिसाल कायम की है। अंत में मैं एक बार फिर सभी विजयी पंचायत राज संस्थाओं को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि देश की दूसरी पंचायतें भी इनका अनुकरण कर उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रेरित होंगी।
1: माननीय केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा,
2: सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि लोकतंत्र का सबसे कठिन चुनाव जीत करके आप आए, क्योंकि आप श्रेष्ठ पंचायत प्रतिनिधि हैं। विभिन्न मानकों

अखबार में आएगा तो अन्य पंचायतों को भी प्रेरणा मिलेगी, काश हमने भी कुछ और अच्छे तरीके से काम किया होता, काश हमने भी थोड़ी मेहनत की होती, काश हमने कुछ विकास और किया होता, तो इस पुरस्कार से हम भी सम्मानित होते। विकसित भारत जो प्रधानमंत्री जी का सपना है और 2030 तक जो सतत विकास लक्ष्यों को हमें प्राप्त करना है उसमें आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ये एक विकास का अंत्योदय है, देश की खुशहाली का रास्ता यदि खेत कल्याण से जाता है तो देश की खुशहाली का रास्ता पंचायतों से भी होकर के जाता है। पंचायत सशक्त तो देश सशक्त, पंचायत विकसित तो देश विकसित, पंचायत आत्मनिर्भर तो देश भी आत्मनिर्भर हो जाएगा। इसलिए जो पंचायत राज के मार्गदर्शन में राज्यों के सहयोग से सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण LSGD कर उन्हें पंचायत स्तर पर प्राप्त करने की दिशा में विगत वर्षों में वास्तव में उल्लेखनीय कार्य हुआ है। और ये थीम भी जो है भारत सरकार ने आपको दी है कि आपको ये इन विषयों पर काम करना है। इसलिए 2023 से राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों का आधार LSGG को बनाया गया है, लेकिन उसमें और भी ज़्यादा पारदर्शिता के लिए, निष्पक्षता के लिए 2025 के राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों की रूपरेखा में पंचायत एडवांस इंडेक्स PI को भी जोड़ा गया है, जिससे और भी ज़्यादा पारदर्शिता आई है। और 2.5 लाख पंचायतों में से 42 पंचायतें राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। भावनाओं से विकास नहीं होता है, भावनाओं से प्रेरणा जरूर मिलती है, विकास के लिए हमेशा वित्त की जरूरत होती है। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 16वें वित्त आयोग के माध्यम से ग्रामीण स्थानीय निकायों और पंचायतों को दी जाने वाली धनराशि ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई है। 2026 से 2031 के लिए 4,35,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की धनराशि आवंटित की है और यह धनराशि 15वें वित्त माने पिछले वित्त आयोग की तुलना में 84% है। मैं विभाग का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने प्रोत्साहन के लिए 20% यानी 87,000 करोड़ रुपए परफॉर्मेंस ग्रांट के लिए दिया गया है। मैं एक बात पंचायतों से कहना चाहूँगा, जो अभी गुवाहाटी में हम लोग CSC पर एक बड़ा 8 राज्यों का सम्मेलन किए हैं, वहाँ मैं एक ही विषय पर बोला था, पंचायत का काम केवल जो टाइड और अनटाइड जो फंड्स हैं उनके दिए हुए काम ही करता नहीं है, बल्कि CSC में 300 से ऊपर सेवाएं हैं। अगर हमारे सरपंच, प्रधान, मुखिया अपने पंचायत घर, पंचायत सचिवालय और उसके कंप्यूटर का उपयोग प्रधानमंत्री जीवन बीमा सुरक्षा योजना के लाभार्थियों का फॉर्म भराने में, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के फॉर्म को भराने में, विधवा पेंशन के फॉर्म भराने में, दिव्यांग पेंशन के फॉर्म भराने में, वृद्धजन पेंशन के फॉर्म भराने में, आधार कार्ड की त्रुटि को ठीक करने में, किसान सम्मान निधि का आवेदन करने में,

0: रोड बनवाने में, करें आयुष्मान कार्ड बनाने में, पंचायत का विकास के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना भी है, जल जीवन मिशन भी है, तमाम कृषि विभाग की योजनाएं हैं, रूरल डेवलपमेंट की तमाम योजनाएं हैं, लेकिन ये जो 42 पंचायतें हैं इनमें केंद्र सरकार की योजनाओं का पात्र लाभार्थी और आपके राज्यों का कोई पात्र लाभार्थी वंचित ना रहे, तब मैं समझूंगा ये पुरस्कार को आपने चरितार्थ किया।
1: माननीय केंद्रीय पंचायती राज मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा,
2: सबसे पहले तो मैं जिन पंचायतों ने आज का पुरस्कार जीता है मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता और उनको बधाई देता। आप सबों ने समर्पण के भाव से, नवाचार और जन सेवा की भावना के साथ काम किया। पंचायत लोकतंत्र की सबसे निचली सीढ़ी है और सबसे निचली सीढ़ी अगर मजबूत होगी तभी ऊपर की सीढ़ी मजबूत हो सकती, और इसलिए आपने जो पूरे समर्पण के साथ पंचायत को सुदृढ़ किया है उसके लिए आज आप ये पुरस्कार के हकदार हो। अब ये पुरस्कार जो है ये सिर्फ आपका सिर्फ इस उन पंचायतों के लिए ये सम्मान नहीं है, आपके माध्यम से इस देश के सभी पंचायती राज व्यवस्था के आप एक प्रेरणा के स्रोत हो सकते कि अच्छा काम किया है अगर उस पंचायत ने तो उनको यह पुरस्कार मिला है, आप उसका माध्यम बन सकते हैं, आप अन्य पंचायतों के साथ समन्वय स्थापित करके उनको बता सकते हैं कि हमने देखो ऐसा काम किया अपने पंचायत और आज हम पुरस्कार के हकदार हुए, आपको भी यह काम करना चाहिए, तो आप एक माध्यम हो सकते हैं, आप सिर्फ पुरस्कार के हकदार नहीं है। आप अगर पुरस्कार पाके आज वापस चले जाइए और जाके निश्चिंत होकर सो जाइए तो इसका कोई अर्थ नहीं, अर्थ है कि आप जाके अन्य पंचायतों के लिए प्रेरणा के स्रोत बनिए और उनको मोटिवेट करिए इस बात के लिए कि आप भी पंचायतों को उतना ही सुदृढ़ कीजिए और उसको आगे बढ़ाने का काम कीजिए, सशक्त करने का काम कीजिए। और जो प्रधानमंत्री जी का सपना है और एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2047 तक हम भारत को विकसित भारत बनाएंगे, आज हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, कई मामलों में हमारा देश आत्मनिर्भर हो चुका है, लेकिन आत्मनिर्भर होने से हमारा संतोष नहीं हो, हम विकसित भारत बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह सोच है कि ग्रामोदय से ही भारत का उदय हो सकता है, जब तक गांव सशक्त नहीं होगा तब तक इस देश को हम विकसित भारत नहीं बना सकते। 14वें वित्त आयोग में मात्र 2,92,000 करोड़ रुपया का आवंटन पंचायतों के लिए मात्र, और आज 16वें वित्त आयोग में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 4.35 लाख करोड़ उसका दोगुना पंचायतों को विकसित करने के लिए वित्त आयोग से अनुशंसा है। लेकिन उसके साथ साथ हम पंचायतों से भी आग्रह करें कि आप अपने पंचायत के आय के स्रोत में भी वृद्धि करिए, आप उसके लिए भी योजना बनाइए और उसको कार्यान्वित करने का काम, तभी आप विकसित पंचायत के रूप में आपकी गिनती हो सके। और आज 42 में 22 महिला प्रतिनिधियों को मिला है, तो इसलिए आज महिलाओं में नेतृत्व करने की क्षमता बढ़ी, उनमें कौशल विकास हुआ है, उनमें शासन व्यवस्था को दुरुस्त करने की शक्ति मिली है। लेकिन इसके साथ साथ महिलाओं का हमारा भी कर्तव्य है कि हम महिलाओं के नेतृत्व को, उनकी कार्य क्षमता को और सहयोग करके उसको सुदृढ़ करने का प्रयास करें। हम पंचायत प्रतिनिधियों से यह भी आग्रह करेंगे कि पंचायती राज मंत्रालय ई ग्राम स्वराज पोर्टल चला रहे और ई ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से हम ऑनलाइन भुगतान कर रहे हैं, खुदरा लेन देन मुहजवानी खाता बही वाला काम नहीं है, अब ऑनलाइन भुगतान हो रहा है और 3,00,000 करोड़ से ज्यादा का भुगतान इस पोर्टल के माध्यम से किया गया है। यह अपने आप में एक पारदर्शी तरीका है, जिस पारदर्शी तरीके को पंचायतों ने अपनाने का काम किया है, मैं इसके लिए भी पंचायतों को बधाई देने का काम करता हूँ।
1: पुरस्कार विजेता पंचायतों द्वारा किया गया उत्कृष्ट कार्य प्रभावी

0: स्थानीय शासन और समुदाय के नेतृत्व वाले विकास के मूल्यवान उदाहरण प्रस्तुत करता है। उनकी पहलों और सर्वोत्तम प्रथाओं के व्यापक प्रसार से देश भर की पंचायतों के बीच ज्ञान साझा करने को प्रोत्साहन मिल सकता है और उन्हें इसी तरह के दृष्टिकोण अपनाने व प्रदर्शन के उच्च मानकों के लिए प्रयास करने की प्रेरणा मिल सकती है। और इसी के साथ राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के पुरस्कार वितरण समारोह पर आधारित यह रेडियो रिपोर्ट अब संपन्न होती है। प्रस्तुति सहयोग विशाल कुमार, दिनेश कुमार, संयोजक शिवनंदन लाल और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पराशर।
1: तो पायल बहन, अभी हमारे सभी बहन भाइयों ने सुनी ये रेडियो रिपोर्ट राष्ट्रीय पंचायती पुरस्कार वितरण समारोह 2025। और देखिए, अब सरकार ने बहुत सी योजनाएं चलाई हुई हैं, जैसे कि उनमें से एक योजना है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। और जैसे कि बात आई है मृदा के स्वास्थ्य के बारे में, तो जब अगर मृदा हमारी अच्छी रहेगी, स्वस्थ रहेगी, तभी हमारे किसान बहन भाइयों का जो उत्पादन है वो बढ़ेगा और भाई उनकी जो लागत है वो कम होगी। ऐसी ही एक वो चली हुई है, देखिए अभियान चला हुआ है खेत बचाओ अभियान। यह अभियान मिट्टी के स्वास्थ्य की रक्षा करने, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग को कम करने और पहलवान वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
2: ये अभियान जो है अतुल भाई, देश भर में 1 जून से 30 जून 2026 तक चलाया जाएगा। और इस अभियान की जो प्रमुख गतिविधियां हैं वो हैं कि मिट्टी की जांच, मृदा स्वास्थ्य कार्ड यानी कि सॉयल हेल्थ कार्ड, संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन, प्राकृतिक खेती, जल संरक्षण, उन्नत बीज, बीज उपचार, हरी खाद, आधुनिक बुआई तकनीकों और पानी की बचत करने वाली खेती के तरीकों को बढ़ावा देता है। योजनाओं से जुड़ाव ये है, अभियान नकली उर्वरकों और बीजों और कीटनाशकों के खिलाफ जागरूकता पैदा करेगा, साथ ही किसानों को सरकारी योजनाओं जैसे कि पीएम किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और कृषि यांत्रिक यानी मशीनरी कार्यक्रमों का लाभ उठाने में मदद करेगा।
1: बिल्कुल, देखिए, और मुख्य उद्देश्य यही है, यह अभियान मिट्टी बचाओ, खेती बचाओ और किसान बचाओ के विचार पर आधारित है। यह इस बात पर जोर देता है कि उत्पादक कृषि, सशक्त किसानों और दीर्घकालिक राष्ट्रीय समृद्धि के लिए स्वास्थ्य मिट्टी बेहद आवश्यक है। पायल बहन,
2: बिल्कुल।
1: और देखिए, मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसा कि बात आपने बताई है, अभियान मृदा स्वास्थ्य कार्ड के उपयोग को बढ़ावा देता है ताकि उर्वरकों का उपयोग जो मिट्टी की वास्तविक पोषक तत्वों की जो आवश्यकता के आधार पर किया जा सके, इसमें लागत को कम करने, उत्पादकता में सुधार करने और मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने में जो है मदद मिल सकती है।
2: ग्रामीण आउटरीच यानी कि गांवों तक पहुंच, कृषि वैज्ञानिक आईसीएआर संस्थान, कृषि विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग के अधिकारी और जनप्रतिनिधि किसानों को शिक्षित करने और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए गांवों का दौरा करेंगे। वैज्ञानिक खेती, इस अभियान में सोयाबीन, धान और दलहन जैसी फसलों के लिए खेतों में लाइव प्रदर्शन शामिल होगा। किसानों को लेजर लेवलर, स्थानीय कृषि जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल फसल चयन और जल कुशल कृषि पद्धतियों का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
1: बिल्कुल, तो देखिए यही बहुत अच्छी जानकारी है और
2: इस अभियान अच्छा में भाई आप जो है अवश्य
1: जुड़े। बिल्कुल, हमारे किसान भाई, हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो भी जितने भी हमारे सब किसान बहन भाई हैं कि भाई अधिक से अधिक अपनी भागीदारी इसमें अभियान में दें और जो हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं भाई उनकी सलाह के अनुसार भी आप जो है अपनी कृषि में कार्य अवश्य करें। और देखिए, जैसा कि आप बता रहे हैं भाई, मौसम भी बदल रहा है पायल बहन, धीरे धीरे कभी गर्मी हो जाती है, कभी बरसात का सब मौसम हो जाता है, तो भाई बदलते मौसम में आप अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखें और अपने पशुओं का भी
2: खास तौर से ध्यान रखें।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, एक बात और कहना चाहते हैं पायल बहन कि कल हमारे किसान बहन भाई ग्राम संसार कार्यक्रम में भाई कपड़े के थैले और दोने पत्तल उद्योग से ग्रामीण स्वरोजगार विश्व पर्यावरण दिवस पर ये विशेष जो है जानकारी
2: हाँ, जानकारी रहेगी हमारी।
1: हाँ, और देखिए, कृषि जगत में हमारे जो सभी किसान बहन भाई फल, सब्जी और मिलेट्स लोक संगीत के साथ सुन सकेंगे। और एक जानकारी और देना चाहते हैं हम कि जब ये हमारे किसान बहन भाई हैं, देखिए हमारा पहले और तीसरे मंगलवार को हमारा विशेष फोन इन कार्यक्रम जाता है, इंडियन पोटाश लिमिटेड द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम ग्राम संसार एवं कृषि जगत में, जो कि हमारे इंद्रप्रस्थ चैनल पर ही जाता है, गन्ने की पाठशाला। इसमें जो कि हमारे सीधे विशेषज्ञ से आप जुड़ सकते हैं और अपनी गन्ने की फसल से कोई भी संबंधित जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, हमें फ़ोन कर सकते हैं और हमारे जो वैज्ञानिक हैं उनसे सीधे जुड़ सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 2342-1082 और 2342-1083, और दिल्ली से बाहर के जो हमारे भाई किसान बहन भाई हैं वो 011 लगाना ना भूलें।
2: तो भाई ये तो थी काम की बात, जानकारी की बात अतुल भाई, और अब चलते चलते अपने सभी बहन भाइयों का थोड़ा सा करवाते हैं मनोरंजन और सुनवाते हैं राकेश त्यागी की आवाज़ में ये उपदेश।

0: तो हमारे इसी उपदेश के साथ आज का हमारा कृषि जगत कार्यक्रम समाप्त होता है। सुनने वाले सभी बहन भाइयों को हमारी राम राम, राम।
1: इस कार्यक्रम के संयोजक हैं शिवनंदन लाल और प्रस्तुत करता है तुषार पारा।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम बायलिंगुअल प्रोग्राम सीरीज, जिसका थीम था स्वास्थ्य सेवा, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से FM 100.2 MHz पर। यह आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। अब आनंद लीजिए कुछ कार्बी कार्यक्रमों का हमारी इंसाई की आवाज़ में।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्बी कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होते हैं। FM 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। अब समय हो चुका है स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रमों की आखिरी पेशकश यानी कि कुकी कार्यक्रम का। आनंद लीजिए कुछ कुकी भक्ति गीतों का, खूब के सौ हेंगना और उनके साथियों की आवाज़ में।

श्रोताओं, इस गीत के साथ कुकी कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होते हैं। आज कुकी कार्यक्रम के अंतर्गत हमने आपको सुनवाया कुकी आधुनिक गीत। गायक कलाकार थे खूब खोसे हैंगनाए और उनके साथी। FM 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। श्रोताओं, अब समय हो चुका है हमारे किसान श्रोताओं के कार्यक्रम किसान वाणी का। आज इसे प्रस्तुत करेंगी जुदीत एल रांगचेल।

0: श्रोताओं नमस्कार, आकाशवाणी हाफलोंग के कृषि कार्यक्रम किसानवाणी में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त मेलेडी।
1: और मैं हूं जुदित। मेरी तरफ से भी आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: तो श्रोताओं, आज की किसानवाणी में हम आपके साथ बांटने जा रहे हैं मिर्ची की खेती के बारे में, साथ में हम आपको सुनवाएंगे स्थानीय लोकगीत। तो आज के किसानवाणी की इस कड़ी को शुरू करते हैं, जानते हैं मिर्ची की खेती के बारे में। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि मिर्ची हमारे भोजन का कितना जरूरी अंग बन चुका है, मिर्ची के बिना कोई भी सब्जी अधूरी लगती है। तो माना जाता है कि मिर्ची में बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं जो हमारी सेहत के लिए भी अच्छा होता है। इसकी खेती के बारे में सबसे पहले हम आपके साथ बांटने जा रहे हैं जलवायु के बारे में। मिर्च की खेती के लिए गर्म और नम जलवायु सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ये ऐसी फसल है जो मध्यम गर्मी और पर्याप्त धूप में अच्छी तरह बढ़ती है। मिर्च के पौधों की अच्छी वृद्धि, फूल आने और फल बनने के लिए लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड और 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आदर्श माना जाता है। अगर तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाए, जैसे कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर, तो पौधों के फूल झड़ने लगते हैं और फल कम बनते हैं। दूसरी ओर

0: ज्यादा ठंड या पाला पौधों को नुकसान पहुंचाता है और उनकी वृद्धि रुक जाती है। मिर्च की खेती में वर्षा का भी महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। इस फसल के लिए मध्यम वर्षा उपयुक्त रहती है। बहुत ज्यादा बारिश होने पर खेत में पानी भर जाता है, जिससे जड़ों में सड़न, फाफुंदी और कई प्रकार के रोग फैलने लगते हैं। इसलिए खेत में जल निकासी की अच्छी व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। हल्की नमी पौधों के लिए लाभदायक होती है, लेकिन लगातार नमी रोगों को बढ़ावा देती है। मिर्च के पौधों को भरपूर सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। अच्छी धूप मिलने से पौधों की वृद्धि तेज होती है और फल स्वस्थ, चमकदार और अच्छी गुणवत्ता वाले बनते हैं। छायादार स्थानों में पौधे कमजोर रह जाते हैं और उत्पादन कम हो सकता है। इसलिए मिर्च की खेती खुले और धूप वाले खेतों में करना ज्यादा लाभदायक माना जाता है। भारत में अलग अलग क्षेत्रों की जलवायु के अनुसार मिर्च की बुआई अलग अलग समय पर होती है। खरीफ मौसम में इसकी बुआई जून से जुलाई के बीच की जाती है, जबकि रबी फसल के लिए सितम्बर से अक्टूबर का समय उपयुक्त माना जाता है। कुछ क्षेत्रों में गर्मी के मौसम में भी जनवरी से फरवरी के बीच इसकी खेती की जाती है। उचित जलवायु और मौसम मिलने पर मिर्च की फसल अच्छी उपज और बेहतर गुणवत्ता प्रदान करती है। अब बातें करते हैं मिर्च की खेती के लिए मिट्टी के बारे में। मिर्च की खेती के लिए उपजाऊ और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। सामान्य तौर पर दोमट मिट्टी मिर्च की फसल के लिए सर्वोत्तम होती है, क्योंकि इसमें पानी रोकने और हवा के संचार दोनों की क्षमता संतुलित रहती है। ऐसी मिट्टी में पौधों की जड़ें अच्छी तरह विकसित होती है और पौधों को जरूरत पोषक तत्व आसानी से मिल जाते हैं। हल्की काली मिट्टी और बालुई दोमट मिट्टी में भी मिर्च की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। मिर्च की फसल के लिए मिट्टी का पीएच मान लगभग 6.0 से 7.0 के बीच होना चाहिए। इस स्तर की मिट्टी पौधों की वृद्धि और पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए अनुकूल मानी जाती है। ज्यादा अम्लीय या क्षारीय मिट्टी में पौधों की वृद्धि प्रभावित होती है और उत्पादन कम हो सकता है। इसलिए खेती शुरू करने से पहले मिट्टी की जांच कराना लाभदायक माना जाता है। मिर्च के खेत में पानी का जमाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अधिक नमी से जड़ों में सड़न और फाफुंदी रोग फैलने की संभावना बढ़ जाती है। अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी पौधों को स्वस्थ रखने में मदद करती है। खेत की तैयारी करते समय गोबर की सड़ी हुई खाद या कंपोस्ट मिलाने से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और पौधों की बढ़वार अच्छी होती है। अगर मिट्टी बहुत भारी हो तो उसमें रेत या जैविक खाद मिलाकर उसे भुरभुरी बनाया जा सकता है। अच्छी मिट्टी और उचित देखभाल से मिर्च की फसल अधिक उत्पादन और बेहतर गुणवत्ता देती है।
1: श्रोताओं, रोपाई की बात करें तो मिर्च की खेती में रोपाई एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, क्योंकि सही तरीके से रोपाई करने पर पौधों की वृद्धि अच्छी होती है और उत्पादन बढ़ता है। मिर्च के बीज पहले नर्सरी में बोए जाते हैं और लगभग 25 से 35 दिन बाद पौधे खेत में लगाने योग्य हो जाते हैं। जब पौधों में 4 से 5 पत्तियां निकल आए और वो स्वस्थ दिखाई दे, तब उनकी रोपाई की जाती है।
0: श्रोताओं, मिर्च की खेती के लिए नर्सरी कब और कैसे तैयार करें, ये भी बहुत ही जरूरी हिस्सा है मिर्च की खेती के लिए। मिर्च की सफल खेती के लिए स्वस्थ, मजबूत और रोग मुक्त पौध तैयार करना अत्यंत आवश्यक है। अच्छी नर्सरी न केवल पौधों की वृद्धि को बेहतर बनाती है, बल्कि भविष्य में फसल की उपज और गुणवत्ता को भी प्रभावित करती है। मिर्च की नर्सरी मौसम और क्षेत्र के अनुसार अलग अलग समय पर तैयार की जाती है। खरीफ फसल के लिए सामान्य तौर पर मई से जून के बीच और रबी फसल के लिए सितम्बर से अक्टूबर के बीच और जायद फसल के लिए जनवरी से फरवरी के दौरान नर्सरी में बीज बोए जाते हैं। बीज बोने के लगभग 30 से 40 दिन बाद पौधे रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। नर्सरी के लिए ऐसे स्थान का चयन करना चाहिए जहां पर्याप्त धूप मिलती हो, पानी का निकास अच्छा हो और जल भराव की समस्या ना हो। जल भराव होने पर पौधों में जड़ गलन और अन्य फाफुंद जनित रोगों का रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है जिससे पौधों की वृद्धि प्रभावित होती है। नर्सरी तैयार करने के लिए सबसे पहले भूमि की अच्छी तरह जुताई करके उसे भुरभुरी बना लेना चाहिए। इसके बाद लगभग 1 मीटर चौड़ी या फिर जरूरत के अनुसार लंबी और 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियां बनानी चाहिए। ऊंची क्यारियां बनाने से अतिरिक्त

0: पानी आसानी से निकल जाता है और पौधों की जड़ों को पर्याप्त हवा मिलती है। क्यारियों में अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद या फिर कंपोस्ट खाद मिलानी चाहिए, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और पौधों को प्रारंभिक अवस्था में जरूरत पोषक तत्व मिल जाते हैं। बीजों को बोने से पहले उनका बीज उपचार करना लाभदायक रहता है, क्योंकि इससे बीज जनित रोगों से सुरक्षा मिलती है और अंकुरण प्रतिशत भी बढ़ता है। बीजों को 5 से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाई गई कतारों में लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर गहराई पर बोना चाहिए। बुआई के बाद बीजों को हल्की मिट्टी, कंपोस्ट या फिर बारीक गोबर की खाद से ढक दिया जाता है और फिर फव्वारे की सहायता से हल्की सिंचाई की जाती है ताकि मिट्टी में पर्याप्त नमी बनी रहे। नर्सरी में पौधों की उचित देखभाल करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि बीज बोना। अंकुरण होने तक क्यारियों में लगातार नमी बनाए रखनी चाहिए, लेकिन ज्यादा पानी देने से बचना चाहिए। गर्मियों में तेज धूप से पौधों की सुरक्षा के लिए घास, पुआल या फिर शेड नेट का उपयोग किया जा सकता है। वर्षा के मौसम में अतिरिक्त पानी निकालने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए ताकि पौधों को नुकसान ना पहुंचे। समय समय पर क्यारियों से खरपतवार हटाते रहना चाहिए, क्योंकि खरपतवार पौधों से पोषक तत्व और पानी के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। अगर किसी पौधे में रोग या कीट का प्रकोप दिखाई दे तो उसे तुरंत हटाकर उचित नियंत्रण उपाय अपनाने चाहिए। लगभग 30 से 40 दिनों में जब पौधों की ऊंचाई 15 से 20 सेंटीमीटर हो जाए तो उनमें 4 से 6 स्वस्थ पत्तियां विकसित हो जाए, तब वे मुख्य खेत में रोपाई के लिए तैयार माने जाते हैं। रोपाई से कुछ दिन पहले सिंचाई की मात्रा कम कर देने से पौधे कठोर और मजबूत बनते हैं, जिससे खेत में लगाने के बाद उनका जीवित रहने का प्रतिशत बढ़ जाता है और आगे चलकर अच्छी उपज प्राप्त होती है।
1: रोपाई से पहले खेत को अच्छी तरह तैयार कर लेना चाहिए। खेत की 2 से 3 बार जुताई करके मिट्टी को भुरभुरी बना लिया जाता है और गोबर की सरी हुई खाद मिलाई जाती है। इसके बाद खेत में क्यारियों या मेरे बनाई जाती है ताकि सिंचाई और जल निकासी में सुविधा रहे। रोपाई शाम के समय या बादल वाले दिन करना बेहतर माना जाता है, क्योंकि इससे पौधों पर गर्मी का प्रभाव कम पड़ता है और वे जल्दी जम जाते हैं। मिर्च के पौधों को कतारों में लगाया जाता है। पौधे से पौधे की दूरी लगभग 45 से 7 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी लगभग 7 सेंटीमीटर रखी जाती है। उचित दूरी रखने से पौधों को पर्याप्त धूप, हवा और पोषक तत्व मिलते हैं। रोपाई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करनी चाहिए ताकि पौधों की जड़ें मिट्टी में अच्छी तरह जम सके। रोपाई के समय स्वस्थ और रोगमुक्त पौधों का चयन करना बहुत आवश्यक होता है। कमजोर या रोगग्रस्त पौधों को खेत में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे पूरी फसल प्रभावित हो सकता है। उचित रोपाई और देखभाल में मिर्च की फसल स्वस्थ रहती है और अच्छी उपज प्राप्त होती है। श्रोताओं, अब बात करते हैं सिंचाई कैसे किया जाता है। मिर्च की खेती में सिंचाई का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि उचित मात्रा में पानी मिलने से पौधों की वृद्धि अच्छी होती है और उत्पादन बढ़ता है। मिर्च की फसल को ना तो बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है और ना ही खेत को पूरी तरह सूखा रहना देना चाहिए। संतुलित सिंचाई पौधों की स्वस्थ रखने में मदद करती है। रोपाई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करनी चाहिए ताकि पौधों की जड़ें मिट्टी में अच्छी तरह जम सके। इसके बाद मौसम और मिट्टी की नमी के अनुसार सिंचाई की जा सकती है। गर्मियों में 5 से 7 दिन के अंतराल पर पानी देना उचित रहता है, जबकि सर्दियों में 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई की जा सकती है। वर्षा ऋतु में आवश्यकता अनुसार ही पानी देना चाहिए। मिर्च के खेत में पानी का जमाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अधिक नमी से जड़े से सड़न, फाफुंदी और अन्य रोग फैल सकते हैं। इसीलिए खेत में जल निकासी की अच्छी व्यवस्था होना आवश्यक है। फूल और फल बनने के समय पौधों को पर्याप्त नमी मिलना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इस समय पानी की कमी होने पर फूल और छोटे फल झड़ सकते हैं। आजकल कई किसान ड्रिप सिंचाई पद्धति का उपयोग भी करते हैं। इस विधि में पानी सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचता है, जिससे पानी की बचत होती है और पौधों को आवश्यक नमी लगातार मिलती रहती है। उचित सिंचाई से मिर्च की फसल स्वस्थ रहती है और अच्छी गुणवत्ता और अधिक उत्पादन प्राप्त होती है। अब बातें करते हैं खरपतवार के बारे में। मिर्च की खेती में खरपतवार नियंत्रण बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि खरपतवार फसल के साथ पोषक तत्वों, पानी, धूप और जगह के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। यदि समय पर खरपतवारों को नियंत्रित ना किया जाए तो पौधों की वृद्धि प्रभावित होती है और उत्पादन कम हो सकता है। खेत में उगने वाले अनावश्यक घास और जंगली पौधे मिर्च की फसल को कमजोर बना देते हैं। मिर्च की रोपाई के कुछ समय बाद खेत में खरपतवार उगने लगते हैं। इन्हें नियंत्रित करने के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पहली निराई रोपाई के लगभग 20 से 25 दिन बाद की जाती है और दूसरी निराई 40 से 45 दिन बाद की जाती है। निराई गुड़ाई करने से मिट्टी भुरभुरी बनी रहती है, जिससे पौधों की जड़ों को हवा और नमी अच्छी तरह मिलती है। खरपतवार नियंत्रण के लिए हाथ से निराई करना सबसे सामान्य और सुरक्षित तरीका माना जाता है। बड़े खेतों में किसान कृषि उपकरणों या कुछ उपयुक्त खरपतवार नाशक दवाओं का भी उपयोग करते हैं। दवाओं का प्रयोग हमेशा कृषि विशेष ज्ञान की सलाह के अनुसार करना चाहिए, ताकि फसल को नुकसान ना पहुंचे। अगर खेत को खरपतवारों से साफ रखा जाए तो पौधों की वृद्धि बेहतर होती है और रोग और कीटों का प्रकोप भी कम होता है। उचित खरपतवार नियंत्रण से मिर्च की फसल स्वस्थ रहती है और अच्छी गुणवत्ता के साथ अधिक उत्पादन प्राप्त होती है।
0: श्रोताओं, बातें करते हैं रोग और कीट के बारे में। मिर्च की फसल में कई प्रकार के रोग और कीट लगते हैं, जो पौधों की वृद्धि और उत्पादन को प्रभावित करते हैं। अगर समय पर इनकी पहचान और नियंत्रण ना किया जाए तो फसल को भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए किसानों को खेत की नियमित निगरानी करते रहना चाहिए, ताकि रोग या कीट दिखाई देने पर तुरंत उपाय किया जा सके। मिर्च में लगने वाले प्रमुख कीटों में माहू यानी एफिड, थ्रिप्स और फल छेदक कीट शामिल हैं। माहू और थ्रिप्स पौधों की पत्तियों और कोमल भागों का रस चूसते हैं, जिससे पत्तियां मुड़ने लगती हैं और पौधे कमजोर हो जाते हैं। फल छेदक कीट मिर्च के फलों में छेद करके उन्हें नुकसान पहुंचाता है, जिससे फल सड़ने लगते हैं और बाजार में उनकी गुणवत्ता कम हो जाती है। रोगों में पत्ती मुड़न रोग, झुलसा रोग और जड़ सड़न प्रमुख है। पत्ती मुड़न रोग में पौधों की पत्तियां सिकुड़कर मुड़ जाती हैं और पौधों की वृद्धि रुक जाती है। झुलसा रोग के कारण पत्तियों पर भूरे धब्बे बनने लगते हैं और धीरे धीरे पत्तियां सूख जाती हैं। ज्यादा नमी और पानी का जमाव जड़ सड़न जैसी समस्याओं को बढ़ाता है। इन रोगों और कीटों से बचाव के लिए स्वस्थ और रोगमुक्त बीजों का उपयोग करना चाहिए। खेत को साफ रखना, उचित दूरी पर पौधे लगाना और जल निकासी की अच्छी व्यवस्था करना भी बहुत ही जरूरी होता है। संक्रमित पौधों और फलों को खेत से हटाकर नष्ट कर देना चाहिए। जरूरत पड़ने पर कृषि विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार उपयुक्त कीटनाशकों और फफूंद नाशकों का प्रयोग किया जा सकता है। उचित देखभाल और समय पर नियंत्रण से मिर्च की फसल को सुरक्षित रखा जा सकता है और अच्छी उपज प्राप्त की जा सकती है। श्रोताओं, आप बातें करते हैं मिर्च के किस्मों के बारे में। मिर्च की खेती में अच्छी उपज और बेहतर गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए सही किस्म का चयन बहुत ही जरूरी होता है। भारत में जलवायु और उपयोग के अनुसार मिर्च की कई उन्नत किस्में विकसित की गई हैं। कुछ किस्में हरी मिर्च के लिए उपयुक्त होती है, जबकि कुछ सूखी लाल मिर्च उत्पादन के लिए अधिक उपयोग की जाती है। उचित किस्म चुनने से रोग का प्रकोप कम होता है और उत्पादन अधिक मिलता है। पूसा ज्वाला मिर्च की एक बहुत ही लोकप्रिय किस्म है। इसके फल लंबे, पतले और तीखे होते हैं। ये किस्म हरी और सूखी दोनों प्रकार की मिर्च के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसकी उपज अच्छी होती है और बाजार में इसकी मांग भी अधिक रहती है। अरका लोहित ये एक उन्नत किस्म है, जिसके फल लाल रंग के और आकर्षक होते हैं। ये किस्म सूखी लाल मिर्च उत्पादन के लिए अधिक पसंद की जाती है। इसके पौधे मजबूत होते हैं और कई रोगों के प्रति सहनशील माने जाते हैं। काशी अनमोल ये किस्म किसानों के बीच लोकप्रिय किस्म है। इसके फल मध्यम आकार के होते हैं। ये अधिक उत्पादन देने वाली किस्म मानी जाती है। ये कई क्षेत्रों के जलवायु में अच्छी तरह उगाई जा सकती है। पंजाब लाल, ये किस्म मुख्य रूप से लाल मिर्च उत्पादन के लिए जानी जाती है। इसके फल गहरे लाल रंग के होते हैं और सूखने के बाद अच्छी गुणवत्ता बनाए रखते हैं। इसके अलावा स्थानीय जलवायु और बाजार की मांग के अनुसार किसान अन्य क्षेत्रीय किस्मों का भी चयन करते हैं। उचित किस्म का चयन मिट्टी, जलवायु और बाजार की आवश्यकता को ध्यान में रखकर करना चाहिए। अच्छी गुणवत्ता वाले बीज और उन्नत किस्मों का उपयोग करने से मिर्च की खेती अधिक लाभदायक बनती है। श्रोताओं, मिर्च की खेती की जानकारी को देते हैं एक छोटा सा विराम और चलिए आपको सुनवाते हैं एक स्थानीय लोकगीत।

0: इस लोकगीत के बाद श्रोताओं जारी रखते हैं आज के विषय को।
1: मिर्च की खेती में जैविक तरीके से रोग और कीट का नियंत्रण किया जा सकता है। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। मिर्च की खेती में जैविक तरीके से रोग और कीट नियंत्रण करना खेती को सुरक्षित, पर्यावरण अनुकूल और कम खर्चीला बनाता है। जैविक खेती में रासायनिक दवाओं की जगह प्राकृतिक उपायों, जैविक घोलों और लाभकारी जीवों का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले खेत की अच्छी तैयारी और स्वच्छता बहुत जरूरी होती है। खेत में जल निकासी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अधिक नमी से जड़ गलन, मुरझान और फाफुंद जनित रोग तेजी से फैलते हैं। रोगग्रस्त पौधों, सूखी पत्तियों और संक्रमित फलों को तुरंत खेत से निकालकर नष्ट कर देना चाहिए, ताकि संक्रमण अन्य पौधों तक ना पहुंचे। फसल चक्र अपनाना भी बहुत लाभदायक होता है। हर साल एक ही खेत में मिर्च लगाने से रोग और कीट बढ़ जाते हैं, इसीलिए मिर्च के बाद दलहनी और दूसरी फसल उगाना बेहतर होता है। स्वस्थ और रोगमुक्त बीज का चयन करने से कोई बीमारियों से सुरक्षित में ही बचाव हो सकता है। मिर्च की फसल में प्रमुख कीट जैसे थ्रिप्स, एफिड, सफेद मक्खी और फल छेदक कीट अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। इनके नियंत्रण के लिए नीम आधारित उपाय बहुत प्रभावी माने जाते हैं। नीम की खली मिट्टी में मिलाने और 5% नीम की गिरी के घोल या नीम तेल का छिड़काव करने से कीटों की संख्या कम होती है। लहसुन, हरी मिर्च और नीम की पत्तियों का जैविक घोल बनाकर छिड़काव करने से भी कीट नियंत्रण में मदद मिलती है। खेत में पीले और नीले चिपचिपे ट्रैप लगाने से सफेद मक्खी और थ्रिप्स जैसे कीट आकर्षित होकर चिपक जाते हैं, जिससे उनका प्रकोप घटता है। फेरोमोन ट्रैप का उपयोग फल छेदक कीट और कीट की निगरानी और नियंत्रण के लिए किया जाता है। खेत में गेंदा के पौधे लगाने से भी कई हानिकारक कीट दूर रहते हैं, और ये सह फसली पद्धति जैविक खेती में बहुत उपयोगी मानी जाती है। रोग नियंत्रण के लिए जैविक फाफुंद नाशकों का उपयोग किया जाता है। ट्राइकोडर्मा जैसे लाभकारी कवक को गोबर की खाद या कंपोस्ट में मिलाकर खेत में डालने से जड़ सड़न और मुरझान जैसे रोग कम होते हैं। बीज उपचार के लिए भी ट्राइकोडर्मा या स्यूडोमोनास का प्रयोग किया जा सकता है। छाछ का घोल, जीवामृत और गौमूत्र आधारित घोलों का नियमित छिड़काव पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। यदि पत्तियों में धब्बे या फफूंद दिखाई दे तो राख और गौमूत्र का मिश्रण छिड़काना लाभकारी होता है। जैविक खाद जैसे वर्मी कंपोस्ट और अच्छी सरी गोबर खाद पौधों को मजबूत बनाते हैं, जिससे वे रोग और कीटों का सामना बेहतर ढंग से कर पाते हैं। जैविक तरीके से रोग और कीट नियंत्रण में नियमित निगरानी सबसे महत्वपूर्ण होती है। किसान को समय समय पर पौधों की पत्तियों, फूलों और फलों की जांच करनी चाहिए, ताकि रोग या कीट का प्रारंभिक अवस्था में ही पता चल सके। शुरुआत में नियंत्रण करने पर नुकसान कम होता है और अधिक दवा या खर्च की आवश्यकता नहीं पड़ती। खेत में पक्षियों और लाभकारी कीटों जैसे लेडीबर्ड बीटल को संरक्षण देना चाहिए, क्योंकि ये हानिकारक कीटों को खाकर उनकी संख्या नियंत्रित करते हैं। संतुलित सिंचाई और उचित दूरी पर पौधे लगाने से हवा का संचार अच्छा रहता है, जिससे रोग कम फैलते हैं। इस प्रकार जैविक उपाय अपनाकर किसान स्वस्थ, सुरक्षित और अच्छी गुणवत्ता वाली मिर्च की पैदावार प्राप्त कर सकते हैं।
0: अब बातें करते हैं मिर्च की खेती की तुड़ाई के बारे में। मिर्च की खेती में तुड़ाई एक महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि सही समय पर तुड़ाई करने से फलों की गुणवत्ता अच्छी बनी रहती है और बाजार में अच्छा मूल्य प्राप्त होता है। मिर्च की तुड़ाई इस बात पर निर्भर करती है कि फसल का उपयोग हरी मिर्च के रूप में करना है या फिर सूखी लाल मिर्च के लिए। हरी मिर्च के लिए तुड़ाई तब की जाती है जब फल पूरी तरह विकसित हो जाए और उनका रंग गहरा हरा दिखाई दे। सामान्य तौर पर रोपाई के लगभग 60 से 90 दिन बाद तुड़ाई शुरू हो जाती है। हरी मिर्च की तुड़ाई समय समय पर करनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा देर तक फल पौधों पर रहने से नए फूल और फल बनने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। सूखी लाल मिर्च के लिए फलों को पौधों पर पूरी तरह पकने और लाल होने दिया जाता है। जब फल गहरे लाल रंग के हो जाए तब उनकी तुड़ाई की जाती है। इसके बाद मिर्च को धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है ताकि उनमें नमी कम हो जाए और वे लंबे समय तक सुरक्षित रह सके। तुड़ाई सुबह या शाम के समय करना बेहतर माना जाता है। तुड़ाई करते समय फलों को सावधानी से तोड़ना चाहिए ताकि पौधों को नुकसान ना पहुंचे। नियमित तुड़ाई करने से पौधों पर नए फल अधिक बनते हैं और कुल उत्पादन बढ़ता है। उचित तुड़ाई और भंडारण से मिर्च की गुणवत्ता अच्छी बनी रहती है और किसानों को अधिक लाभ प्राप्त होता है। आज हमने आपके साथ मिर्च की खेती के बारे में जानकारी बांटी। इसी के साथ आज के इस विषय को हम यहीं पर समेटना चाहेंगे।
1: जाने से पहले श्रोताओं आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप हमारे कार्यक्रम को सुनना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और साथ ही हमारे कार्यक्रम को सुन भी सकते हैं।
0: तो श्रोताओं इसी के साथ हम आपसे अनुमति लेना चाहेंगे। आपसे फिर मिलेंगे किसान वाणी की अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए मैं मेलेडी
1: और मैं जुदित
0: आपसे अनुमति चाहते हैं। नमस्कार, नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारे किसान श्रोताओं का कार्यक्रम किसान वाणी, जिसे प्रस्तुत किया था जुदीत एल रांगचल ने। एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। अब समय हो चुका है फिल्मी गीतों के कार्यक्रम का। आनंद लीजिए कुछ फिल्मी गीतों का।

Let's go.

0: आशा, हाय रे विश्वास मेरे, हाय मेरी आशा, अल्लाह मेघ दे, अल्लाह मेघ।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम FM 100.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। अब से कुछ समय बाद आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत और वेनेजुएला ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने को कहा। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे योगासन को वैश्विक खेल पहचान मिलेगी। पेट्रोल और एथेनॉल की अलग अलग मात्रा के मिश्रित ईंधन से चलने वाली देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार लॉन्च। मानसून ने दी केरलम में दस्तक। केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में अगले 7 दिन तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लेम्बोरिया विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंची। प्रिया घंघास और विश्वनाथ सुरेश ने शीर्ष 3 में जगह बनाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमेरिका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृहमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी तथा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार का लोकार्पण किया। इसका निर्माण मारुति सुजुकी ने किया है। इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि यात्री वाहनों में फ्लेक्स फ्यूल तकनीक की शुरुआत भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का एक नया अध्याय है। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स फ्यूल वाहनों से प्रदूषण कम करने, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद मिलेगी।
2: हमारे देश से करीब 22 से 23 लाख करोड़ रुपए हम फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट के लिए खर्चा करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है। अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो हमें इंपोर्ट को कम करना पड़ेगा और एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। हमारे देश में अगर ये इंपोर्ट को कम करना है तो हमें अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल पर काफी काम करने की आवश्यकता थी, और इसलिए ये जो इंडस्ट्री है यही हमारे देश के ग्रोथ इंजन है।
0: फ्लेक्स फ्यूल वाहन पेट्रोल और एथेनॉल के विभिन्न मिश्रणों पर चल सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम इस श्रृंखला में बात करेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों के बारे में।
4: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
5: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर के ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। स्टेबिलिटी के लिए अप्रत्यक्ष कर के रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है। लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
4: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। जेम से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जेम की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुँच प्रदान करता है।
6: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जेम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। एमएसएमई, स्टार्टअप, महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
4: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी, जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
7: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
3: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एकजुट करता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
2: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी।
8: मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा, चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो। हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
3: हमारी संवाददाता ने बताया कि विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से किया गया है।
9: अहमदाबाद का एका एरिना आज से शुरू हुई पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप के साथ ही एक बड़े ऐतिहासिक बदलाव का गवाह बन रहा है। इस वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका, घाना, केन्या और मलेशिया सहित 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। मेजबान भारत ने 6 आयु श्रेणियों में मुकाबले के लिए अपनी 122 सदस्यों की टीम उतारी है। परणा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसाकुरणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में आज भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाईजिंग को शिकस्त दी। विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में जैस्मिन लंबोरिया ने महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर एक स्थान हासिल कर लिया है। वहीं प्रिया घांघस 60 किलोग्राम भार वर्ग और विश्वनाथ सुरेश 50 किलोग्राम भार वर्ग में शीर्ष तीन में जगह बनाने में सफल हुए हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली की शुरुआत की है। आयोग ने इस तकनीक का सफल उपयोग हाल ही में आयोजित प्रारंभिक सिविल सेवा परीक्षा और इस वर्ष हुए भारतीय वन सेवा परीक्षा में किया।

ऑथेंटिकेशन प्रणाली की शुरुआत की है। आयोग ने इस तकनीक का सफल उपयोग हाल ही में आयोजित प्रारंभिक सिविल सेवा परीक्षा और इस वर्ष हुए भारतीय वन सेवा परीक्षा में किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11

0: दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और पश्चिम राजस्थान में भी कल गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज बारिश हुई, लोगों को गर्मी और उमस भरे मौसम से थोड़ी राहत मिली। आज रात भी हल्की वर्षा की संभावना है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने अगस्त सितंबर सत्र के लिए अपने इंटर्नशिप कार्यक्रम में भाग लेने के लिए महिलाओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें छात्राएं, शोधकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक शामिल हो सकते हैं जो किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक गैर शैक्षणिक संस्थान से जुड़े हों। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल wcd.intern.nic.in के माध्यम से किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और वेनेजुएला ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने को कहा। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे योगासन को वैश्विक खेल पहचान मिलेगी। पेट्रोल और एथेनॉल की अलग अलग मात्रा के मिश्रित ईंधन से चलने वाली देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार लॉन्च। और मानसून ने दी केरलम में दस्तक। केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में अगले 7 दिन तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या।
2: हेलो हफलोंग, आप सभी श्रोताओं के लिए आकाशवाणी हफलोंग पेश करता है बहुत ही खास फोन इन प्रोग्राम हेलो हफलोंग। हर शनिवार और रविवार को रात के 9 बजे यानी कि एवरी सैटरडे एंड संडे एट 9 PM। इस प्रोग्राम में हम आपसे बातें करते हैं और आपको आपका फेवरेट हिंदी फिल्म सॉन्ग भी सुनवाते हैं। और एक खास बात, आप अपना पसंदीदा गाना किसी को डेडिकेट भी कर सकते हैं। दोस्तों, कॉल करने के लिए नोट कीजिए हमारा नंबर। नंबर है 9435700596। कॉल करने का समय है हर बुधवार को दिन के 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच यानी कि एवरी वेडनेसडे बिटवीन 1 to 2 PM ओनली। आपके कॉल्स का हमें रहता है बेसब्री से इंतजार। दोस्तों, कॉल जरूर कीजिए और सुनते रहिए आपका फेवरेट प्रोग्राम हेलो हफलोंग।
1: FM 100.2 MHz पर यह आकाशवाणी का हफलोंग केंद्र है। श्रोताओं, अब समय हो चुका है गजल के गीतों का। आनंद लीजिए कुछ गजल के गुलाम अली के आवाज में।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ गजल यहीं पे समाप्त होते हैं।
1: आपकी गीत दोस्तों एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी हाफलॉन्ग आपके लिए पेश करता है आपका प्यारा प्रोग्राम आपके गीत, हर मंगलवार रात के 9 बजे यानी कि एवरी ट्यूसडे एट 9 PM। इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवाते हैं आप ही के रिक्वेस्ट सॉन्ग। दोस्तों, आप अपनी पसंद का कोई भी हिंदी फिल्म सॉन्ग सुनना चाहें तो हमें SMS या फिर WhatsApp के जरिए अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। SMS या फिर WhatsApp करने के लिए उठाइए अपना मोबाइल फोन, टाइप कीजिए गाने के बोल, फिल्म का नाम, साथ ही अपना और अपने दोस्तों का नाम और मैसेज को भेज दें इस नंबर पर 9435700596। अपना पता जरूर लिखें, हमें आपके रिक्वेस्ट का रहेगा बेसब्री से इंतजार।

0: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के
1: यात्रियों
2: तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
3: दिमाग चार्ज कर रखना।
4: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
3: देखा
2: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
4: अब क्या करोगे?
2: फ्री वाईफाई है ना?
3: बुद्धू सुधर जा।
4: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई।
2: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
4: RBI कहता है
5: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: श्रोताओं, FM 100.2 MHz पर यह आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। अब समय हो चुका है आपके पसंदीदा कार्यक्रम चित्रगीत का। आनंद लीजिए कुछ फिल्मी गीतों का।

श्रोताओं, इस गीत के साथ चित्रगीत कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होते हैं। FM 100.2 MHz पर यह आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात के 10 बज चुके हैं और इसी के साथ आज की दूसरी सभा यहीं पे समाप्त होती है, पर कल सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।